इसी से, उसी पवित्रता से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। और एक साहब थे लल्लू भाई, जो आते थे लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर कैफियत तारी हो गई। आखिर में वो रक्स कर रहे हैं, ये कृष्णा कृष्णा ये कहते जा रहे हैं, और साहब गाना ख़त्म हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो उसी कैफियत में थे, बेखुद हो गए थे, उनको थामना उनको संभालना मुश्किल हो गया था। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये वो राग माल का उसकी खूबी थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी कहा कि नौशाद साहब ये राग माल का उसकी खूबी है, देखिए इसमें लल्लू भाई के ऊपर जो कैफियत तारी हुई, तो ये इसमें न मेरा कमाल है। मैंने कहा और मेरा भी कमाल नहीं, ये राग माल का उसका कमाल है। ये वो बुनियादी राग है जो हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान शिव की रचना है।

0: लिए। आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पाप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माय वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, इस एपिसोड में हम संत कबीर जी के दोहों की चर्चा करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। संत कबीर जी कहते हैं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। संत कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अर्थात जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। संत कबीर जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। अर्थात लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। संत कबीर जी कहते हैं, पाँचे दिन पाँचे गए, हरी से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात सब कबीर जी कहते हैं, बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार का मैपन था तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो मैपन का अहंकार नहीं है। जब से मैंने सद्गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है।

0: हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी अपने दोहों में कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर

साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली से बदबू आती है। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा देय, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का लेय। अर्थात जिसको ईश्वर प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा तो त्याग नहीं सकता लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोई पी रहे जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सोका पीर में पीर। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं, जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। संत कबीर जी कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अर्थात शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीतलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। संत कबीर जी कहते हैं, कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत न चार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। संत कबीर जी कहते हैं, रात गवाई सोये के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, रात को सोते हुए गवा दिया और दिन खाते खाते गवा दिया। आपका जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। जो जीवन प्रभु प्रेम के बिना हो वो जीवन निरर्थक है, कौड़ियों के बराबर है। संत कबीर जी कहते हैं, कागा काको धन हरे कोयल काको देय, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। अर्थात कौवा किसी का धन नहीं चुराता लेकिन फिर भी कौवों की आवाज़ लोगों को पसंद नहीं आती, वही कोयल किसी को धन नहीं देती लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का, कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। संत कबीर जी कहते हैं, तिनका कबहू ना निंदये जो पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखों पड़े पीर घनेरी होए। अर्थात तिनके को पाँव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि अगर हवा से उड़ के तिनका आँखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। संत कबीर जी कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। अर्थात मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से मरना भला, यही सद्गुरु की शिक्षा है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चलो, हम हंसे जग रोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब हम पैदा हुए तो उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। अर्थात हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हो जाए और ऐसा कर्म करे जो दुनिया हमें हमेशा याद रखे। संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। संत कबीर जी कहते हैं, दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थात इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती, जिसका ना कोई आदि है न अंत। संत कबीर जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज्यादा चुप रहना भी अच्छा है। जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। संत कबीर जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। अर्थात जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोल कर ही मुख से बाहर आने दे। संत कबीर जी कहते हैं, संत न छाड़े संतई जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तव शीतलता न तजंत। अर्थात सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों न घिरे हो। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ते। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभावे, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जिसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए, वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जाने हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात कबीर जी कहते हैं, समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। संत कबीर जी कहते हैं, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखिया कोए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए, सर पर धन की गठड़ी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। संत कबीर जी कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, डबका लागा फुटिगा कछु न आया हाथ। अर्थात यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता रहता है, जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया माटे की घड़े की तरह और कुछ भी हाथ नहीं आया। संत कबीर जी कहते हैं, करता था क्यों रहया जब करी क्यों पचिताए, बोए पेड़ बबूल का अंब कहाँ ते खाए। अर्थात यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिलेगा। अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। संत कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया, तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। श्रोतियो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवा 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब कुछ टूटता है तो उसकी आवाज़ आती है, ये कहा जाता है। इन दिनों हमारे बहुत से बिलीफ सिस्टम्स टूट रहे हैं और बे आवाज़ ही टूटते जा रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन हमें खुद को होता जा रहा है। वो बिलीफ सिस्टम्स, वो पूरी धारणाएं जिन पर हमारा पूरा जीवन आधारित था, लेकिन अब अगर हमने देखा कि किस तरह से वो हमें ही अपने पास में बांधते जा रहे थे और हम कहीं ना कहीं उलझते जा रहे थे। एक एक बिलीफ सिस्टम टूटते ही नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है और एक जो गुत्थी है वो सुलझती जाती है, फिर वो स्ट्रेट लाइन बनती जाती है। लेकिन हाँ, वो उलझन फिर आती है। वो बिलीफ सिस्टम, चाहे वो एंगर से जुड़े थे, चाहे वो रिजेंटमेंट से जुड़े थे, चाहे वो पास्ट को पकड़े रहने से जुड़े थे या फ्यूचर के बारे में सोचने से जुड़े थे, कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रॉन्ग विशियस सर्कल है, इतना मतलब सही तरीके से हमारी ज़िंदगी ने उसके साथ चलना सीख लिया था कि जब एक नए अंदाज में देखा सही तो लगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उलझते जा रहे हैं। तो कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो पावर है जो हमें अब जो समझ में आ रहा है उस पर चलना सिखा सकती है, वो शक्ति हमें मिल सकती है, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अभी तो बहुत कुछ समझा, जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे आधार थे जिंदगी का, जो हमने शुरू में मुझे याद है कि बात की थी कि ये तो कितने नेचुरल है, मतलब इनके बिना, और हमें अवेयर भी नहीं थे कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसे सेट ऑफ थिंग्स हैं जिन पर हम जी रहे हैं। लेकिन जब देखा तो ये भी देखा कि जैसे ही थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, अब अगर हम चेक करते हैं तो समझ में आता है, ओ हम ये मानते आ रहे हैं, ये मेरी मान्यता है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, समझ में आता है कौन सी नई मान्यता बनेगी। लेकिन फिर वो अगली सिचुएशन आती है तो वो इतनी जोर का टेक ओवर करती है कि वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो रहती ही है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि डिस्टर्बेंस आते ही हम रुक जाते हैं। अब आगे आप बताएं कि कैसे बढ़े।
1: जैसे कि एक है कि अब समझ में आ गया, यू नो, अवेयरनेस आ गई कि हाउ इट इज़ वर्किंग। तो एक है कि मैकेनिज्म पता चल गया कि यस, थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, मुझे थॉट लेवल पर ही उसको चेंज करना है, फीलिंग तक भी नहीं लेकर आना, क्योंकि फीलिंग लो हो जाती है एंड देन टू चेंज माय थॉट्स। तो अवेयरनेस से जब थॉट्स को देखना शुरू किया तो पता चल जाता है। अब अगर इसको आप जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, विद इन अ फ्यू डेज यू विल रियलाइज़ कि आपको अपने थॉट्स अब ऐसे पता चलते हैं। इफ़ यू आर जेलस ऑफ समवन, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है किसी से, आपको दिखाई देने लगेगी। जैसे ही ये अपने अंदर दिखाई देने लगता तो फिर काम करना कितना सहज हो जाता है बिफोर इट कम्स आउट इन टू द बिहेवियर। तो एक है अवेयरनेस। अब दूसरा है कि हमें समझ में आ गया, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर कई बार हम कहते हैं, लेकिन जब करने जाते हैं उसको प्रैक्टिकल
0: नहीं
1: में
0: हो पा रहा होता,
1: नहीं आ रहा। फिर कई भाई बहने लिखते कि समझ में आ गया, गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है, लेकिन वो बातें इतनी बड़ी आ गई, कहीं हम फील करते कि हमारे एफर्ट से ज़्यादा बड़ी बात आ जाती है हमारे सामने और हमारा एफर्ट अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। लेकिन वी नॉट टू गिव अप, वी आर ऑन अ जर्नी। अगर हमें ये कन्विक्शन है कि ये यात्रा ठीक है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ठीक है, स्पीड गुड वेरी कि थोड़ा स्लो है या थोड़ा फास्ट है, लेकिन अगर रास्ता ठीक है उसको हमें कंटिन्यू करना है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा पावर भी भरने हैं, अपने अंदर एनर्जाइज करना है अपने आप को, क्योंकि कुछ भी करने के लिए शक्ति चाहिए। यू नो, सपोज मुझे समझ में आ गया कि शरीर को हेल्दी रखना है, लेकिन फिर उसके लिए एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी ना। सिर्फ मेरे सोचने से कि ये बॉडी हेल्दी हो जाए, इट वॉन्ट हैपन। तो नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज, आई हैव टू डू दिस फॉर द बॉडी। सिमिलरली नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज फॉर हियर, आई हैव टू डू। तो इसलिए मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपको तो पता ही, आजकल मेडिटेशन हैज़ बिकम अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, अब कुछ और चाहिए, अभी तक जो मेजर्स यूज़ किए उससे वो जीवन में नहीं प्राप्त हो रहा जो हमें चाहिए था, तो एवरीवन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स मेडिटेशन। और मेजोरिटी आज जो भी भाई बहनें मिलते तो वो किसी न किसी प्रकार से इसका प्रयास कर रहे हैं, एंड बहुत सारे हैं जो घर पे अपने ही तरीके से उसको कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज है, अगर इसको राइट तरीके से नहीं किया, आई विल नॉट गेट द रिजल्ट। कोई भी इलाज है, मुझे इलाज करवाना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा कैसे करना है. मैं अपने आप ही अपने तरीके से कर लूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी, फिर आई एम डूइंग इट द राइट वे. एंड फिर वो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता कि कर भी रहे हैं लेकिन रिजल्ट भी नहीं क्रिएट हो रहा. तो मेडिटेशन में भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं.
0: Yes, very true. You know, another a very important one is thoughtlessness. I don't know why I want to pick this up, because majority of people are doing this. You know, उनका ये प्रयास रहता है कि कोई thought नहीं create होना चाहिए. I know I've taken the biggest, the most popular one. लेकिन उसी पे मैं काम बात करना चाहती थी कि thoughtlessness हो जानी चाहिए. वो situation पहुंच जानी चाहिए आपकी जब आपका माइंड कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा.
1: इट्स अ वेरी कॉमन वन, और ये सभी को लगता है कि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ सीखना तो है ही नहीं. हम घर बैठे रोज़ प्रयास करेंगे, रोज़ अभ्यास करेंगे तो हमारा मन सोचना बंद तो कर ही देगा फाइनली. तो हर रोज़ हम अपने लिए टाइम निकालते एंड एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते कि मन सोचना बंद करते. नाउ दिस इज़ ईच वंस ओन एक्सपीरियंस, लेकिन इफ़ आई कैन शेयर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर हम सोचना बंद कर दें तो पहली बात वो संभव है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है. क्योंकि मन का काम है सोचना, यू नो इट्स लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर जो नेचुरल है. हम उसको फ्लो को बंद करने की कोशिश करते रहते हैं. अब जिसका नेचुरल स्वरूप है फ्लो होना, अगर आप उसको बंद करने की कोशिश करोगे तो मेनी टाइम्स पीपल एक्सपीरियंस कि यहाँ भारी होने लगता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई थॉट नहीं आनी चाहिए. यू नो इवन क्रिएटिंग दिस थॉट कि कोई थॉट नहीं आनी चाहिए, दैट्स ऑल्सो अ थॉट. अब इसमें भी आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि थॉटलेसनेस क्यों, वाई एम आई ट्राइंग टू अचीव थॉटलेसनेस. क्योंकि हम फील करते कि जब हम सोचना बंद कर देंगे तो सारी जो हमारी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं वो आना बंद कर देती हैं, विच इज़ ट्रू. कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट नहीं आएगी क्योंकि हमने सोचना ही बंद कर दिया. लेकिन आपने उस पर कोई और काम तो नहीं किया ना, आपने सिर्फ दबा दिया है उसको. अब इसको सपोज यहाँ पर कुछ है और हमने उसको दबा कर रख दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भी हमने दबा कर सपोज उस अचीव कर लिया कि उसको बंद कर दिया डब्बे को. अब इसके बाद काम पर गए, अब तो सोचना है ना, अब
0: वो
1: तो सोच
0: अगर खुल गया
1: तो वो तो खुल
0: और ज्यादा फोर्स से होगा,
1: और ज्यादा ना भी होगा तो सही ना, जो उससे पहले था उतना ही स्टेज पर वापस आएगा. क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई वर्क नहीं किया था, उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया. सो दिस इज लाइक एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन, थॉट्स इज माई इंटरनल कॉन्वर्सेशन. हमने इसको कहा चुप कर जाओ, इसने सपोज चुप कर दिया, लेकिन फिर जब ये बोलेगा ये वही बातें बोलेगा जो ये पहले बोल रहा था. तो मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ थोड़ी देर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो इधर चल रहा था वो बंद हो गया. तो डेफिनेटली वो हमें एनर्जाइज करता है क्योंकि मेरी लीकेज ऑफ एनर्जी जो कांस्टेंट सारा दिन यहाँ चलती वो उतनी देर बंद हो जाती है. सिमिलरली ऑल्सो हैपन्स कि कई मेडिटेशन टेक्निक्स में हम अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करते हैं, वो भी बहुत बेनिफिट करता है. कि हम जितनी देर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते जा रहे हैं हमारा सारा ध्यान किस पर आ गया, ब्रीद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. तो उतनी देर कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आते. लेकिन दिस इज अगेन हमने क्या किया, एक जगह से फोकस हटाया दूसरी जगह ले आए तो वो चीज़ की थॉट्स नहीं आई. लेकिन जब मेडिटेशन करना बंद किया फिर उसके बाद तो फोकस फिर कहाँ जाएगा, फिर उन्हीं बातों पर जाएगा जहाँ से हट कर आए थे, फिर थॉट्स की क्वालिटी वही हो जाती है. तो जब इस तरह की मेडिटेशंस हम करते ये हमें बेनिफिट बहुत करती हैं क्योंकि हमारी डिप्लीशन नहीं होती, लेकिन वो उतनी देर बेनिफिट करता है. एंड फिर उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि माइंड चार्ज हो गया ना तो उसका इफ़ेक्ट आगे सारा दिन पर कैरी फॉरवर्ड होता. लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, तो मेरा माइंड तो वही थॉट पैटर्न पर है, उसकी वो थॉट्स तो उसी क्वालिटी के, अगेन इट विल गो बैक टू थिंकिंग द सेम वे, क्रिएटिंग द एंगर, क्रिएटिंग द स्ट्रेस. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन आई सिट फॉर मेडिटेशन, अपने आप को हम डी स्ट्रेस करते वो सारा जो अक्यूमुलेट हो गया हो. तो फिर बहुत लोग इसलिए कहते कि हाँ मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ लेकिन जब मैं मेडिटेशन अब करूँगा ना तो मैं उसको सारा ख़त्म कर दूंगा. तो मेडिटेशन एक विधि क्या बन गई है कि ब्लॉकेज क्रिएट होगा, अब आप बैठो और फिर उस ब्लॉकेज को ठीक करो. एक ट्रैफिक जैम क्रिएट होगा, फिर आप एफर्ट करो उस ट्रैफिक जैम को सॉर्ट आउट कर दो, एंड पीपल आर फाइन विद इट कि ये ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस नेचुरल है ये माना, तो ब्लॉकेज नेचुरल है, तो अब हमने एक टेक्निक ढूंढी जिससे हम ब्लॉकेज को ठीक कर सकें। एंड सेम थिंग इवन हैपेंस कि कई बार मेडिटेशन में जो हम विधि अपनाते हैं उसको हम कहते हैं मंत्र जाप, कि एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव शब्द का उच्चारण हम रिपीटेडली करते हैं। अब दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, क्योंकि जितनी देर वो इतने प्योर शब्द का उच्चारण किया उतनी देर कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कईयों के साथ ऐसा होता कि जब वो शब्द का बहुत समय से हम उच्चारण करते जा रहे हैं तो मन को यहाँ कुछ नया नहीं मिलता,
0: वो अपनी जो हम जो जो कहते हैं कि
1: क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी नहीं है। तो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद इसको आदत पड़ गई है कि इन्होंने यही शब्द का उच्चारण करना है। तो कई बार अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे और मन किसी बात से डिस्टर्ब्ड है, कोई परिस्थिति को उलझा हुआ है, तो आप पाएंगे कि आप मंत्र का उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन मन शायद कहीं और चला
0: और
1: गया
0: वो
1: है।
0: इतनी स्ट्रॉन्ग जब आ जाती है परिस्थिति, तब तो बिल्कुल, मतलब कितना भी आप कर ले, तब तो देन वी से कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा।
1: क्योंकि मंत्र का उच्चारण करते हुए भी, क्योंकि इट बिकम मैकेनिकल ना, तो हम बोलते जाते हैं वो मुख से लेकिन मन कहीं और चला जाता है। तो ये जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन ये हमें रेगुलरली करनी पड़ती है अपने आप को डीकंजेस्ट करने के लिए, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि मन की क्वालिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर वर्क करते हैं। अब इसमें भी आज भी दुनिया में बहुत सारी टेक्निक्स है कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना। अगर हम थॉट लेवल पर उसको चेंज करते हैं, थोड़े दिन के बाद हम पाते हैं कई बार कि वही क्वालिटी ऑफ थॉट्स
0: दोबारा
1: फिर
0: आ
1: से आ
0: जाते हैं।
1: जाती है, क्योंकि थॉट का फाउंडेशन क्या है, वो है हमारे बिलीफ सिस्टम्स या डीप रूटेड संस्कार्स, जिसको हम कहेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स। जब तक संस्कार पर वर्क नहीं किया है, उस फाउंडेशन की लेयर को चेंज नहीं किया है, तो उसके बाद जो भी ऊपर से ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो टेम्प्ररी हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन में तो अभी भी वही संस्कार है। तो राजयोग मेडिटेशन में हम मंत्र जाप भी नहीं करते, ब्लैंक भी नहीं होते हैं, एंड इट डजेंट इन्वॉल्व एनी फिजिकल ब्रीदिंग टेक्निक। राजयोग में हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, रोकते नहीं हैं लेकिन चैनलाइज करते हैं और नए क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर एक ही थॉट हो सकता है। तो अगर हमने एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किया तो जो एक्चुअल पहले से क्रिएट हो रहा है वो तो अपने आप वैसे ही बंद हो गया, जो हमारा एफर्ट था नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को ख़त्म करने का वो तो वैसे भी हो गया क्योंकि हमने पावरफुल पॉजिटिव थॉट क्रिएट किए। लेकिन इसका जो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड के प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या होता, आप थोड़ा समय अपने साथ बैठकर माइंड की ये ट्यूनिंग करते हैं एंड पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स इस तरह क्रिएट करते, तो उसका बेनिफिट सिर्फ उतनी देर नहीं रहता, लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन में जाते हैं, परिस्थिति में, ऑफिस में, लोगों के साथ,
0: इट स्टेज विद यू, यू नो दैट्स
1: इट हैज बेसिकली चेंज्ड योर वे ऑफ थिंकिंग। सिर्फ उतनी देर नहीं बेनिफिट होता लेकिन बेसिकली हमारा जीवन के प्रति, लोगों के प्रति और अपने प्रति भी एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया। तो उसका बेनिफिट हमें फिर प्रैक्टिकल लाइफ में होता। तो फिर मेडिटेशन और प्रैक्टिकल लाइफ
0: अलग अलग
1: सेपरेट नहीं रह जाते। इट इज माई, इट्स लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स माई लाइफ स्टाइल। तो उसमें फिर फोकस थोड़ा सा ये चेंज हो जाता कि ये नहीं कि स्ट्रेस क्रिएट करें, गुस्सा क्रिएट होता ही है, नेचुरल है, और फिर कल सुबह बैठ कर उसको ख़त्म करेंगे, उसको सफाई कर देंगे। यहाँ पर इसमें अटेंशन ये होता कि वो क्रिएट ही
0: ना हो।
1: ये नहीं कि कंजेशन हो फिर सुबह ठीक करें, फिर सारा दिन क्रिएट हो फिर ठीक करें, दैट इज लाइक बीमार हो फिर ठीक हो, फिर तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना, रोज रोज बीमार
0: हो। क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, दैट आई अंडरस्टैंड, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। पॉजिटिव मीन्स जो सही है, जो खुद को अच्छा फील करवाए। लेकिन अब जब हम अपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट, हाउ डू आई गिव पावर टू दिस पॉजिटिव?
1: सी, बिकॉज़ कई बार हम दुनिया में भी, क्योंकि हमने अलग अलग फॉर्मूले सुने हैं, अलग अलग टेक्निक सुनी है पॉजिटिव थॉट की, तो हम

0: पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं आ रही. वो पॉजिटिव है लेकिन वीक थॉट है, इसलिए वो पॉजिटिव बहुत जल्दी फॉलोड बाय नेगेटिव होता है. तो पॉजिटिव थॉट विद कन्विक्शन एंड जिसमें बिल्कुल एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होगा, फियर नहीं होगा, इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वो रियलिटी में फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड वो हमें स्टेबल रखेगा. सी, हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं मीन्स वी आर रिमेनिंग स्टेबल, लेकिन पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया उसके बाद फॉलोड बाय इनसिक्योरिटी या फियर, तो फिर वो यहाँ ये क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर से क्रिएट किया हुआ थॉट है लेकिन डीप लेवल का जो संस्कार है वो अभी भी गुस्से वाला है. वो अभी भी वो संस्कार है कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए. यू नो, लेट्स से कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ और मेरा वो डीप रूटेड संस्कार अभी भी है कि लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए. ऊपर से मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, हाँ कोई बात नहीं, आप जिस तरह से कर रहे हैं ठीक है, आई विल एक्सेप्ट यू. लेकिन एक बार वो कर पाती, दो बार कर पाती, तीसरी बार ऐसे हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू गो ऑन एडजस्टिंग, क्योंकि मेरा संस्कार जो है वो फिर वो मुझे डिस्टर्ब करना शुरू करता कि नहीं, दिस इज नॉट द वे इट्स गोइंग टू वर्क, तुम्हारा तो काम ही नहीं होगा अगर तुम ऐसे ही लोगों को एक्सेप्ट करते रहोगे. तो फिर वो एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ थॉट मेरे अंदर क्रिएट करता. मेडिटेशन इज लाइक अ चार्जिंग प्रोसेस जिसमें हमें अपने डीप रूटेड संस्कार्स, डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम्स चेंज होते, जिससे फिर थॉट लेवल पर वर्क ही नहीं करना पड़ता. यू सी, आप एक स्टेप और पीछे चले जाएंगे जब आप अपने संस्कार को चेंज कर देंगे, आपको थॉट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जिस क्वालिटी का संस्कार उसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट होने वाली है. तो मेडिटेशन में जब हम संस्कार लेवल पर वर्क करते तो फिर थॉट वो आएगा ही नहीं उस क्वालिटी का. एंड फिर ये जो अटेंशन रख के एफर्ट किया जाता है फिर वो सफोकेटिंग नहीं लगता. यू नो, कई बार क्या होता है अगर हम रूट लेवल पर नहीं काम करते और प्रैक्टिकल में सिर्फ काम करने लग जाते हैं तो ऊपर ऊपर से तो रोक लेते हैं अपने आप को,
1: गुस्सा रोकने की कोशिश करते हैं. और वो बहुत बार होता है, यू नो, कि गुस्सा रोकने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं आई हैव टू बी स्टेबल. एंड वो उस वक्त पांच सिचुएशन, जैसे मैंने कहा पांच टाइम तक तो इरिटेशन नहीं हुई, छठे पे वो फिर मैं कब तक रोकूं,
0: क्योंकि अपने अंदर पावर नहीं भरी और बाहर से सिर्फ करने की कोशिश की. तो इट इज़ ओके टू स्टार्ट विद, नहीं तो बाहर से भी नहीं शुरू करेंगे, लेकिन शुरू भी करते जाएं, एफर्ट भी अपने ऊपर लगाते जाएं, लेकिन साथ साथ अपने अंदर ताकत भी भरनी पड़ेगी. क्योंकि अगर कमजोरी के हालत में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, सी जो अब हम इस प्रोग्राम के द्वारा जो हम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, दिस इज क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट्स नॉट वेरी सिंपल कि आपके आसपास लोग कुछ भी कर रहे हैं आप उनको स्वीकार करें, आप गुस्सा ना करें, आप फिर भी प्यार से रहें, आप शांत रहें. दिस इज नॉट वेरी ईजी इन प्रेजेंट चैलेंजिंग टाइम्स अगर आप साथ साथ अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत नहीं करते. क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत करते गए ऊपर से अंदर ताकत नहीं थी और वो सडनली फिर अंदर से, यू नो, एक दिन यू विल जस्ट एक्सप्लोड. ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो डीप लेवल से हुआ है, विद अंडरस्टैंडिंग हुआ है एंड साथ साथ उसके लिए आपने अपने अंदर ताकत भी भरी है, ताकि आप कभी भी अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड ही ना हो जाएं ये एफर्ट करके. क्योंकि कई बार लोग थोड़ा सा ट्राई करते, वहाँ से रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलेगा कि सामने वाला चेंज हो जाए या ऑफिस में सब एकदम प्यार से काम करने लगे, फिर हमें लगता है नहीं, और फिर हमारी जर्नी आकर रुक जाती है एंड पुराने बिलीफ सिस्टम्स तो रेडी पड़े ही हैं तो उनके पास वापस जाना मुश्किल नहीं होता. तो इसमें लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. जैसे कि एक जर्नी पर चल रहे हैं लेकिन साथ साथ अपने को फ्यूल करना बीच बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके लिए सुबह के समय जब हम अपने साथ बैठते और साइलेंस में बैठते हैं तो हमें साइलेंस में बैठकर, क्योंकि मेडिटेशन एक्चुअली क्या है, एक बेसिक लेवल पर अगर हम देखें तो अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको हमें पहले रिजॉल्व करना है, फिर जो हमारे बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे, उन पर मेहनत नहीं करनी है. तो मेडिटेशन ऑफकोर्स डीपर लेवल पर हम और आगे देखेंगे कि कैसे करते, लेकिन बेसिक लेवल पर जो सभी अब शुरू कर सकते हैं वो है कि सुबह का समय पहले तो अपने आप से अपॉइंटमेंट, वी हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, एंड इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं. क्योंकि जितनी यहाँ स्पीड ऑफ थॉट्स है 5-10 मिनट तो सिर्फ उसको थोड़ा सा साइलेंट करने में ही लग जाता है. तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़्यादा दें एंड उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करें, बंद

0: नहीं करें, लेकिन अपने आप को फोकस करें कि आई एम क्रिएटिंग अनदर थॉट। तो यहाँ से थॉट्स आएंगे, आप ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर उलझ जाएंगे। सपोज कोई थॉट आया, कल तो उन्होंने ऐसा कहा था, अब अगर उसी में उलझ
1: के आ गया कि साथ साथ का पूरा सिनेरियो चलेगा,
0: या आज मुझे ऑफिस में ये करना है, अगर आप उसको एनर्जी नहीं देंगे, उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे, बहुत जल्दी दे आर स्टॉप्ड, दे आर ओवर एंड गॉन, हम उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते। हमें ध्यान रखना है मुझे क्या क्रिएट करना है। तो जो लोग कहते हैं ना कि एक पॉइंट को लो और उसको फोकस करो, इट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल पॉइंट कि एक स्थान बाहर, लेकिन एक थॉट को लो पहले, वो यहाँ पॉइंट क्रिएट करो, एक थॉट को लो और उस पर फोकस करो। तो सपोज हम एक थॉट लेते, आई एम अ पीसफुल बींग, शांति मेरी अपनी नेचर है, इसको क्रिएट करना है। और इसके साथ साथ हमें विजुअलाइज करना है कि शांति जब मेरे जीवन में इतनी नेचुरल आ जाएगी, मेरी जीवन कैसी हो जाएगी। विजुअलाइज योर सेल्फ विद दैट वैल्यू एंड दैट पावर ऑफ पीस। यस, दिस इज बिकॉज
1: एकदम से स्टोरी, यस
0: यू नो, इट्स लाइक अ प्लानिंग फॉर द डे। क्योंकि सिर्फ थॉट लेवल पर करते हैं तो उतना अभी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर साथ साथ विजुअलाइज करते तो जो चीज को हम विजुअलाइज करेंगे वो हमारी फीलिंग भी बनती जाती,
1: इम्प्लीमेंट होना भी आसान हो जाता,
0: वो इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता। जैसे हमने पहले बात की, इरिटेट नहीं होना है, मतलब शांत रहना है। अब वो सीन ले आओ यहाँ कि कौन सी ऐसे सिचुएशंस थी जिसमें हम इरिटेट होते थे, एंड नाउ क्रिएट द सीन कि वही सीन है, वही कंप्यूटर है, वही लोग हैं, बट हम कैसे हैं, हम पीसफुल हैं। लुक एट योर सेल्फ एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, लुक एट योर सेल्फ कि जब वो शांति आपके स्वरूप में आ गई, आपकी जीवन कैसी हो जाएगी। यू नो, वो गोल सेटिंग है, दिस इज गोल सेटिंग, कि हम उस गोल को सेट करें और फिर उसको प्रोग्रामिंग करके यहाँ फिट कर दिया,
1: फिर उस पर
0: सारा दिन वो हम पर चलना शुरू हो जाएगा।
1: एक और बात है जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम्स है जिन पर हम काम करना चाहते हैं कि वो हम डिलीट कर पाए, तो उसके लिए क्या ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें उन्हें भी इमर्ज करके
0: जो हमारे जैसे जैसे माइंड साइलेंट होता जाएगा और ऑर्डिनरी थॉट सारा दिन की धीरे होती जाएंगी, तो हमारा ये जो थॉट की स्टेज है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ऊपर की लेयर का माइंड है जो रोज की मर्रा की थॉट्स क्रिएट करता। जब ये धीरे धीरे बंद हो जाती, वी कम टू द लिटिल लोअर लेयर विच इज़ द सब कॉन्शियस माइंड। तो हम फाउंडेशन लेयर में चले गए जहाँ वो हमारी डीप थॉट्स बैठी हुई हैं, जिसके बेसिस पर ये सारी थॉट्स क्रिएट होती। एंड तब उस साइलेंट की स्टेज में हम जो बीज बोएंगे, जो थॉट क्रिएट करेंगे, वो फाउंडेशन में जाकर बैठ जाएगा। एवरी डे इफ आई सिट एंड आई टेल माई सेल्फ दिस कि हर एक जो कर रहा है अपने अनुसार सही कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी, अपनी स्पीड और अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन से काम कर रहा है। The world is not going to work according to me. I can expect, but people not necessarily will meet my expectations. ये अपने आप को बहुत deep silent mind में ये डालना है. This is very deep mind programming. जो mind में फिर ये belief systems बैठते जाते हैं foundation layer में, तो सारा दिन वो हम पर work करते हैं, क्योंकि ये foundation layer में बैठा, इसके basis पर ही सारे थॉट्स क्रिएट होने वाले हैं। तो अगर हमने इसको पहले माइंड को साइलेंट नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही बैठे और हमने कहा आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन, ये ऊपर ऊपर की थॉट है, नीचे वाली लेयर की थॉट तो यही है सब लोग मेरे अनुसार होने चाहिए, तो फिर जब प्रैक्टिकल में जाएंगे वही होगा। तो इसलिए स्लो डाउन द माइंड फर्स्ट बाय क्रिएटिंग दीज वेरी पॉजिटिव थॉट्स, एंड जब आप एक्सपीरियंस करें कि आपकी सारी ऑर्डिनरी थॉट्स खत्म हो गई, गो एंड प्लांट द सीड, टेक ओनली वन बिलीफ सिस्टम, कोई एक बिलीफ सिस्टम, अ डे भी नहीं, टेक वन फॉर क्वाइट सम टाइम इफ यू वांट, क्योंकि ये एक एक बिलीफ सिस्टम
1: यू नो काफी पावरफुल, यू शुड वी शुड फील दैट वो बिलीफ सिस्टम कैसे मेरा बन गया जो नया क्रिएट किया, कि जब भी सिचुएशन आएगी वो पॉप अप करे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वो पॉप अप करना चाहिए, ना कि पुराना बिलीफ सिस्टम।
0: एंड जब आप एक दिन उसको लेंगे, फिर आपको सारा दिन में उसका रिजल्ट दिखाई देगा, वो आपको इंस्पायर करेगा अगले दिन फिर बैठकर वो सीड को प्लांट करने के लिए। एंड थोड़े दिन के अंदर आप रियलाइज करेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता जा रहा है। जहाँ वो चेंज होता गया, थॉट लेवल पर कुछ वर्क नहीं करना पड़ता, अटेंशन भी नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि
1: बिलीफ सिस्टम
0: फाउंडेशन ही चेंज हो गया।
1: दैट्स अमेजिंग, दैट्स एक्चुअली अ वंडरफुल टेक्निक, कि हम बहुत ज्यादा अटेंशन ना देकर फिर
0: क्योंकि अटेंशन देंगे ना तो वो थोड़ा ऐसे मेहनत वाला काम लगेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइफ इज मेंट टू बी
1: एंजॉयड,
0: लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. उसको हम ऐसे टाइट होकर अगर एफर्ट करेंगे तो हम इंजॉय नहीं करेंगे. ये जर्नी हमें इंजॉय करनी है, सो वी हैव टू मेक इट वेरी वेरी नेचुरल.
1: सिस्टर शिवानी, अमेजिंग. यू नो टुडे व्हाट वी लर्न इज कि मेडिटेशन वो माध्यम है जो योग राजयोग की हम बात करते हैं, जो जो हमने समझा वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच ओम शांति. अगेन हर बार की तरह बॉल आपके कोर्ट में है. क्या करना है हमें? मेडिटेशन में बैठकर उन सभी बिलीव्स को अपना बनाना है. कोई सवाल, कोई बात मन में है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में और मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस यानी कि तनाव, जिसे हम अभी तक जिंदगी का एक हिस्सा मान रहे थे। हमने मान लिया कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी में है ही, और ये भी समझ में आया कि स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो बॉडी पर बहुत आती है, इस कारण स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात की। लेकिन जब पिछली दो कड़ियों में हमने बात की है स्ट्रेस की, तो एक बात सामने आई कि जिस तरह से जब हम कार चला रहे होते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि कार के अंदर क्या है या कार में क्या है, और जब कभी प्रॉब्लम आती है तब मुश्किल आ जाती है। इसीलिए अगर स्ट्रेस को दूर करना है, तनाव को दूर करना है, उसके लिए ज़रूरी है खुद को पहचाने। खुद को पहचानने की एक कोशिश ये कि मैं कौन हूँ, ये समझा। अब आगे कुछ और बातें करते हैं स्ट्रेस से जुड़ी हुई, तनाव से जुड़ी हुई, और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। स्ट्रेस को हमने समझा कि स्ट्रेस है, हम हर बार ये कहते आए हैं। पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि उससे मुक्त होने के लिए बहुत से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं बाहर तक रुक जाते हैं। एज ऑलवेज इट हैज़ टू गो विद इन, यू नो, इंटरनल है। मैं कौन हूँ ये जान लिया, अब आगे कहाँ बढ़ेंगे?
1: क्योंकि जैसे पिछली बार भी हमने देखा कि अपने आप के अंदर जो ये दर्द आ रहा है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ अ फॉर्म ऑफ पेन, तो दर्द को आने के लिए मुझे अपनी कॉन्शियसनेस की मैकेनिज्म में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव टू बी एबल टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट। लेकिन कॉन्शियसनेस के अंदर प्रॉब्लम है, अभी तक प्रॉब्लम बाहर थी, तो इट वॉज ईजी कि आप बाहर ढूंढो किसको ब्लेम करें हम अपने मन की स्थिति के लिए। तो हमें बहुत जल्दी कोई ना कोई मिल ही जाता था, और जब कोई नहीं मिलता तो हमारी उंगली हमेशा ऊपर हो जाती कि ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार भी भगवान है। तो इट वॉज ऑलवेज ब्लेमिंग समबडी एल्स, तो वो बहुत ईजी था। अब जब समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फिर इसको फिनिश भी मुझे खुद ही करना होगा। तो अपने बारे में कुछ एक बातें जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता, जिसमें सबसे पहली बात जो हमने देखी कि मैं कौन हूँ जिसके बारे में मुझे जानना है। क्योंकि आज दिन तक मैं वॉज लेबल्स के शरीर, नाम, पोजिशन, पीपल, रिलेशनशिप्स, डेजिग्नेशन, बट नाउ वी अंडरस्टूड कि मैं ये सबको चलाने वाली, इन सबको यूज़ करने वाली, ये सारे रोल्स को प्ले करने वाली, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम एनर्जी, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जी। अब इतना तो जान लिया कि मैं एनर्जी हूँ। अब इस एनर्जी के बारे में हमें कुछ एक बातें जाननी होंगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अपने बारे में जाननी होगी, मेरी नेचर क्या है, मेरी वास्तविक नेचर क्या है। क्योंकि आज बहुत सारी बातों के लिए हम कह देते हैं ये तो मेरी नेचर है, यू नो, एंड गुस्सा करना मेरी नेचर है। व्हाई वी से ये मेरी नेचर है, क्योंकि जो चीज़ मेरी नेचर है उसको मैं चेंज नहीं करती फिर, बिकॉज नेचर कम्स फ्रॉम द वर्ड नेचुरल, तो नेचुरल है ये मेरे लिए, तो उसको फिर चेंज क्या करना,
0: वो मुझे मिल जाता है ना, वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आई डोंट हैव टू चेंज दैट बिकॉज इट्स नेचुरल।
1: चिंता करना, इवन टेंशन करना, ये भी करते करते करते हैबिचुअल हो गए, तो हैबिट को नेचर बना दिया। क्योंकि दो अलग वर्ड्स है, एक है आदत और एक है आपके व्यक्तित्व स्वरूप क्या, हैबिट एंड नेचर। कोई चीज हमने बहुत बार की, करते करते करते हैबिट बन गई, हैबिट को हमने कह दिया ये मेरी नेचर है, लेकिन हैबिट बनी तो हैबिट चेंज भी तो हो सकती है। तो हमें अपनी सही ट्रू नेचर के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि रियल ब्यूटी, वी आर ऑल सो ब्यूटिफुल, लेकिन क्योंकि मैंने समझा मैं शरीर हूँ तो आई कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन मेकिंग द बॉडी ब्यूटिफुल।
0: एक्चुअली यू नो ओवर द ईयर्स या देखा जाए तो अगर ये पढ़ते चढ़ते चढ़ते हमने वो सभी चीज़ों को अपनी नेचर मान के अपने आप को ये वो दे दिया है, ये लिवरेज दे दी है कि इट कांट बी चेंज्ड,
1: इट कांट बी चेंज्ड, नेचर वर्ड ऐड करने से ही। तो परमात्मा शिव बाबा हमेशा ये याद दिलाते कि जब ये स्मृति आ गई कि आप आत्मा हो, तो अब आत्मा को अपनी ओरिजिनल नेचर की स्मृति आनी चाहिए, और फिर वो नेचर आपकी नेचर है, ये नेचर आपकी बनी, लेकिन ये नए संस्कार बने, लेकिन आपके ओरिजिनल संस्कार क्या है वो आपकी ओरिजिनल नेचर है। तो रियल ब्यूटी को आज दिन तक हम बाहर ढूंढते आए, सुंदरता को बाहर ढूंढते आए, लेकिन ब्यूटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी टच्ड और कैन बी सीन, इट हैज टू बी फेल्ट। तो दैट रियल ब्यूटी आई कैन फील इन साइड मी when I am at peace, when I am giving something to anybody without expecting anything in return। ये चीज़ें हैं जो हमने शायद बहुत समय से की नहीं है कि किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी फिजिकल, लेकिन इवन किसी को प्यार अगर हम दे रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. क्योंकि जैसे ही हम देते हैं तो देने से पहले हमारी एक लिस्ट होती है कि अब मुझे आपसे क्या क्या चाहिए. मैंने आपको रिस्पेक्ट दी तो आपको भी तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो जहां मैंने दिया और देने से पहले मुझे ये पता था कि मुझे आपसे क्या चाहिए, आई कांट फील माई पीस. क्योंकि जहां आपसे नहीं मिला तो दैट पीस गेट्स डिस्टर्ब्ड. तो अभी तक क्या हुआ, हमने एंगर स्ट्रेस इनको अपनी नेचर बना लिया और परमात्मा ने हमें आकर याद दिलाया कि हर आत्मा, एवरी सोल दैट एग्जिस्ट, उसकी ओरिजिनल नेचर है शांति, उसकी ओरिजिनल नेचर है प्रेम, हैप्पीनेस एंड प्योरिटी. You know, every soul is so beautiful because it's full of purity, happiness, love, truth. But we kind of lost it. Kyun? Kyunki jab hame kisi ne dekha hame aur hum par comment kiya ke you're looking very beautiful. To humne socha beautiful arthat how I am looking and not how I'm feeling. To kisi ne kaha aap is dress mein bahut achhe lag rahe hain. To I connected my looks now with the dress. For फिजिकल लुक्स के अलावा भी हमारे बिहेवियर्स पे भी बहुत लोगों ने कमेंट्स पास किए. जैसे अगर मुझे फील होने लगा कि अगर मैं एक गैदरिंग में हूँ तो अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और यू नो जोक्स क्रैक करती हूँ तो मुझे लोगों की अटेंशन मिलती है. तो जब मुझे वो अटेंशन मिलती जाती है बहुत समय, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने पर्सनालिटी को वैसा बनाना शुरू कर देती हूँ जिससे मुझे वो अटेंशन मिलेगी.
0: क्योंकि वो मुझे लगता है दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज.
1: दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज. इफ आई एम वेरी शाई, मैं बहुत क्वाइट हूँ, तो मुझे सबसे सिंपथी मिलती है, बेचारी तो चुपचाप बैठी रहती है. देन आई स्टार्ट से थिंकिंग कि ये इमेज को इस तरह से परसेप्शन मिलती है. इफ मैं गुस्सा करती हूँ, बहुत ज़्यादा बार बार जोर से बोलती हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि मैं औरों के अंदर डर क्रिएट कर सकती हूँ. तो ये सारी पर्सनालिटीज़ देखते देखते हम अपनी सेल्फ इमेज बनाना शुरू कर देते हैं. आप देखो कितने सारे भाई बहने हमें ईमेल्स लिखते हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत क्वाइट हूँ लेकिन मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट बनना चाहता हूँ. व्हाई? बिकॉज़ द माइंडसेट सेज कि जो एक्सट्रोवर्ट है उसको ज्यादा सभी से अप्रिसिएशन मिलेगी. तो ओरिजिनल नेचर को पूरी तरह से भूल गए और ये जो इमेजेस बनाते गए और जिन इमेजेस के लिए जो रिस्पॉन्सेस औरों से मिलते गए उस अनुसार अपनी पर्सनैलिटी को बनाना शुरू कर दिया. और इतना बाहर जाते गए कि जो रियल था, जो सत्य था थी, उससे कई दूर चले गए. और ये इमेजेस बनाने के प्रोसेस में अपनी सत्यता को हमेशा भूलते गए क्योंकि हमने सोचा एंगर, दिस क्रिएट्स फियर, सो आई स्टॉप्ड एक्सपीरियंसिंग पीस, आई ऑलवेज मूव्ड आउट फ्रॉम द रियलिटी. तो अब जब हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते, द टाइम हैज कम जब हम अपनी रियल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें. बिकॉज इट्स नॉट इनफ टू से कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. अब उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? एक है जब हम मेडिटेशन में बैठते और जब हम ये थॉट्स क्रिएट करते और हम बाकी नॉइज को फिनिश कर जाते और जब हम परमात्मा जो शांति का सागर है उनके सम्मुख बैठते, तो हम कुछ एक क्षणों के लिए वो शांति को अनुभव करते हैं. लेकिन फिर भी उस अनुभव के बाद मैं उस ओरिजिनल नेचर को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बना लूं? यू नो, बिकॉज इट्स सेइंग वो 5 मिनट तो बहुत अच्छा था, 10 मिनट तो बहुत अच्छा था, लेकिन सारा दिन में नाउ टू एक्सपीरियंस कि आई एम अ पीसफुल सोल. बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नाउ हू हैव जॉइंड, दे हैव पिक्ड अप ऑल दिस, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, एंड दे ऑल राइट दैट एंड दे आर लाइकिंग दैट. यू नो द ब्यूटी इज कि जब आपको अपने बारे में ये पता चलता है, यू रियली लाइक इट कि मैं आज दिन तक अपने बारे में क्या सोच रहा था, एंड एक्चुअली आई एम अ प्योर सोल. एंड जितनी बार आप अपने आप को याद दिलाते हैं आई एम अ प्योर सोल, यू फील वेरी गुड बिकॉज यू कनेक्टिंग बैक टू द ट्रूथ, यू कनेक्टिंग बैक टू रियलिटी. लेकिन अब इसको सिर्फ एक्सपीरियंस तक न रख के अब इसको एक्सप्रेशन में लाना होगा, तब वो एक्सपीरियंस और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. मैं एक पीसफुल सोल हूँ, तो ये सिर्फ बोलने में नहीं, सवेरे कहा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दिन में तो वही ऑर्डिनरी वे ऑफ शाउटिंग, गेटिंग इरिटेटेड, एंग्री, आई विल नॉट एक्सपीरियंस पीस. तो माई रियल ब्यूटी, हाउ कैन आई शेयर इट विद द वर्ल्ड, is when I will bring it out into expression. उसको अपने व्यवहार में लाना होगा. बहुत गुस्सा है मेरे आसपास, कोई ना आवाज है, अग्रेशन है, सब कुछ टर्मोइल में है, लेकिन उस क्षण आई एम एब्सोल्युटली पीसफुल. एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग बट आई एम एब्सोल्युटली पीसफुल. इट इज एट दैट टाइम दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई पीस, बिकॉज जब एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम पीसफुल इज नो बिग डील. बट वेन एवरीथिंग अराउंड मी सीम्स टू बी गोइंग रॉन्ग, विच द वर्ल्ड थिंग्स इज गोइंग रॉन्ग, एंड एट दैट टाइम आई कैन एक्सपीरियंस कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, देन आई हैव एक्सपीरियंस्ड पीस एंड आई हैव एक्सप्रेस्ड पीस.
0: स्प्रेड इट, यू नो, यस.
1: एंड जैसे ही मैंने उसको अपने एक्सप्रेशन में लाया, वो मैंने सिर्फ अपने तक ना रख कर आप तक भी पहुंचाया, क्योंकि अगर एक ग्रुप में सब कुछ टर्मोइल में हो, अगर एक आत्मा भी अपनी वो स्थिति को मेंटेन कर सकती है, तो वो पावरफुल स्थिति फिर औरों की स्थिति को मदद करती है स्टेबिलिटी में लाने के लिए. अगर किसी ने कोई गलती की है और वो हमसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुस्सा, जजमेंट, एंड अगर उस समय हम उनको दे पाते हैं एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, देन आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर माई सेल्फ and for the soul. So let's not just keep our nature just to that morning meditation, lekin usko sara din mein practical mein use kare, aur jitna use karte jayenge utna wo sanskar bhi strong hota jayega. Some people feel ke hum itna sun rahe hain, hum roz dekh rahe hain, lekin hamare se nahi ho raha, to hoga kaise? There is no other formula. करके देखो. करना होगा कि जब सब कुछ टर्मोइल में है तब उस टाइम डिटैच हो जाओ. लेकिन नॉर्मल ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या करता है, सब कुछ टर्मोइल में है, अब शोर मचाओ, गुस्सा करो, तो आई फॉरगेट. फिर बाद में सोचते हैं लेकिन मैं साक्षी तो हो नहीं पाया उस टाइम. पहले भरना है अपने अंदर, मेडिटेशन से पावर भरनी है, लेकिन परिस्थिति आने पर उसको यूज करना है. डोंट थिंक दैट थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली. It will not. अगर आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, आपकी पॉकेट में है, जरूरत आने पर आपको उसको निकाल कर यूज करना पड़ेगा ना. डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे पास है तो वो अपने आप यूज हो जाएगा. आई विल हैव टू टेक इट आउट एंड यूज. सो आई हैव दिस पावर, आई हैव टू टेक इट आउट एंड यूज बाय ब्रिंगिंग इट आउट इन माय बिहेवियर. तो जब लुक फॉर द सिचुएशन, बिकॉज सारा दिन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे आने वाली हैं, एंड देन टर्न, एंड फिर अपनी जब ये रियल नेचर को उस सिचुएशन में लेकर आएंगे तो हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा. देन आई विल रियलाइज कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है. जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो मेडिटेशन के अनुभव तक नहीं रह सकती है. उस समय तो अच्छा लगेगा ही लगेगा आपको, लेकिन परिवर्तन मतलब जब
0: दिन भर,
1: सारा दिन में
0: मुझे अच्छा लग रहा है वो आपके साथ.
1: एंड फिर सारा दिन अगर मैं अपने आप को इस तरह हल्का रख पाऊँ तो अगले दिन की मेरी मेडिटेशन भी बहुत अच्छी होगी. अगर मैंने आज सारा दिन बहुत परेशानी में गुजारा, मैं चिंता करती गई जबकि मुझे पता है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं गुस्सा करती रही जबकि मुझे पता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई सिट देन इट्स जस्ट वर्ड्स कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, नो एक्सपीरियंस. एंड फिर थोड़े टाइम अगर एक्सपीरियंस नहीं किया फिर हम कहते हैं दिस डजंट वर्क फॉर मी.
0: मेडिटेशन आल्सो डजंट वर्क. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि अगर सारा दिन नहीं एक्सपीरियंस किया होता या हम नहीं वो कर रहे होते तो अगले दिन जब हम बैठते हैं तो वो खुद को ही झूठा लगने लगता
1: है. एब्सोल्युटली, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी से कॉन्फ्लिक्ट करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं, मैं शांत स्वरूप कहाँ हूँ, मैं सारा दिन में तो इतना गुस्सा करती हूँ. तो वो ऐसा लगता है कि ये बोलना भी कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन. एंड देन पीपल से ये जो थॉट्स है ये जस्ट इमेजिनेशन है, आप हिप्नोटाइज कर रहे हो अपने आप को. इट्स नॉट, हिप्नोटिज्म इज डिफरेंट. दिस इज रिमाइंडिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को सिर्फ याद दिला रहे हो कि मैं कौन हूँ, और उस स्मृति को सारा दिन में फिर यूज करना है. तो अपनी ट्रू नेचर को पहचानना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. ये तीन चार बातें भी अगर मेरे को अपने बारे में याद रहे तो फिर मेरा फिजिकल से और क्या पहना है और क्या इमेजेस औरों को अच्छे लगते हैं उससे मेरा सारा ध्यान हटता जाएगा, क्योंकि नाउ आई नो हु आई एम. इवन इफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डजंट नो अबाउट इट, नाउ आई नो बाय माय ट्रू ब्यूटी लाइज. और जैसे ही हमें अपनी रियल नेचर के बारे में पता चलता तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने आ जाती, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जीवन की यात्रा में, यू नो. क्योंकि हम सब के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. हम लोग हमेशा कहते हैं आपको नहीं पता मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, लेकिन ज़्यादातर वो जिम्मेवारी हमेशा दूसरों की होती है. ऑफिस की, परिवार की, बच्चों की, मेरे अपने प्रति, अपने इस जीवन के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी
0: है? वो तो मैं सोचती ही नहीं ना, और उसको मैं उसको ना सोच के अपने आप को बहुत महान मानती हूँ
1: कि
0: सैक्रिफाइस आई डोंट थिंक अबाउट माय सेल्फ, मेरे को अपने बारे में सोचने का तो वक्त ही नहीं है, अपने लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ और मैं दूसरों के लिए ही करती रहती हूँ, यू नो।
1: और यही हमें समझना होगा कि जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो हम कोई बहुत सही रीति से, जिस तरह से जिम्मेवारी उठानी चाहिए औरों की, वो नहीं उठा पाएंगे। सारा दिन में चलते चलते जितनी बार भी हम कहते इनकी वजह से मेरे माइंड की स्थिति इस तरह से, द मिनट द फिंगर गोज आउट, फिजिकली नहीं तो भी मेंटली, कि इनकी तरफ से, मतलब मैंने सारी पावर यहाँ से, जिसकी तरफ आपने फिंगर पॉइंट किया आपने अपनी पावर दे दी कि आप मुझे कंट्रोल करते हैं, तो मेरी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। परमात्मा ने जो हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया उसमें जो बहुत फंडामेंटल बात है, जिसको हम शायद बहुत बार रिपीट करते हैं लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार समझने के बाद भी सारा दिन में वो यूज़ नहीं हो पाती, एंड दैट इज़ कि दूसरे जो कहते और दूसरे जो करते वो मेरी मन की स्थिति को क्रिएट नहीं करते हैं। उसको सुनकर या उस सिचुएशन को देखकर मैं अपने अंदर क्या क्रिएट करता हूँ उससे मेरी मन की स्थिति बनती है। दिस इज़ something that has to be said to ourselves every time, because बार बार बोलने के बाद भी सारा दिन में हम किसी ना किसी एक को तो बोल ही देंगे, आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, आपकी वजह से मेरा गुस्सा आ गया।
0: अच्छा, हम बोले ना भी अब तो कहीं ना कहीं मन में,
1: मन में, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि इतना समझने के बाद अब बहुत बिहेवियर पर तो ध्यान आ जाता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं औरों को ठहरा देती हूँ बहुत ईजिली, तो उस समय मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर आपको दे दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के प्रति? रिस्पॉन्सिबिलिटी के जीवन में आने वाली जो भी सिचुएशंस या लोग हैं उसके प्रति मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड रिस्पॉन्स प्लस अबिलिटी, तो अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वो क्या है, तो मेरा हरेक के प्रति रिस्पॉन्स क्या होगा, और जो रिस्पॉन्स होगा वही रिटर्न में मेरे पास आने वाला है, एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माई परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण जो होगा, क्योंकि जो मेरा दृष्टिकोण होगा आपकी तरफ वही मैं आपको भेजूंगी बाहर। तो परसेप्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हाउ आई इंटरप्रेट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, क्योंकि सीन चल रहा है, ड्रामा हमारे सामने चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं कि हम उनको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक ही सीन को चार लोग चार डिफरेंट वेज से इंटरप्रेट करेंगे, तो हमारी इंटरप्रिटेशन हमारे हाथ में है, लेकिन हम क्योंकि अवेयरनेस में नहीं चल रहे तो वो बड़ी ऑटोमेटेड सी हो रही है, तो वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेक द कॉन्शियस चॉइस ऑफ चूजिंग द राइट इंटरप्रिटेशन। तो अगर मेरी परसेप्शन नेगेटिव है तो मेरी नेगेटिव एनर्जी आपसे मिलेगी, एंड 100% है कि वापस रिटर्न में मेरे पास ही आएगी और आपको जाते टाइम भी मेरे से क्रिएट होके जाएगी। तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेरी अपनी थी। वर्तमान समय मेजोरिटी ऑफ अस आर कंडीशन्ड टू थिंकिंग नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं हर बात में हम नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, अगर सब कुछ भी ठीक चल रहा होगा तो हमें उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी बन गई है कि वी विल ओनली कैच द नेगेटिव, क्रिएट द नेगेटिव, गिव द नेगेटिव,
0: take negative,
1: get negative in return, and then say my negativity is because of other people. We forget the first three stages, ki humne catch kiya, create kiya, give kiya, fir wo return mein mila, wo skip karke sirf kehte aapne mujhe ye wali energy kyu di, you should give me love and respect. To ye responsibility hai, highest अल्टीमेट जो परसेप्शन हमारा हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, कि ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए आई है। शिव बाबा ने कहा ये ड्रामा कल्याणकारी है। जब परमात्मा के महावाक्य के हर आत्मा के लिए ये ड्रामा कल्याणकारी है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। अब अगर मैं उसको उस परसेप्शन से देखना शुरू कर दूं तो इवन इन द सो कॉल्ड वर्स्ट सिचुएशन आई विल सी कि इसमें मेरे लिए कल्याणकारी क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए फिर भी कल्याणकारी है।
0: तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कि असीम विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे लिए, चाहे मुझे इस वक्त जैसा भी लग रहा हो,
1: इट्स परफेक्ट फॉर मी, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट व्हेन आई से कि दिस इज प्रॉब्लम फॉर मी, तो आई स्टार्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम, जहां मुझे लगता कि इस सीन में भी मेरे लिए एक लेसन आ रहा है, हाँ। कुछ सीखने के लिए, आई विल स्टार्ट लुकिंग एट द लेसन, तो मेरा दृष्टिकोण लेसन की तरफ चला जाएगा, तो मेरा प्रॉब्लम से ध्यान हट जाएगा, एंड आई विल स्टार्ट लुकिंग कि इसमें मुझे क्या सीखना है। तो ये परसेप्शन अगर हमारा रहेगा तो फिर कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि सारा दिन में अगर हम देखें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं, क्योंकि हम उसमें से कुछ सीखते नहीं हैं। अपनी जीवन को देखें, वर्तमान समय कि आपके साथ आपकी लाइफ में जो अभी हो रहा है, क्योंकि मेजोरिटी लोग कंप्लेन करते हैं आजकल, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है या ये बुरा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, करियर अच्छा नहीं जा रहा, वी आर नॉट हैप्पी विद द आउटकम इन माई लाइफ, वॉट इज हैपनिंग। तो एक आउटकम है आउटसाइड और एक आउटकम है इनसाइड, कि मेरी थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, एम आई हैप्पी विद देम। इफ आई एम नॉट हैप्पी विद एनी ऑफ दीज, अभी जो हमारा पुराना तरीका, वी ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, सो मेनी पीपल राइट, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, हाउ टू चेंज माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ अच्छी नहीं है, हाउ टू चेंज हर। तो अगर मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा, अभी तक मेरा था हाउ टू चेंज देम, नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड कि इट्स माई परसेप्शन, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, सबकी तरफ से दृष्टिकोण हटाकर दृष्टिकोण यहाँ पर ले आए कि व्हाट डू आई हैव टू चेंज इन माय सेल्फ, देन इट विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि इस जीवन में अगर एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, वो है अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने के, बिकॉज एवरी थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड इज क्रिएटिंग माई डेस्टिनी, एंड वो थॉट क्रिएट हो रही है हमारी परसेप्शन से। तो मेरी अपने प्रति एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, और वो है अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर हम
0: इनफैक्ट
1: दूसरों को दे देते
0: दूसरों
1: हैं
0: पे,
1: कि हमारी डेस्टिनी क्रिएट कीजिए,
0: गॉड पे या इस तरह से सितारों पे,
1: दैट इज इन द बिग वे, कि हम कहते हैं भाग्य कोई और लिख रहा है, लेकिन सारा दिन में जब आई से कि आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ यू, तो मैंने आपको अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने का हक दे दिया कि मैं आज उदास हूँ आपकी वजह से। आज के मेरे जीवन में, आज के दिन में उदासी किसने लिखी? आपने लिखे। तो मेरा हमेशा आउटलुक बाहर था कि अदर्स आर क्रिएटिंग माय डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग माय डेस्टिनी, एंड दैट्स माय ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डेस्टिनी आई क्रिएट फॉर मायसेल्फ।
0: अब पहली बार हमारा ये टेस्ट है, ओह वाव, दैट्स वंडरफुल, यू नो। अब अभी तक हम जब ये कह रहे थे कि दूसरे की जिम्मेदारी है, तब तक तो फिर हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, लेकिन आज जब हमारे हाथ में है, जब हम खुद तय कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, तब फिर देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी। लेकिन जहाँ हम स्ट्रेस की बात पे आते हैं, जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं और उस वक्त अभी भी याद नहीं रहता, सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है, वो हावी हो ही जाती है,
1: क्योंकि हमने प्रिपरेशन नहीं किया पहले, एंड दैट्स व्हाई द मॉर्निंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन का फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों बार बार सभी से यही कहते कि अगर आप परमात्मा के महावाक्य सुनने रोज जाएंगे, क्योंकि परसेप्शन किससे बन रहा है? बिलीफ सिस्टम से, इंफॉर्मेशन से जो बाहर से आ रही है। अभी तक सारा दिन इंफॉर्मेशन क्या है? मीडिया, नेगेटिव, या यहाँ एक दूसरे से भी जो सुना तो कैसी बातें, नेगेटिव। तो परसेप्शन को चेंज करने के लिए बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन इनपुट जो आ रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। विदाउट फीलिंग एनीथिंग पॉजिटिव, डोंट थिंक दैट पॉजिटिविटी विल गेट क्रिएटेड ऑन इट्स ओन,
0: एंड देन स्ट्रेंथनिंग।
1: यस, तो वो जो परमात्मा के महावाक्य हमें सेंटर पर मिलते हैं रोज, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे धीरे चेंज करते हैं, क्योंकि दे कैरी वेरी ब्यूटिफुल एलिवेटेड प्योर इन्फॉर्मेशन। ज्ञान जो है, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जब धीरे धीरे धीरे रोज पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन से मेरा बिलीफ सिस्टम और मेरा परसेप्शन, और फिर उसको मैं रोज एक्सपेरिमेंट करूँ, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस उससे बनता जाएगा। तो एक ज्ञान का जरूर कुछ ना कुछ ग्रहण करना है हमें, सवेरे 10 मिनट 15 मिनट निकालना है वो ब्यूटिफुल प्योर इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर भरने के लिए, एंड मेडिटेशन। तो देन आई गेट द फूड एंड आई गेट द पावर, एक्सरसाइज भी कर ली और डाइट भी ले ली, तो आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। और फिर सारा दिन में सिर्फ एक ध्यान रखना है, अटेंशन, कि जो किया था वो सिर्फ सुबह तक ना रखकर अब उसको मुझे यूज रख करना है और थोड़ा सा अटेंशन रखने से वो याद रहे,
0: आर्ली जो हम चेक करते हैं
1: वन मिनट तो है हर घंटे के बाद,
0: दैट एक्चुअली रियली हेल्प्स। सिस्टर शिवानी, वक्त जो है वो कई बार पता नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है, बिकॉज हम जब बात कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी बात निकल आती है और जिंदगी के एक नए एस्पेक्ट जो है हर बार की तरह सामने आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए।
1: ओम
0: शांति। स्ट्रेस की जहाँ तक हमने बात की, तो खुद को पहचानने के बाद अब बात ये थी कि अपनी सही नेचर को जाना। प्यार से भरी हूँ मैं, शक्तिशाली हूँ, पीसफुल हूँ, ट्रुथ ट्रू हूँ, प्योर हूँ, ये कई बातें हैं। अगर हम इस सही नेचर को अपनी पहचान लें, फिर आती है बात जिम्मेदारी की, कि जिम्मेवार किसके लिए कौन है, क्या मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसके लिए जिम्मेवार मैं हर बार अपने आसपास या अपनी सिचुएशन को मानूंगा या फिर मैं खुद को मानूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी मेरे ही प्रति है। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए, जैसा कि सिस्टर शिवानी ने भी कहा कि अल्टीमेटली जहाँ हम हर रोज़ सुबह मेडिटेशन की बात करते हैं, वहाँ से पार लेकर जिस स्ट्रेस को हमने जीवन की एक नियति मान लिया है, एक सच्चाई मान लिया है, उससे परे जा सकते हैं। अभी और भी बहुत सी बातें हैं, हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में भी हो, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
2: हमारे फोन नंबर है 09999934444 0999934666 0987366655 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। स्ट्रेस से जुड़ी हुई कुछ और बातें, कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसे रॉन्ग बिलीफ्स को भी साथ मिलकर खंगालेंगे आने वाली घड़ी में। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांट।

बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए है हमारे साथ।
3: दोस्तों, अक्सर हमने देखा है जीवन में चलते चलते राह के हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पर निर्णय की शक्ति बहुत आवश्यक हो जाती है, सही डिसीजन ले पाना। कई बार जब ठोकर लगती है और उस ठोकर के दर्द में हम और ही कुछ ऐसा निश्चय कर लेते हैं, निर्णय बना लेते हैं, जिसमें हमारा ही और नुकसान होने लगता है। दूरदृष्टता की कमी कहते हैं इसे, फार साइटेडनेस का अभाव, जहां हम दूर का नहीं सोच पाते, तुरंत ही रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब व्यक्ति धैर्य से, धीरज से काम लेता है, आगे का सोचता है और अपने अंदर में छिपे हुए गुणों के आधार से निर्णय लेता है, तो उसका लिया हुआ निर्णय न केवल उसके लिए लेकिन अपितु सारे समाज के लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम और आज के हमारे एपिसोड में हम दोबारा मिलने जा रहे हैं शिखर नायक जी से, जो ब्लाइंड इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, और भी कई कीर्तिमान हैं इनके नाम के साथ जुड़े हुए जिनको हम आगे जानते जाएंगे। लेकिन जो मैंने शुरुआत कही दोस्तों, कि कैसे अनेक प्रकार के अभाव में रहते हुए भी, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए भी, शेखर नायक जी की सही निर्णय क्षमता ने उनको हमेशा ही आगे बढ़ाया है। आइए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं दोबारा शेखर जी के स्वागत करने से। शेखर जी, आपका दोबारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है कि आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा बात को आप पूरा दुनिया को सुनाने के लिए जा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी। मुझे एक चीज आपसे यहाँ जानना है कि जब आप क्रिकेट में आगे बढ़ते गए और आप देश ही नहीं, देश के बाहर भी जाने लगे, तो आपके टीम में आप भी हैं और आपके साथ और भी 10 लोग हैं, तो और सभी के सभी एक प्रकार की मुश्किल जीवन को जी रहे हैं, तो जनरली एक टीम में एक दूसरे का हौसला बांधना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब सामने वाला भी कश्मकश में है, मैं भी कश्मकश में हूँ, हम दोनों ही थोड़ा परेशान हैं, तो कौन कैसे किसकी परेशानी को सुलझा सकता है? एक टीम में आप क्या रोल निभा पाते थे ऐसे समय में?
4: हाँ सर, मैंने एक दो तीन एग्जांपल बोलना चाहता हूँ। मैंने कर्नाटक टीम को सिलेक्शन हुआ 1999 में, बाद में 2001 में एक साउथ जोन टूर्नामेंट में हमारा जो टूर्नामेंट चल रहा था, वहां से वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन चल रहा था, तो वो टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप सिलेक्शन करने के लिए बोर्ड के मेंबर्स आए हुए थे, तो वहां पे मैंने फाइनल मैच, कर्नाटका वर्सेस केरला चल रहा था साउथ जोन में, तो वो एक मैच में मैं फाइनल मैच में 249 रन अकेला ने बनाया। अकेला 249 रन बनाने के बाद बोर्ड मेंबर्स को लगा कि ये शेखर, हमको एक अच्छा प्लेयर मिल गया, इसको हम लोग इंडिया टीम में खिलाना चाहिए। तो बाद में मुझे सिलेक्शन किया गया, मैंने इंडिया टीम में मेरा नाम आ गया। बाद में 2002 में चेन्नई में वो वर्ल्ड कप होने वाला था, तो वहाँ पे कम से कम 7-8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले थे। हमारा कोचिंग कैंप चालू हुआ सर, कोचिंग मैंने, मेरा मदर टंग है कन्नड़ा, आपको पता है कर्नाटका में खाली कन्नड़ा बात किया जाता है। आजकल तो पैन इंडिया है, सभी लोग सभी बात करेंगे, सभी लोग है, हम लोग वो स्टेट ये स्टेट करके अभी हम लोग कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। सो दैट टाइम देन इट वाज इन 2001-2, तो मुझे खाली मेरा मदर टंग था कन्नड़ा, मुझे खाली कन्नड़ा आता था, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आता था। मैं अभी जो आपसे हिंदी में इतना अच्छा बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, सब बिकॉज ऑफ इट्स ऑल माई हार्ड वर्क सर। तो तब मैंने इंडियन टीम में आके आने के बाद मेरे पास बहुत सारा आइडियाज है, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, गेम प्लान्स है, तो मैंने खुद को आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विथ माई आइडियाज विथ अदर प्लेयर्स, बिकॉज इंडिया टीम में प्लेयर्स दिल्ली से होंगे, गुजरात से होंगे, राजस्थान से होंगे, जम्मू कश्मीर से होंगे, महाराष्ट्र से होंगे, हरियाणा से होंगे, हिमाचल प्रदेश से होंगे, सभी जगह के प्लेयर्स इंडिया टीम में रहेंगे। तो तब मुझे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना सब मुझे थोड़ा मुश्किल हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट सर, जिंदगी में एज ए फैमिली, एक क्रिकेट टीम है एक फैमिली जैसा, फैमिली में अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो वी आर नॉट गोइंग टू लीड अ गुड लाइफ, सक्सेस लाइफ। यूनिटी, एडजस्टमेंट, यूनिटी रहेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारा फैमिली दूसरा फैमिलियों को हम लोग एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए आपको पता सर, हम ही लोग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करके हम लोग इवन सेमीफाइनल्स को भी नहीं जा पाए, क्योंकि सभी लोग उनका उनका एटीट्यूड दिखा रहे थे कुछ, ओ मैं अच्छा प्लेयर हूँ, आओ आप अच्छा बॉलर है, सब प्रैक्टिस में मैच को जाते समय सब टूस, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। तो वो वर्ल्ड कप भी हम लोग हार गए। अब मैं 2006 में हम लोग पाकिस्तान वालों ने 2002 वर्ल्ड कप चेन्नई में जीत गया, और वो लोग जीत गए ना वैसा कि वर्ल्ड कप है, इसलिए वो लोग 2006 में पाकिस्तान में वो लोग ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप को भी हमको ही जीतना है करके। तो वहां पे भी हम लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाने के बाद हम लोग सभी मैच थोड़ा बहुत हमने प्रैक्टिस अच्छा किए, अब तो फाइनल मैच तक गए सर। हम लोग फाइनल मैच में गए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मैच था, और फाइनल मैच में हम लोग हारे। मुझे इतना इतना नाराज हुआ कि मैं उसी दिन सर उसी ग्राउंड में लास्ट बॉल होने के बाद तुरंत मैंने फैसला कर लिया कि आई वांटेड टू बिकम अ कैप्टन ऑफ इंडियन लाइव क्रिकेट टीम, आई वांटेड टू विन सो मेनी टाइटल्स फॉर माय मदर कंट्री, आई वांटेड टू मेक माय नेशन प्राउड, मेरा तिरंगा को सबके सबसे ऊपर लेके जाके मैं लहराना है। ऑन द डे ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड किया। तो सर हम लोग जिंदगी में हम लोग देख के सीखते हैं ना, हम लोग अब उसको बहुत ऊपर लेके जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन मुश्किलें हमको वहां तक जाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा इधर मुश्किल था लैंग्वेज प्रॉब्लम सर। 2009-10 तक मैंने भाषा सीखना चालू किया, जब जब टूर्नामेंट रहता था मैं हमारा कर्नाटका टीम के साथ में नहीं रहता था, खाली ओडिशा, हमेशा ओडिशा टीम के साथ, दिल्ली टीम के साथ, हरियाणा टीम के साथ, महाराष्ट्र टीम के साथ,
3: ताकि आप वो भाषा सीख सके।
4: यस,
3: मतलब अपने समस्याओं में से समाधान को ढूंढ निकालना, कोई आपसे सीखे।
4: यस सर, यस सर। तो मैंने वो लोग कुछ, अरे यार कल का मैच के बारे में प्लान करना है, क्षेत्र किधर है, बोला तो सर वो तो महाराष्ट्र टीम के साथ है, हमारा कर्नाटक टीम में उनपे डर, हमारा सीक्रेट चेक शेखर उधर बता दे रहा है क्या, हम लोग कल हारने वाले हैं क्या, ऐसा सब सिचुएशन आया और मुझे पीटा भी गया। आप हरियाणा टीम के क्यों साथ में क्यों रहता है, आप गुजरात टीम के साथ में क्यों रह जाता है, मैच के बाद क्या बात करते हो आप हमारा टीम का सीक्रेट बताते हो क्या। मैं सर सब कुछ, वो जो मारा गया, वो जो मुझे डांटा गया, सब कुछ मेरा दिल में रखा, मेरा एक ही एक लक्ष्य था, मैं सबका भाषा सीखना है, उनका भाषा में ही उनको मैं टीम गेम प्लान्स स्ट्रैटेजीज क्या क्या जो है, जो हम लोग क्या क्या कैसा कैसा जीतना है, जीतने के लिए जो जो चाहिए सब तैयार कर लिया सर। फाइनली रिजल्ट हैज कम सर, 2010 शेखर नायक हैज बिकम अ कैप्टन ऑफ इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम करके न्यूज़पेपर में आया सर। उस दिन मैं इतना इतना खुशी हुआ कि उसको देयर इज नो एंड फॉर माय हैप्पीनेस, क्योंकि मेरा मम्मी ने बताया था कि मुझे आप कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, तो मैंने सोचा तब मैं बन गया, मैं भारत देश का कैप्टन बन गया सर। अगर मैं उस दिन ऐसा सोच के मेरा एम्बिशंस, मेरा गोल सब खत्म हो गए, मैं अभी कैप्टन हो गया करके मैं जब चुपचाप बैठ गया तो यहाँ तक नहीं आता था सर। फॉर एवरी सक्सेस, व्हाट एवर सक्सेस यू गेट, यू जस्ट थिंक इट दैट इज माई फर्स्ट स्टेप, देयर आर 100 मोर स्टेप्स टू गो। सो ऐसा ऐसा एक एक सक्सेस के बाद हम लोग रखते रखते गए, तो डेफिनेटली हम लोग एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे सर
3: जी। और यहाँ तक कि मतलब कप्तान बन जाना ये बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात तो तब होगी जब उस कप्तानी का सही इस्तेमाल किया जा सके। अगर कप्तान बन भी गए लेकिन कोई उम्दा परिणाम नहीं आया, उसमें से कोई रिजल्ट ठीक नहीं है, तो लोग फिर यही कहेंगे कि कैसा कप्तान है। तो केवल कप्तान बनना तो ये एक बात होती है, कहने का भाव ये है कि चाहे आप किसी टीम में कप्तान हैं, चाहे आप खेल की टीम में कप्तान हैं, या आप अपने ऑफिस की टीम में कप्तान हैं, या आप अपने स्कूल में क्लास में मॉनिटर हैं, या आप अपने घर के मुखिया हैं, मुखिया का जो रोल है, जो कप्तान का जो रोल है, वो हर एक को समझने का है और हर एक को समझ करके उनके परेशानियों को दूर करने का है और हर एक के अंदर में जो पावर है, जो छुपी हुई खूबियां हैं, उनको बाहर निकालने का। ये काम जो है, ये कप्तान का बहुत मुश्किल काम है जो आपने कर दिखाया और नतीजा ये कि भारत ने
4: सर स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बोलते हैं, लीडर लाइक ए टंग, एनिमीज आर लाइक अ टीथ, एनिमीज आर लाइक अ टीथ सर। अगर सी इफ आई हैव बिकम अ कैप्टन ऑफ इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम, आई शुड हैव ऑल द लीडर क्वालिटीज, और क्या क्या जो हम लोग प्लान करना है, और जो गुजराती प्लेयर का साथ में कैसा रहना चाहिए, मैं उसके बारे में मैं समझना चाहिए, और उसका फील्डिंग स्ट्रेटजी किधर है, उसका बैटिंग स्किल कैसा है, सब समझने के लिए हमको एक लीडर बनना पड़ता है। सो लीडर लेके मैं बोला ना सर, टंग एनिमीज हम लोग बात करते समय, खाना खाते समय, या अपना जीभ है ना सर, अगर उधर इधर थोड़ा सा भी हिला तो आपका टीथ आपका जीभ को काट लेंगे।
3: तो स्वामी विवेकानंद जी का ये जो बात है कि जीवा जो है वो एक निर्णायक की तरह, एक मॉनिटर की तरह, कप्तान की तरह है, और दांत जो है वो सारे शत्रुओं की तरह है। तो भोजन करते समय, खाना खाते समय, बात करते समय कैसे हम हमारे जीव को संभाल करके यूज करते हैं, ऐसे ही जीवन में भी हमको हम हर क्षण ऐसे संभाल करके चलना चाहिए ताकि किसी को भी एक रत्ती भर भी मौका ना मिले हमारे विपरीत कुछ कहने का। ये बहुत सुंदर आपने अपने जीवन का एक मैं कहूंगा प्रिंसिपल हम सबके साथ शेयर किया। यहाँ एक और बात समझ में आती है कि एक होता है अपने टीम के साथ उनके साथ बंद करके खेलना, उनको एक रस कर लेना है, उनको एक सूत्र में बांध करके एकता के साथ खेलना, तो परिणाम में जो भी हो, चाहे हार चाहे जीत, लेकिन वो परिणाम फिर इकट्ठे हम लेते हैं और उसका हम सुख भोगते हैं। जब आप देश के बाहर जाते हैं और आपके सामने एक और टीम होती है, और मान लीजिए उस टीम के साथ आपने कुछ खेल में ऊपर नीचे हो गया, तो उसको मानसिक रीति आप कैसे संभालते हैं? क्योंकि आजकल मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल मान लीजिए मैं कारोबार में हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, किसी ने एक शब्द बुरा कह दिया तो मैं दिल पे उसको ले लेता हूँ। यहाँ तो पूरे टीम के साथ बुरा हो रहा है, या पूरा टीम हार जाता है, या कुछ भी बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है, आप वहां पर क्या सोचते हैं, कैसे आप खुद को संभालते हैं?
4: यस सर, इसीलिए मेरे पास बहुत सारा आंसर है सर। सर एक्चुअली मैं कैप्टन बनने के बाद हम लोग पहले इंग्लैंड को गए, सो इंग्लैंड को गए, इंग्लैंड में एक्चुअली सर उससे पहले हमारा जो ब्लाइंड क्रिकेट है ना सर, हमको यहाँ पे कोई पैसा किसा नहीं दिया जाता, और हमारा कोई रेगुलर स्पॉन्सरशिप नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं करता, बीसीसीआई सपोर्ट नहीं करता, तब हम लोग कभी कभी बैंगलोर से हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश हम लोग जैसे क्रिकेट खेलने के लिए गए लखनऊ वगैरह, हम लोग विदाउट रिजर्वेशन हम लोग जनरल का ट्रेन का जनरल डब्बा में ट्रैवल करके बाथरूम के पास सो के, अगर खाना मिला तो खा के, नहीं मिला तो नहीं खा के, जाके उधर खेल के हम लोग जीत के आया हुआ एग्जाम्पल्स भी है। ओके सर, तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट को चुना क्योंकि मेरा माँ काली मम्मी के लिए और अपना देश के नाम का रोशन करने के लिए। सर हम लोग कैप्टन बनने के बाद जैसे इंग्लैंड को गए ना, हम लोग इंग्लैंड को गए और वहां पे इंग्लैंड का टीम देख रहे हैं, वो लोग स्पाइक शूज पहने, अच्छा जर्सी पहने, राउंडेड कैप पहने हैं, हमारा तो 400-500 रुपए का ट्रैक पैंट और 300-400 रुपए का टी शर्ट, और हम लोग इधर दिल्ली में कई मार्केट में खरीदा हुआ 650 रुपए का शूज। सर वो देख के सब हम लोग कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं सर। सर हम लोग हिम्मत फिजिकली हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना भी गरीब हो, अगर हमारा पास कुछ भी नहीं हो तो भी हम लोग हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो वो लोग इतना परफ्यूम वगैरह लगा के, वो लोग कितना स्मेल, कितना अच्छे से खुशबू आ रहे थे ग्राउंड में, वो जाते ही वो प्रोफेशनली खेल रहे थे कि अरे यार क्या यार, ये लोग तो इतना अच्छे हैं, इतना लंबे लंबे, इतना चौड़े, और हम लोग इनके साथ में हार जाएंगे, तो ऐसा लगता था हमको। हम लोग बस ग्राउंड को गए, मैंने बोला आप लोग हम लोग इधर क्यों आए क्रिकेट खेलने के लिए आए, हम लोग इधर से कैसा तो भी जीत के ही जाना है सर। मैं आपको प्रॉमिसली बोल रहा हूँ, हम लोग उधर 6 मैच खेले, 6-0 से हम लोग उनको हराया, 6-0 से इंग्लैंड को हम हराया। सर हराने का फाइनल मैच का दिन मुझे कैसा लगा ना, ब्रिटिश लोग हमारा भारत देश को 100 साल से भी ज्यादा साल वो लोग हमको रूल किया है, आज भारत देश का टीम इंग्लैंड आके उनको पीटा है इसके हम लोग वापस पहुंचे हैं। तो ऐसा सर, ऐसा एक बहुत सारा हमारे पास कारण है सर। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ सर, मैंने एज आई सेड मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर नेम, नॉट टू बिकम फेमस। सर मैं एक ब्लाइंड होके भी मैं मेरा देश का नाम, मैं मेरा गांव का नाम, मैं सारी संसार को पूरा दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूँ, इट वॉज माई मेन इंटेंशन।
3: लेकिन इसमें एक चीज क्या सीखने को मिलता है कि व्यक्ति अगर चाहे कितनी भी समस्याओं से घिरा हो, आर्थिक समस्या हो या कोई भी समस्या हो, लेकिन अगर उसके दिल में हिम्मत है तो उसका मदद तो ऊपर वाला भी करता है। इसलिए कहा भी जाता है कि हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, खुदा भी उसको मदद करता है जो हिम्मत का हाथ नहीं छोड़ता। जैसे आप लोगों ने कर दिखाया कि भाई चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों से आया हो ये टीम, चाहे उनके पास साधन नहीं है, लेकिन दिल में जो साधना है, मतलब क्रिकेट के प्रति जो प्यार था, उसने जो कमाल कर दिखाया, वो अपने आप में एक उदाहरण है हर एक के लिए कि भाई अगर हिम्मत है तो कुछ भी संभव है। यहाँ मुझे ये जानना का मन कर रहा है कि क्रिकेट तो क्रिकेट होता है, लेकिन आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो विशेष क्रिकेट है जैसे आपका है जिसमें दृष्टिबाधिता का टीम है और एक जनरल क्रिकेट है, तो उसमें कंपैरिजन होता है, या जैसे जनरल क्रिकेट इतना पॉपुलर है तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या उसकी पॉपुलैरिटी आपको मदद करती है या आपके लिए मुश्किल हो जाता है, या क्या आपको क्या नजर आता है कि ब्लाइंड क्रिकेट के लिए या दिव्यांग क्रिकेट के लिए क्या है आज का परिपेक्ष?
4: एक्चुअली जैसे नॉर्मल क्रिकेट है, कोई बीसीसीआई कोई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे करके बस एक 3-4 महीने पहले उनका जो स्केड्यूल बन गया तो ढेर सारे स्पॉन्सरर्स, एयरटेल वाले, बायजूस वाले, सहारा वाले, व्हील्स वाले, मैं आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, दे विल रन बिहाइंड द बीसीसीआई स्पॉन्सर। उनको स्पॉन्सर करने के लिए ये लोग भागे भागे जाते हैं, हमारा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, हमारा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, लोग हम आपको पैसे देंगे, हमको लो, हमको टाइटल स्पॉन्सर करो, हमको मेजर स्पॉन्सरशिप करो, हमको को स्पॉन्सर करो करके भाग के जाएंगे। लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप पकड़ने के लिए हम लोगों को उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। आप MS धोनी मूवी देखा है, खाली वो बैट के लिए, वो पाजी ने धोनी को एक बैट दिलाने के लिए वो कोई एक बैट वाला का फैक्ट्री में कितना मेहनत करता है। सो ऐसे सर, जब तक आप, आपको लोग नहीं पहचानेंगे तब तक आपको भी नहीं पहचानेगा, तब तक आप उसी को आप एक स्टेप बना के आप उससे ही कुछ सीख के कुछ बड़ा बन के दिखाना है, तो उसके बाद में ही आप लोगों को लोग ढूंढते आएंगे। सर हमारा क्रिकेट में इतना ज्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं होते, मैंने बताया, और हुआ तो भी जैसे बहुत कम बजट में होता है, जैसे अभी IPL वगैरह खेलते हैं, एक एक प्लेयर को 15 करोड़ 18 करोड़ देते हैं। सर आपको पता खाली 2.5-3 करोड़ से ब्लाइंड क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप इंडिया में, जस्ट 2-2.5 करोड़, वो भी सभी 10 कंट्रीज आएंगे, उनको 5-star होटल देंगे, होटल से ग्राउंड लेके आने के लिए एक अच्छा सा बस देंगे, ग्राउंड बुक होगा, ग्राउंड में मैच खेलेंगे। सर आपको पता हमारा ब्लाइंड क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच वगैरह, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह, विनिंग प्राइज वगैरह कितना होता है? सर 2000 में फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप चला, तक T20 वर्ल्ड कप नहीं था, T20 वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल पहुंचे सभी मैच से, सभी टीमों से, इंडिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब हम लोग हराए, फाइनल में आके पहुंचे, फाइनल में आके फाइनली हम लोग पाकिस्तान के साथ खेल के, मैंने जैसे लाहौर इस्लामाबाद में 2006 में मैंने शपथ ली थी कि हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतना है, नेक्स्ट टाइटल्स भारत देश को जीतना है। सो फर्स्ट टाइम हमने 2012 में T20 वर्ल्ड कप जीत के हमारा देश का नाम रोशन किया सर। तो डू यू नो सर, हम लोगों को वर्ल्ड कप जीतने के बाद वर्ल्ड कप का विनिंग कितना कितना था, कैन यू गेस?
3: नहीं,
4: 2 लाख रुपीज सर, 2 लाख रुपीज नॉट ईच पर्सन,
3: द होल टीम,
4: रुपीज फॉर द होल टीम सर। 17 स्क्वाड है, एक कोच है, एक असिस्टेंट कोच है, एक फिजियो है, एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट फिजियो है, टोटल 22 मेंबर्स। सर डू यू नो हाउ मच वी गॉट ईच पर हेड? फॉर विनिंग वर्ल्ड कप वी गॉट 8,500 रुपीस समथिंग, और मैन ऑफ द मैच वगैरह 3,000 या 5,000 कुछ था।
3: तो इसका मतलब मेहनत तो उतना ही है, और लेकिन जो मैं कहूंगा सहयोग है समाज की तरफ से वो इतना नहीं है, क्या करने से ये बदलेगा?
4: सर मैंने एक बात बताता हूँ सर आपको, भगवान इतना सुंदर सा जिंदगी दिया यहाँ पे कि आप झेल के आओ, लड़के आओ, ठीक है ना सर? तो हमारा काम है लड़ने का जिंदगी से, लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते जाओ, आपको सक्सेस मिलेगा वहां पे है। सर मैं कोई एक्सपेक्टेशंस रख के मैंने क्रिकेट नहीं खेला, एज आई सेड आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन। सर अगर कोई एक आदमी को, सर आजकल तो सब लोग चैरिटी वो ये बोलते हैं ना सर, सर विदाउट एक्सपेक्टेशन, अगर आप मुझसे एक काम कराना चाहते हो, अगर मुझे कुछ बोलना चाहते हो, तो मुझे कुछ काम देना चाहते हो, तो मेरे काम से आपको कुछ फायदा है इसलिए आप मुझे कुछ बोल रहे हैं। से कुछ आजकल तो सभी लोग 60% है किनसे एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं। सर मैंने कभी भी एक्सपेक्टेशन से काम नहीं किया, कभी एक्सपेक्टेशन मुझे इतना पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, मुझे घर मिलेगा। सर मैं अभी भी भाड़े का घर पे है, मेरा 11,000 रुपीस घर का रेंट है, तो मैं अभी भी कुछ भी नहीं सर, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, इसीलिए मैंने क्या पाया, पद्मश्री पाया सर, मैंने पद्मश्री पाया सर। सो मैं गर्व से नहीं बोल रहा हूँ कि इफ विथ एक्सपेक्टेशन इफ यू गो आपका लाइफ उतना ही रहेगा, जस्ट भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है अच्छा जिंदगी गुजार के चार लोगों को अच्छा करके आओ, क्योंकि आप अभी मैं आपको भेजा है, आप मेरे पास में ही आना है और किधर भी नहीं जाने का।
3: ये तो बहुत बड़ी शिक्षा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने अंदर हिम्मत रखना है लेकिन आस नहीं रखनी है। अगर हम चीजों की आस रखेंगे, मान शान की आस रखेंगे, तो हम प्यासे रह जाएंगे, कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आस रहित केवल निस्वार्थ भाव से अगर हम अपेक्षाओं से परे होकर के अगर कुछ मेहनत करते हैं तो उसका फल इस प्रकार से आएगा जिस प्रकार से कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ शिमोगा के छोटे से गाँव में जन्मे शेखर नायक लक्ष्मण ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन ये हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपेक्षाएं नहीं रखी, किसी से भी नहीं रखी, चाहे समाज हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या सरकार हो, किसी से अपेक्षाएं नहीं रखी, तभी आज आप इस मुकाम पे हैं। अपेक्षाओं से बचने के लिए हमारे अंदर अपेक्षा ना रखें लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य पे आगे बढ़ते रहें, इसके लिए क्या जरूरी है, क्या करना आवश्यक है?
4: सर मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ सर। 2014 में हमारा फोर्थ वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप था सर, तो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप फाइनल मैच अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सर। हमारा ब्लेंड क्रिकेट में भी पाकिस्तान हमसे दूर नहीं जाते, पाकिस्तान बहुत करीब में ही आ जाते, तो फाइनल मैच खेलने के लिए मैंने टॉस जीता, उनको बैटिंग करने के लिए बोला, तो पता सर उन्होंने एक इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स के बाद दे हैव स्कोर 388 रन्स, तो 388-89 रन्स वो लोग बनाया। एक इनिंग्स के बाद हमारा बहुत सारे लड़के लोग हिम्मत हार गए, अरे यार क्या यार, ड्रेसिंग रूम में आके हम लोग हार जाएंगे यार, ये वर्ल्ड कप तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे करके सोच रहे थे। तो तब
3: उसमें 392 से आप जीते थे।
4: यस सर, यस सर। तो हमने एक इनिंग्स के बाद पाकिस्तानी जो टीम का मैनेजर थे उन्होंने इस्लामाबाद या लाहौर को फोन करके बता दिया कि भाई हमने इतना स्कोर बना दिया, आप लोग विजय का जश्न स्टार्ट कर दो, यानी कि ओपन टेम्पो में सबको लेके जाके हम लोग पूरा रास्ते में बोला आपने इधर साउथ अफ्रीका क्यों आया, खेलने के लिए आया, जाके खेलो, खेलने से पहले सोच के मत हिम्मत हारो। सर फाइनली हम लोग गए, सर लाइफ इज लाइक दैट, अगर लाइफ है तो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, लॉट ऑफ हर्डल्स। सर ये सब हर्डल्स क्यों आते हैं कि वो ही इज टेस्टिंग अस, अगर हम इसको हम पार करेंगे या वहीं पे बच जाएंगे। अगर हम लोग पार कर दिए तो ऐसे ही जिंदगी भर लड़ने का ही है सर। तो आप क्रिकेट खेलने के लिए आए हो, जस्ट गो देयर एंड फाइट, गो देयर एंड डू योर ड्यूटी, विदाउट डूइंग आप लोग अरे यार करके हम लोग नहीं कर पाते करके क्यों डर के चुप जाएगा। हम लोग गए सर,
3: डर ही जो है वो खात्मा कर देता है सारे उम्मीदों का, सारे जर्नी का, सारे परिश्रम का। बिल्कुल
4: ट्रू ट्रू। तो फाइनली हम लोग सेकंड बैटिंग चालू किया, खेलते खेलते गए और ओवर सब खत्म होते जा रहा था। 12 ओवर में हमको चाहिए था 148 रन्स, 11 ओवर्स 148 रन्स। स्टिल इज दैट पॉसिबल फॉर यू? इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन से
3: नॉट पॉसिबल। 66 बॉल, 66 बॉल में 148 रन,
4: 48 रन। हां जी, बट स्टिल अगेन वी प्लेड लास्ट 3 ओवर्स 30 रन्स, 2 ओवर्स 22 रन्स, 1 ओवर 10 रन्स। सर दो बॉल हमने बचा के उनका कॉन्फिडेंस, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका पाकिस्तान टीम का ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ के हम लोग दो बॉल बचा के हम लोग देश का वर्ल्ड कप, देश के लिए वर्ल्ड कप जीत गया। तो दिस वाज अ वेरी बिग प्राउड मोमेंट सर। उसके बाद तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और कि अपना भारत देश का नाम रोशन किया, क्रिकेट प्लेयर्सों ने साउथ अफ्रीका में करके ट्वीट किए और सभी क्रिकेटर सचिन, द्रविड सर, अनिल कुंबले, बाद में रवि शास्त्री सर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जी, बहुत सारा प्लेयर्स ट्वीट किए और हमको कंग्रेचुलेट किए सर। सो मैं आपका क्वेश्चन को यही एक एग्जांपल से कंप्लीट करना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में आप डर जाएंगे तो वो डरा के ही रख देगा सर। आप हिम्मत से,
3: डरे हुए को ही डराया जाता है, बिल्कुल डरे हुए को ही डराया जाता है।
4: यस सर, हिम्मत से आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ आपका पीछे आएगा, आपके डर के पीछे जाएंगे तो सामने से भूत आएगा।
3: ये जो अभी आपने बताया कि भाई एक बार आपने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लिया तो बाकी सब चीजें तो आसान है। अपने डर से जीतना यही सबसे बड़ा युद्ध है जो हर व्यक्ति को लड़ना है और जीतना है। आप सभी तमाम क्रिकेटरों का नाम ले रहे थे, आपके खुद के क्रिकेट के पेशे में आप किसी से प्रेरणा लेते हैं?
4: यस सर, ऑफ कोर्स मैं प्रेरणा लेता हूँ सचिन तेंदुलकर सर से, बाद में एक्चुअली मैं राहुल द्रविड़ सर से भी बहुत प्रेरणा लेता हूँ सर। लेकिन मेरा गेम थोड़ा अलग है, पता मैं वीरेंद्र सहवाग सर जैसा खेलना चाहता था।
3: जी अच्छा,
4: एक ये कोर में मुझे एक मुझे एक या दो बाउंड्री नहीं चाहिए था, मुझे एक ओवर में पूरा 6 का 6 बाउंड्री चाहिए था।
3: बहुत अच्छा, लेकिन आप मुझे एक एक शब्द में बताएं कि सचिन में क्या है जो आपको पसंद है, द्रविड़ जी में क्या है जो आपको पसंद है, और सहवाग में क्या है जो आपको पसंद है, एक एक शब्द में।
4: सर सहवाग सर में अग्रेसिवनेस, द्रविड़ सर में कॉम कूल, सचिन सर में हॉनेस्टी। भैया अगर आप आउट नहीं हुआ तो भी अंपायर आउट करके हाथ उठाया तो चले जाएंगे। So all these three things I love to, I उनसे बहुत सीखा सर।
3: तो यहाँ से ही हम शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। आपने शुरुआत ही कर दिया है कि सचिन से आपने ये ईमानदारी सीखी कि भाई अगर आउट नहीं हुए हैं फिर भी अंपायर ने गलत डिसीजन दिया, लेकिन अंपायर का सम्मान और खेल का सम्मान,
4: डिसिप्लिन,
3: खेल का सम्मान, खेल के नियमों का सम्मान, बहुत बड़ी बात। ऐसे ही अगर हम देखें तो क्रिकेट को अगर एक शब्द में, आप क्रिकेट क्या है आपके लिए एक शब्द में?
4: माय लाइफ पार्टनर।
3: बहुत अच्छा। डिसिप्लिन या अनुशासन क्या है?
4: सर डिसिप्लिन, आप जितना लोगों को तंग ना करें, खुद अपना एक गोल देख के एम की तरफ चले, तो वो डिसिप्लिन से आप कुछ भी कर सकते।
3: सेवा क्या है?
4: ओ माय गॉड, सेवा अनबिलीवेबल सर। सर दूसरों का खुशी में अपना खुशी देखना वो एक सेवा होता है सर, शायद वो एक संतोष होता है सर शायद।
3: और संतोष क्या है? मदद करना। और संतोष क्या है
4: सर? संतोष जो आपके पास है उसी में आप खुशी रहोगे ना, वो संतोष है।
3: परेशानियां क्या है? रुकावटें, परेशानियां, दिक्कतें, ये क्या है
4: सर? परेशानियों से ही आप सक्सेसफुल बन सकोगे सर। अगर आपको परेशानियां नहीं आएंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा यहाँ पे मेरा सिर पे खुजली हो रहा है, खुजली कर लिया तो सेटिस्फेक्शन होता है सर। अगर नहीं हुआ तो मैं चुप रहूंगा, मेरा लाइफ में इच नहीं आएगा। तो ऐसा है सर।
3: हिम्मत क्या है?
4: डोंट लूज योर होप्स। हम लोग कोई हाल में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम लोग वी हैव टू थिंक दैट फॉर एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड देयर इज अ सॉल्यूशन। ठीक से बैठ के सोच के समझ के निर्णय लो, सब क्लियर हो जाएगा।
3: ऐसे तो ये सवाल थोड़ा परेशानी वाला है, आप चाहे तो इसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपके हिसाब से विकलांगता या अपंगता क्या है?
4: सर, भगवान सबको एक, अभी मेरा हाथ देख रहे हो, यहाँ पे सभी फिंगर्स एक साइज में नहीं है
3: जी,
4: यहाँ पे एक एक साइज के है। तो आदमी का जिंदगी भी ऐसा ही है सर, सभी लोग टीचर नहीं बनेंगे, सभी लोग टीचर बनेंगे तो हम उससे सीखने के लिए, सुनने के लिए कौन बैठेगा उसका सामने
3: जी।
4: सब
3: जी।
4: लोग डॉक्टर बन गए तो उसका पेशेंट बन के कौन आएगा
3: जी।
4: तो ऐसे ही सर, एक विकलांग, मैं इसको स्पेशल एबिलिटी बोलता हूँ सर, इसको मैं डिजेबिलिटी करके नहीं बोलता हूँ, जो दिव्यांग करके हम लोग यूज करते हैं। तो इस हम लोग अभी जो से आ रहे हैं, तो हम लोग यही एक चीज, यही एक जिंदगी का, यही एक ऊपर आने का हमारा एक मकसद है, एक वे है, एक रोड है। हम लोग विकलांग है करके हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हमको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोग नॉर्मल जैसे ही रहेंगे
3: जी। तभी ये सवाल थोड़ा परेशानी वाला इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप थोड़े अनकंफर्टेबल फील करें, बट आपने अपने विकलांगता को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, आप उससे इतना आगे निकल आए हैं जो कि एक नॉर्मल कहे जाने वाले, अगर नॉर्मल जैसा कुछ अगर होता भी है तो नॉर्मल व्यक्ति से भी आप कई दर्जे आगे निकल चुके हैं। इसलिए मुझे लगा कि आपसे ये सवाल पूछना सही रहेगा क्योंकि आप जो जवाब देंगे वो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी, और अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की दिव्यांगता के वशीभूत है तो उसको भी निकलने में मदद मिलेगा। अगला सवाल है, ईश्वर आपके लिए क्या है?
4: सर, ईश्वर एक मेरा, सर मेरा एम्स और मेरा गोल्स, वही मेरा ईश्वर है सर।
3: बहुत सुंदर। भारत क्या है एक शब्द में?
4: सर, भारत तो ऐसा देश है कि पूरा दुनिया में इतने सारे लोगों को एक जगह पे आपको इतना यूनिटी से रहने का कहीं कोई देश में नहीं मिले।
3: अगर भारत को किसी एग्जांपल से आपको बताना हो, जैसे कोई भारत को गुलदस्ता कहता है, कोई भारत को उगता सूरज कहता है, अगर भारत को ऐसा किसी उदाहरण के साथ एनालाइज करना है तो किस उदाहरण से आप एनालाइज करेंगे?
4: सर, मेरा भारत महान है, मेरा भारत सभी लोगों का एक हिम्मत है सर, हिम्मत है, एक सपोर्टर है सर।
3: एक शब्द में अगर जवाब देना हो, एक शब्द या एक लाइन में, शेखर नायक लक्ष्मा कौन है?
4: सर, जो आगे एक बहुत बड़ा एम्बिशन सेट करके उसके तरफ चल रहा है, ऐसे ही मैं समर्थ बन के दूसरों को भी शेखर नायक समर्थ बनाना चाहता है।
3: बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने और बहुत सुंदर जवाब भी दिया कि स्वयं समर्थ होकर के दूसरों को समर्थ बनाने वाला व्यक्ति शेखर नायक है। हर वो व्यक्ति जो आज सुन रहे हैं इस एपिसोड को, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करके खुद को सक्षम बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं और अपने आसपास के लोगों को समर्थ बनाते हैं, आप शेखर नायक हैं। लेकिन शेखर नायक अपने आप में एक शेखर नायक ऐसे हैं जिन्होंने न केवल अपने को समर्थ बनाया, अपने साथ साथ पूरे देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया कि आज उनका नाम देश के नाम के साथ जोड़ा जाता है। भारत के पद्मश्री होने का जो गौरव है शिमोगा गांव के इस व्यक्ति ने अपने लिए हासिल किया है। ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारणताओं से भरे हुए हैं। और शेखर जी से बात करते हुए आपको भी ये महसूस होगा कि इनके साथ बहुत लंबा समय बिताया जा सकता है। हर मैच अपने आप में एक कहानी है और उस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन आज शेखर जी ने जो हमें समय दिया उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शेखर जी, आपसे बात करते हुए बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत सुकून मिला कि भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो भारत को तहे दिल से प्यार करते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए ही सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। जाते जाते अगर हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास कोई मैसेज हो तो आप जरूर दीजिए।
4: यस सर, ऑफ कोर्स सर। बहुत सारे विकलांग लोग, वो लोग समझते हैं कि हम लोग विकलांग हैं, हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा और हमारा देखभाल कौन करेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और वो ऐसा सोचते ही नीचे वहीं पर रुक जाते हैं। सो मेरा उनका रिक्वेस्ट है कि ट्राई योर बेस्ट, जिंदगी मिला है जियो, जी भर के जियो। और आपके लिए सर मेरा एक सपना है, बहुत सारे लोग क्या है कि पेंशन से, गवर्नमेंट पेंशन देती है ना सर, उसके ऊपर लोग सब अवेलेबिलिटी है, वो सब लोग उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उनको राइट एजुकेशन मिलना है, राइट अपॉर्चुनिटी मिलना है, राइट जॉब्स मिलना है, तो राइट जॉब मिलके दे शुड नॉट डिपेंड ऑन द पेंशन, दे हैव टू बिकम अ टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। दैट इज माई ड्रीम। एंड हियर वट एवर डिजेबिलिटी आई एम हैविंग सो दैट डिजेबिलिटी इज नॉट माई वीकनेस, आई हैव कन्वर्टेड माई डिजेबिलिटी एज माई स्ट्रेंथ। जय हिंद।
3: बहुत सुंदर कि अपनी अक्षमताओं को क्षमताओं में बदलना और उनको ऐसा तब्दील कर देना कि वो आपका पावर बन जाए। ये बहुत सुंदर बात कही आपने कि जो चीज़ आपको रुकावट लग रही है आप उस पर चढ़ करके एक हाइट, एक एक ऊंचाई को छू सकते हैं, पत्थर को रुकावट ना समझ करके उसके ऊपर स्टेप अप कर लेना। ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। और जो आपने ये एक सुंदर सा एम रखा है या कहेंगे गुड विश रखा है सभी के लिए कि आप अपने लाइफ में केवल लेने वाले नहीं बने, देने वाले बने, केवल पेंशन के उपभोक्ता नहीं बने लेकिन टैक्स पे करने वाले, देश को संभालने वाले वो होनहार कंधे बने जिसपे देश का भार दिया जा सके। शेखर जी, दोबारा कभी आपसे जरूर मुलाकात करने का मन करेगा और आप हो सके तो समय जरूर दीजिएगा और भी अपने क्रिकेट की कहानियों से हमें और हमारे श्रोताओं को जरूर लाभान्वित कीजिएगा। कभी रेडियो मधुबन के ऑफिस में आइएगा, उसके स्टूडियो में आइएगा अगर आप माउंट आबू में हैं, और हमारे माउंट आबू में भी जो स्कूल है वहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर अगर आप कभी विजिट कर सके तो इट वुड बी रियली ग्रेट। एंड इन जनरल भी माउंट आबू बहुत खूबसूरत जगह है, आपके आने से और खूबसूरत हो जाएगा, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप कभी हमारे रेडियो मधुबन को जरूर विजिट करें।
4: सर बिल्कुल सर, मुझे भी माउंट आबू को आने का बहुत मन है और रेडियो मधुबन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे वहाँ पे सब लोग हॉस्टल्स वगैरह होंगे, ब्लाइंड स्कूल्स भी जैसे आपने है करके बताए, सब मुझे
3: हमारे बहुत सारे श्रोता जो है, हमारे बहुत सारे श्रोता है जो ऐसे
4: आज हम लोग ऐसे लैपटॉप से कनेक्ट हुए हैं, अब मैं आपको आके लाइव बात करना चाहता हूं सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: सबका प्यार चाहिए सर।
3: जी थैंक यू सो मच शेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, लोगों के बीच मुस्कान बिखेरते रहें और ईश्वर जो आपके परम ध्येय है वो सदा आपके साथ ही चलते रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ रेडियो मधुबन से मैं आरजे शांतनु लेता हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
4: धन्यवाद सर। जय हिंद जय भारत।
3: नायक वो होता है जो कि एक जीवा की तरह होता है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन को कि एक ऐसा लीडर बनो जो जीव की तरह हो, टंग जीवा की तरह हो, जो दांतों से खुद को बचाते हुए सारा काम कर जाए, शत्रुओं से या अपने परिस्थितियों से, मुश्किलों से खुद को बचाते हुए आगे निकलता चला जाए, काम करता चला जाए, सफल होता चला जाए। साथ ही जीवन में अपेक्षाएं न रख करके केवल पुरुषार्थ करना, परिश्रम करते रहना, हिम्मत न छोड़ना और सबसे अहम लोगों के बीच में प्यार से एकता के साथ चलना, देश के प्रति इतना समर्पण भाव होना, ये शिखर नायक लक्ष्मा जी के जीवन से साफ झलकता है। इस एक छोटे से मुलाकात में उन्होंने हमें कितनी बातें सिखा दी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम हो लेकिन अगर खुद पे भरोसा है, हिम्मत है और डर पर विजय प्राप्त किया हुआ है तो जीत निश्चित है। कई खिताब जीतने वाले शिखर नायक जी भारत के ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है और आज के इस एपिसोड से ये बात साबित हो गया कि वो अपने आप में एक बहुत जिंदा दिल, बहुत ही साहसी उद्यमी मनुष्य हैं। अगर क्रिकेटर नहीं होते तो किसान होते, इसका मतलब प्रकृति से उनको बहुत लगाव है, स्नेह है। और उन्होंने जो बातें कही कि जीवन के समय को समझना, समय के हिसाब से जीवन में लक्ष्य को निर्धारण करना ये बहुत आवश्यक है, तब जीवन जो है सहयोगी होता है, अन्यथा जीवन में जो है केवल गिरावट ही देखने को मिलता है। तो अपने समय को पहचाने दोस्तों और अपने समय के अनुसार, समय अनुकूल लक्ष्य का निर्धारण करें और हिम्मत का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते रहें। यशस्वी भारत कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपके बीच में हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ, एक नए कहानी के साथ। उस कहानी को सुनते हुए आपको कैसा महसूस होता है ये आप ही जानते हैं, लेकिन हमें भी जानने का बड़ा मन करेगा अगर आप हमें कॉल करके या अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम आपके ऐसे ही शुभेच्छाओं का प्रार्थी है। मिलेंगे एक और नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया,

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: रेडिओ पुणेरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो। नमस्कार रेडिओ श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडिओ स्टेशन रेडिओ पुणेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन
3: नमस्कार, मैं दीपक केंकरे। हंसी के फायदे के बारे में जानकारी लेंगे। हमें मालूम है जब भी हम लखनऊ स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ लिखा रहता है बड़े अक्षरों में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यह वाक्य पढ़ते ही यात्रियों के चेहरे पर सहज मुस्कुराहट आ जाती है। इस वाक्य में लखनऊ की जिंदा दिली खुश मिजाजी का दर्शन होता है। हम अभी कुछ बड़े वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं, वो हंसी के बारे में क्या बोलते हैं। जैसा कि स्वेट मार्टन बोलता है, हंसी जीवन का प्रभात है, यह शीतकाल की मधुर धूप है तो ग्रीष्म की तपती दोपहरी में सघन छाया है। इससे आत्मा खिल उठती है, इससे स्वयं तो आनंद पाते ही हैं, दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं। निराशा और चिंता का अचूक इलाज है और दुख के लिए रामबाण है। ये बहुत बढ़िया स्वेट मार्टिन में लिखा है। अभी हम थैंकर नामक विचारक के बारे में पढ़ते हैं। प्रसन्नता ऐसी पोशाक है जो हर समाज सोसाइटी में हर मौसम में पहन जा सकती है। मनुष्य की आत्मा की असंतुष्टि शारीरिक स्वास्थ्य और वृद्धि की स्थिरता नापने का एक ही थर्मामीटर है, चेहरे पर खिली प्रसन्नता। ओशो बोलते हैं, गंभीरता से बड़ी कोई बीमारी नहीं और हंसी से बड़ा कोई आनंद नहीं। बर्नार्ड शॉ लिखते हैं, हंसी की सुंदर पृष्ठभूमि पर ही जवानी के प्रसून खिलते हैं। जवानी को तरोताजा बनाए रखने के लिए भी आपको हंसिए। डॉक्टर बनारसी लाल चतुर्वेदी ने लिखा है, यदि संसार के लोगों को यह बात अच्छी तरह से मालूम हो तो हास्य के हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, और फिर आधे से अधिक डॉक्टरों के पास कुछ काम नहीं रह जाएगा। शेक्सपियर भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं, प्रसन्न चित आदमी अधिक जीता है, दुखी चिंतातुर और उदास मुख वाला सभी को ऐसा मायूस लगता है जैसे कि मौत की खबर लाया हो। स्पार्टर का प्रसिद्ध नेता साइकरगल का स्पष्ट मत था कि हास्य में हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाने का अद्भुत गुण होता है। इसलिए उसने अपने भोजनालय में हास्य देवता की एक सुंदर मूर्ति स्थापित कर रखी थी। लंदन के लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन गोमेस का कथन है कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हंसी सर्वोत्तम साधन है। मानसिक तनाव से थकान, व्यग्रता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये शिकायतें आती हैं। इसी से सिर दर्द, कमर दर्द, अल्सर और बदहजमी हो जाती है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए औषधि खाने से बेहतर है कि समस्या को समझा जाए और उसके समाधान के बारे में सोचा जाए। इस अवस्था में 3 मिनट में गपशप और हंसी की सभा आपकी परेशानी दूर कर दे सकती है। ऐसे ही श्यामलाल मुंशी ने कहा कि हंसी जीवन की स्वच्छता का आधार है, जीवन की प्राणवायु है, हृदय का सौंदर्य है, संबंधों को परिष्कृत करने वाली शुद्ध ऊर्जा है। हंसी लाल ओठों पर खिला हुआ ताजगी से भरा हुआ फूल है जिसका अद्भुत सौंदर्य समूचे वातावरण में रहस्य और मस्ती के लाखों रंग दिखाई देते हैं। तो हमने देखा इन सब महारथियों का राय हंसी के बारे में, जो हमें बहुत उत्तेजित करता है कि हम हंसमुख रहें। और वैसे ब्रॉड टॉपिक पर अगर गुण देखें, उसके फायदे देखें, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ये, बुद्धिमानी के लिए भी अच्छा टॉनिक है, हंसने वाले बच्चे अच्छे बुद्धि में रहते हैं, तनाव से राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है, जीवन बढ़ता है, दर्द से छुटकारा मिलता है, इम्यून सिस्टम भी सुधरता है। हंसने से टेंशन और डिप्रेशन तनाव कम होता है। यह नेचुरल पेन किलर भी काम करता है। उसमें पाया गया है कि 10% अधिक दर्द का सामना भी कर सकते हैं। हंसी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, रक्त संचार बढ़ाता है और पाचन शक्ति भी बढ़ाती है। जोरदार हंसी से कसरत का काम भी करती है, जैसा मांसपेशियों की, छाती, फेफड़े, दिल की भी अच्छी कसरत होती है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, उसमें ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप होती है और ब्लड सेल्स की क्वांटिटी भी बढ़ती है। खूबसूरत चेहरा पाने के लिए यह एक अच्छा व्यायाम है। हंसी से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हंसी से सकारात्मक सोच का भी विकास होता है। हंसने से हमारे मूड में तेजी से बदलाव आता है और हमारे आत्मविश्वास के स्तर में बढ़ोतरी आती है। हंसने से न केवल हम खुश होते हैं बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी हम खुशनुमा बना देते हैं। इसमें रिश्ते भी सुधर जाते हैं। शोध के अनुसार हंसने वाले लोगों में डायबिटीज का स्तर भी कम हो जाता है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। मुस्कुराहट से चेहरे की दर्जनों नसों का व्यायाम भी हो जाता है। लगातार मुस्कुराते रहने चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें कि हम हंसेंगे, जरूर हंसेंगे तथा दूसरों को भी हंसाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। शुक्रिया, आपको ये अच्छा लगा और फायदेमंद होगा ये उम्मीद रखता हूँ। नमस्कार, मैं दीपक केंकरे।
2: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
5: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम। उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
4: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बीइंग डिवाइन। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू सो मच।
1: बीइंग डिवाइन, सच अ डिवाइन वर्ड।
2: यस, राइट।
1: एंड यू फील सो डिवाइन व्हेन यू थिंक, इवन स्पीक द वर्ड।
2: यस,
1: डिवाइन डिवाइन डिवाइन बोलते जाओ तो मंत्र जैसा लगता है ना।
2: कोई भी थॉट भी अगर क्रिएट करते हैं, उसको फिर शब्दों में लेकर आते हैं, तो वो वाली वाइब्रेशन तो क्रिएट हो जाती है ना। तो वी ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट फीलिंग इट, बट बिकॉज वी क्रिएटेड द थॉट बीइंग डिवाइन, उसको शब्दों में भी लेकर आए, तो आप देखो अभी कुछ और नहीं किया,
1: शब्द बोला।
2: हाँ, थॉट क्रिएट की, शब्द बोला, फीलिंग ऑटोमेटिकली आने लग गई है। मतलब अनुभव में, एक्सपीरियंस में वो ऑलरेडी आ चुका है, चाहे वो एक क्षण के लिए आया हो। सो हाउ मच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन थॉट। इसीलिए हम बार बार यही सीखते हैं कि अपने संकल्पों पर अगर हम अटेंशन रखें, तो संकल्प से बोल, बोल से व्यवहार, व्यवहार से अनुभव, अनुभव से संस्कार, सब कुछ हो जाएगा।
1: लेकिन ये कैसे होगा, जब कहा कि बीइंग डिवाइन, डिवाइन कहते इतना अच्छा लगता है फीलिंग, तो मैंने पहले सोचा थोड़ा ही था, पहले बोला था।
2: आपने ये थॉट क्रिएट की ना, अभी हमारी नई सीरीज का नाम है बीइंग डिवाइन। सो इट्स कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर। हम बिना अंदर क्रिएट करे बाहर कुछ नहीं कर सकते।
1: तो इतना फास्ट क्रिएट होता है, अगर मैं स्पीड पे बोलो धर धर धर धर धर,
2: आप बिना
1: मतलब क्रिएट करता जा रहा हूँ, बोलता जा
2: मतलब मुख कैसे बोल रहा है?
1: क्या बिना सोचे आदमी बोलता नहीं है?
2: मुख कैसे बोलेगा, कहाँ से आएगा? ये सिर्फ बोलने वाला है, क्या बोलना है?
1: स्टोर्ड होती है थॉट्स।
2: हाँ, तो थॉट्स।
1: अच्छा,
2: स्टोर्ड होती है थॉट्स, तो थॉट्स। मुख तो सिर्फ बोलता है, बोलना क्या है?
1: सुनने में लॉजिकल लग रहा है, लेकिन सोचो तो कैसे।
2: मुख क्या है, ये बोल रहा है, लेकिन क्या बोलना है, वो कहां से आएगा? तो बिकॉज चाहे वो अभी क्रिएट की हुई थॉट है, चाहे वो पहले की क्रिएट की हुई थॉट है, स्टोर्ड है, लेकिन है तो अंदर से एनर्जी, बाहर शब्दों में आ गई।
1: तो स्लिप ऑफ द टंग जो शब्द है वो रॉन्ग है।
2: स्लिप ऑफ द टंग शब्द मतलब क्या, कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल दिया, लेकिन सोच के रखा था, इसलिए मुख से निकल गया, जबकि सोचा था कि बोलना नहीं है।
1: हो सकता है अंदर अंदर बोला होगा, बिना मुख से अंदर ही बोल दिया होगा। कई बार
2: अंदर ही सब कुछ बोला जाता है, जब तक अंदर नहीं बोला जाएगा तब तक बाहर नहीं बोल सकते। सिर्फ ये था कि जब अंदर सोचा था तब ये अंदर सोचा था, बाहर नहीं बोलना था, लेकिन परिस्थिति कोई आई, किसी ने कोई बटन दबाया, मतलब कोई ऐसा स्टिम्युलस आया कि जो सोचा हुआ था वो बोलना नहीं था, लेकिन मुख से निकल गया, तो हम कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग।
1: मैं कहूंगा स्लिप ऑफ द थॉट।
2: इट वॉज अ रॉन्ग थॉट क्रिएटेड, नॉट टू बी स्पोकन, बट क्रिएटेड एंड स्टोर्ड।
1: तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो मेरी पुरानी थॉट्स भरी पड़ी है स्टोर, उसमें से जैसे उसको इरेज करता जाऊं, निकालता जाऊं। अच्छा, जैसे जैसे घर में भी दाल चावल रोटी पकाते हैं तो कंकर वंकर निकाल के धो लेते हैं।
2: yes.
1: तो ऐसा उस चीज को साफ ही क्यों नहीं कर सकता हूं?
2: अब आप देखो ये कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि दाल चावल बनाते हैं
1: उसमें कंकर है,
2: तो कंकर कौन से स्टेज पे निकालना है?
1: इनिशियल स्टेज।
2: जब वो इनिशियल स्टेज पे है, जब वो रॉ मटेरियल स्टेज पे है। अगर रॉ मटेरियल स्टेज पे हमने नहीं निकाला उस कचरे को, उस कंकर को, तो वो फाइनल प्रोडक्ट में तो आ ही जाएगा। तो जैसी क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, वैसा क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो अटेंशन कब रखनी चाहिए थी? चावल बनने के बाद नहीं।
1: तो आज फ्यूचर के लिए पूछ रहा हूं मैं, आज हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है ताकि हमारा जो स्टोर्ड आइटम है उसमें से हम मैल साफ कर सकें और इस तरह के शब्द निकलें ना बाद में?
2: इस तरह के शब्द निकलेंगे ही नहीं अगर इस तरह की थॉट्स नहीं रखी हुई है, और अगर रखी हुई है
1: हाँ,
2: तो शब्दों में से निकलने से उसको रोक नहीं सकेंगे।
1: अगर रखी हुई है तो उनको निकाले कैसे?
2: उनको हर बार समझकर, आंसर देकर, क्या वो उस दिन स्टोर किया था, क्यों स्टोर किया था, उसके पीछे रीजन क्या था, दूसरे का नजरिया क्या था, मेरा संस्कार कौन सा था, उनका संस्कार क्या था, मेरा हिसाब किताब उनके साथ क्या था, सारे आंसर देकर। फिर यहां से माइंड को आंसर दे दिया तो मतलब हमने पहले वाली थॉट को इरेज करके दूसरी वाली थॉट डाल दी।
1: हजारों लाखों थॉट्स अगर हो हाँ, तो हजारों लाखों को एक एक को लॉजिक थोड़ा दे पाऊंगा।
2: एक होता है कोई पास्ट हमने हर्ट पकड़ी हुई है, किसी के प्रति कोई रिजेंटमेंट पकड़ा हुआ है, तो वो डीप हर्ट स्टोर्ड है। क्यों हर्ट स्टोर हुई? उस दिन कुछ हुआ, उस क्षण जब हुआ मन ने हर्ट क्रिएट की, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये थॉट्स क्रिएट हो रहे थे। उस टाइम शायद हम उसको बोल पाए थे, शायद नहीं बोल पाए थे, लेकिन मन बहुत कुछ बोल दिया था उस दिन। अंदर रुक गया वो, मन ने सब कुछ बोल दिया कि ये उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस मन को हमने आंसर नहीं दिया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमने सिर्फ मन ने क्या क्रिएट किया, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उस दिन हम मन को आंसर दे देते तो क्या आंसर दे सकते थे?
1: कई बार लोगों को मैंने देखा है अंदर ही अंदर, मतलब बोलते नहीं है, मुख से भी अपने आप में बोलते रहते हैं, जब देखो ऐसे करते रहते, मुझे तंग कर देते, मतलब दूसरे को बिना सुनाए खुद को ही सुनाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन।
2: इट्स बिकॉज माइंड बहुत फास्ट सोच रहा है। अगर बहुत चल रहा है अंदर, बहुत फास्ट चल रहा है, और जब बहुत फास्ट चल रहा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी वाली नहीं होती है। जब माइंड स्लो चलता है, वी आर एट पीस, एट ईज, विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ द थॉट्स आर ब्यूटिफुल, स्पीड इज स्लो। ये कनेक्शन हमेशा याद रखना है हमें। अगर क्वालिटी अच्छी है, स्पीड स्लो होगी, अगर स्पीड ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स अच्छी नहीं होंगी। तो जब बहुत फास्ट चल रहा होता है तो मुख भी ऐसे बोलता रहता है, मतलब जोर से नहीं बोलता, इट्स जस्ट गोइंग चटरिंग लाइक दैट। कई बार गाड़ी चलाते हुए भी लोग ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं,
1: चलते चलते भी बोलते
2: हैं। हाँ, बिकॉज इट इज टू फास्ट, इट इज टू फास्ट, सो इट इज कमिंग आउट लाइक दिस। तो इसलिए ध्यान किस लेवल पे रखना है कि यहां से ही वो जो आपने कहा ना, कंकड़ निकाल के फेंक देना है। बातें स्टोर अगर हो गई, सी हमने देखा है कि अगर बातें स्टोर हो गई तो सिर्फ इस जीवन में निकलेंगी मुख से, वो तो रिस्क है ही है, लेकिन आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगी। तो क्यों स्टोर हो दें, क्यों ना उसको क्लीन करते जाएं। ज्ञान हमें आंसर दे रहा है, सब बातों का आंसर है। सिर्फ मन को उस टाइम अगर आंसर दिया तो फिर मन उस आंसर को स्टोर करेगा। सपोज मैं कहूं आपने मुझे ऐसा क्यों कहा,
1: अच्छा क्वेश्चन अगर
2: माइंड ने ये थॉट क्रिएट किया ना, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा भी तो कर सकते थे, इसी चीज को ये ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ऐसा कर दिया, ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब माइंड ने क्या कर दिया, ये सब अपने नजरिए से सारी थॉट्स क्रिएट कर दिए। क्रिएट की दर्द हुआ तो वो थॉट और वो दर्द दोनों क्रिएट होके स्टोर हो गया।
1: यू सो राइट। मैं हमारे फैमिली में शादी थी, वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, मतलब बारात शुरू करने के लिए, वो आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा लेट। तो मैंने आते ही बोला, भाई इतना लेट? तो वो तो चिढ़ गए, बोले आप ये नहीं सोचे कि इतना लेट क्यों आया, मेरे जैसा आदमी जो कभी लेट नहीं आने वाला, क्या तकलीफ है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बीमार तो नहीं, छोड़ा। उसके बाद से सालों बात नहीं की मुझसे, एक इतनी बात से।
2: एंड विच मीन्स उस टाइम नीड ऑफ द आवर क्या था,
1: कि आप लेट आ गए, मैंने इतना ही बोला, वो भी तो भरा हुआ था कि देर।
2: ये जो हम भरे हुए रहते हैं ना, दिस इज अ साइन दैट आत्मा क्या होती जा रही है, बहुत बोझ कैरी करके चल रही है।
1: फिर बाद में और सालों तक जो बात नहीं करना,
2: सालों तक ही चलेगा। आज हम शरीर का बोझ तो हम अवेयर हैं कि मेरा कितना वेट है, एम आई ओवर वेट, इफ आई एम ओवर वेट दैट आई एम कैरिंग एक्स्ट्रा बर्डन, इस बर्डन का मेरे पूरे शरीर पर असर पड़ने वाला है। तो हमें शरीर की अवेयरनेस है कि कितना वेट होना चाहिए, कितना वेट है जिससे हम स्मूथली अच्छे से चल सकते हैं, जीवन जी सकते हैं।
1: बेचारे नीज पे घुटनों में भी तकलीफ होती है, हार्ट को भी पंपिंग करनी पड़ती है इतना ज्यादा चारों तरफ खून पहुंचाने के लिए, कितनी प्रॉब्लम।
2: और अब ये कोई भी प्रॉब्लम लेकर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फर्स्ट चीज क्या कहेंगे?
1: वजन उतारो,
2: वजन उतारो।
1: और अभी हम सर पे जो वजन है उसको उतारना है।
2: जितनी जीवन में आज कॉन्फ्लिक्ट, दर्द, हर्ट, डिप्रेशन, ये सारे जो मन की हमें दर्द होती है उसके लिए वो डॉक्टर भी एक ही आंसर देगा, पहले वजन उतारो। मतलब जो वेस्ट और नेगेटिव पकड़ के रखा है उसको हटाओ, और जैसे जैसे हम वो हटाएंगे तो वो कंकर क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन तो बनना ही है।
1: फल वाले भी मैं देखता हूँ कि एक भी आम सड़ जाते हैं तो पेड़ से निकाल के हटा दे ताकि बाकी फिर।
2: नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक आम सड़ा हुआ है उसको निकाल दो, अगर नहीं निकाला तो उसका बाकी पर असर पड़ेगा। विच मीन्स एक बात भी अगर पकड़ी हुई है, एक रिश्ते में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, एक में भी रिजेंटमेंट है, एक में भी रिजेक्शन है, उस थॉट को हटाओ।
1: क्या ये थॉट संस्कार भी बन सकती है, रिजेंटमेंट वाली
2: थॉट तो संस्कार ही बनेगी ना?
1: नहीं, अगर एक ही से है, दस से नहीं है, समझो नौ से नहीं है,
2: हाँ।
1: बट वो वाली एक इतनी बार बार करके वो संस्कार बने तो दूसरे को भी तो टच करती होगी,
2: क्योंकि वो यहाँ बैठी है ना, वो यहाँ बैठी है। जैसे आपने कहा वो आम टोकरी में बैठा है ना,
1: हाँ।
2: अगर उस आम को टोकरी से निकाल दिया तो बाकी टोकरी सेफ,
1: बिल्कुल,
2: बाकी फ्रूट सेफ, लेकिन अगर वो सड़ा हुआ आम उस टोकरी में बैठा है तो वो हर्ट यहाँ बैठी है, वो वहां नहीं बैठी। हमें लगता है उनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम है ना, मुझे उनके साथ प्रॉब्लम, उनके साथ है लेकिन प्रॉब्लम बैठी कहाँ हुई है, प्रॉब्लम यहाँ बैठे हुई है। ये वो स्थान है जहां मेरी और रिश्ते भी बैठते हैं, ये वो स्थान है जहां मेरे काम की थॉट्स भी चलती हैं, लेकिन उसी स्थान में कौन बैठ गया है, उस स्थान में एक डीप हर्ट बैठ गई है, एक चोट लग गई है, एक वूंड है जिसको मैंने हील नहीं किया।
1: ओवर पावर करती रहती है ना, बाकी चीजें जो अच्छी वाली है वो याद नहीं आती है, जो हमारे साथ अच्छा हुआ है।
2: आपके पूरे घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक कोने में एक कचरा पड़ा हुआ सड़ रहा है। कचरा पूरे घर में नहीं है,
1: हाँ।
2: एक कोने में एक कचरा, कहीं पुरानी कोई चीज पड़ी,
1: हाँ।
2: फ्रिज खोले एक बासी चीज कोई पड़ी हुई है अंदर,
1: उसकी स्मेल आती है,
2: किस स्मेल आएगी। अब यही उस पूरे मकान में एक अगरबत्ती जलानी है ना सिर्फ,
1: ये भी सही बात है,
2: एक ही अगरबत्ती
1: किसी भी कोने में,
2: किसी भी कोने में। अब जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की बीइंग डिवाइन, ये हमने एक अगरबत्ती जलाई है, एक जलाई ना, वो जलाते ही क्या हुआ,
1: चाहे अभी जलाओ तो रोशनी पूरे कमरे में होती है,
2: तो एक ही तो जलानी है ना, तो एक प्योर थॉट सब कुछ चेंज कर सकती है, तो एक इम्प्योर थॉट
1: वो सब कुछ खराब भी कर सकती
2: है। अब हमने कितनी सारी इम्प्योर पकड़ के रखी हुई है,
1: हजारों लाखों अनगिनत,
2: हजारों तो इज अ वेरी स्मॉल फिगर,
1: अनगिनत का
2: हजारों तो एक दिन में ही क्रिएट हो जाती है ना, हजारों थॉट्स मतलब क्या, एक दिन में हम कितनी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ अ लाइफ टाइम,
1: प्रीवियस लाइफ टाइम,
2: मेनी लाइफ टाइम्स। अब ये कचरा इम्प्योर थॉट्स हमने इतनी सारी जो क्रिएट किए, अनअवेयर, अवेयर, यू नो सम थॉट्स वे अनअवेयर के सारा दिन में इसके लिए उसके लिए इसके बारे में उसके बारे में अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स क्रिएट हो रहे,
1: न्यूज़पेपर भी पढ़ के किसी ने क्या किया तो, और अनजान बंदे के बारे में,
2: yes.
1: उसने अपनी बीवी को ऐसे कर दिया,
2: yes.
1: उसे छोटी सी बात पे उसको आग लगा दी, मतलब रिमोट कंट्रोल पे के झगड़े में ऐसे हो गया सुन, तो वो मेरे अंदर बैठ गई,
2: yes. बैठ गई मतलब वो क्रिएट कर ली ना, क्रिएट कर ली तो वो यहाँ बैठ गई। अब जब से हमारे पास ज्यादा सोशल मीडिया आ गया, हमने और ऐसी चीजें बहुत सारी पढ़नी, सुननी, औरों को भेजनी, फिर उन्होंने सर्कुलेट करनी, हमने यहाँ और कुछ पकड़ने शुरू कर दिया। जितना मीडिया से
1: पहले तो न्यूज़पेपर था, फिर टीवी आई, अब सेलफोन्स,
2: फिर टीवी पे भी तो पहले एक न्यूज चैनल रात को, अब 24 आवर्स, फिर सेल फोन, फिर इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन है, उसका बेनिफिट भी है हमारे पास, वो सारी टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का, लेकिन उसमें से कंकड़ कहाँ निकाला? हमने सारा कुछ ऐसे ही ले लिया। अखबार में कुछ यूजफुल भी है, कुछ इम्पोर्टेंट भी है, एंड कुछ अननेसेसरी टॉक्सिक है।
1: जब मैं सब्जी की दुकान में जाता हूँ तो वहाँ उसके पास कचरा भी रहता है, गंदे वाले भी। मैंने बोला यार ये स्टॉक में से दो, मुझे ये वाले अच्छे हैं,
2: और उस स्टॉक में से भी हम क्या
1: उस
2: करते हैं,
1: उसमें से फर्दर चेक करता हूँ, मुझे ये हटाओ।
2: और हम ये नहीं करते कि दुकानदार को कहते हैं कि दे दे 1 किलो एप्पल, ना ना, हम एक एक, फिर एक एक एप्पल को क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा भी
1: बदल,
2: थोड़ा भी चेंज। हाउ मच कॉन्शियस एफर्ट एंड अवेयरनेस, क्यों? क्योंकि हम 250-250 रुपए खर्च कर रहे हैं ना 1 किलो एप्पल खरीदने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ी उठा लिया, घर आके दिखेगा कि उसमें से 2 खराब थे। अच्छा, कभी आप उठाकर ले भी आए ऐसे जिसमें से 1 आधा खराब है, तो घर के लोगों ने सुनाना है, देखा नहीं था, बिना देखे उठा लिया। सो मच एफर्ट, एंड हम सारा दिन हर चीज पे एफर्ट कर रहे हैं, हर चीज, हम हर चीज पे अटेंशन रखते हैं कि क्या खरीदना है, कैसा खरीदना है, गाड़ी में फ्यूल कौन सा डालना है, पानी कौन सा पीना है, खाना कौन सा खाना है, हर चीज।
1: आजकल ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं, ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक थॉट्स क्यों नहीं ले रहे हैं?
2: सी दिस इज व्हाट, अब उसमें क्योंकि अटेंशन नहीं, संस्कार है अटेंशन का, चेकिंग का संस्कार है, क्वालिटी सिलेक्ट करने का संस्कार है, तो इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं, थॉट्स में क्यों नहीं? यहाँ तो सब कुछ भरता गया, भरता गया, भरता गया। अब जितनी इम्प्योर इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी तो इम्प्योर थॉट्स बढ़ते जाएंगे, तो एक हुई अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स, अनअवेयर मतलब सारा दिन ऐसे जो भर, जैसे आपने कहा ये पढ़ लिया, नथिंग टू डू विद आवर लाइफ, किसी ने किसी के साथ कहीं कुछ किया, नथिंग टू डू विद अस, पर हमने पढ़ा तो यहाँ स्टोर हो गया। फिर व्हाट्सएप पे सारा दिन ने किसी ने कुछ भेजा, किसी का मजाक उड़ाया, किसी को क्रिटिसाइज किया, किसी की ग्लानी की, किसी ने उसको सर्कुलेट किया, हमारे पास आया, हमने औरों को सर्कुलेट किया, भरा। अब ये सारा कुछ जब भरा तो मतलब चावल अच्छे खासे थे, खुद ही उठा के उसके अंदर
1: मिट्टी डाल दी,
2: खुद ही कंकर डाल दिया, और फिर जब खुद ही कंकर डाल दिया, फिर जब फाइनल प्रोडक्ट मतलब हमारी व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी, हमारे बोल जब आते हैं तो हम कहते हैं इसमें इतने कंकर क्यों, तो इतने कंकर क्यों डले, प्रोसेस हुए, बाहर आ गए। अब इस पे एक हुई ये अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स जो हम वैसे ही रैंडम भर रहे हैं, एक है अवेयर इम्प्योर थॉट्स कि मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने हर्ट क्रिएट किया, किसी ने मुझे चीट किया, बिट्रेड फील हुआ, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, हर्ट फील हुआ, ये है अवेयर, मतलब मैं अवेयर हूं और इम्प्योर थॉट्स क्रिएट कर रही हूं। परसेंटेज देखें, अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स, अवेयर इम्प्योर थॉट्स, अब ये परसेंटेज इतनी होती जा रही है कि जो हम कहेंगे ना कि वो मकान के अंदर कचरा इतना बढ़ता जा रहा है, अब जब इतना बढ़ता जा रहा है तो मकान की जो ओरिजिनल ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है, वो डिसअपियर हो गई। अब हमें उस कचरे में ही रहने की आदत भी पड़ गई है, यू नो वी हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग टू लिव विद दैट पेन एंड हर्ट।
1: पहले हम लोगों ने एक घर लिया था समंदर के किनारे, तो उधर मच्छी वाले लोग थे, तो 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आई, उनकी इतनी बास आती थी मच्छी की और उसकी, और उधर से समंदर की हवा के साथ, तो खिड़कियां बंद करके रहते थे। धीरे धीरे आदत पड़ गई,
2: दिस इज इट, धीरे धीरे आदत पड़ गई, मतलब जो अच्छी नहीं थी स्मेल, जो हेल्दी नहीं थी, उसकी भी आदत पड़ गई। तो आदत कैसे क्रिएट हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदत पड़ गई। अब यहां भी इतना अक्यूमुलेट करके रख लिया है, लेकिन उसके साथ जीने की आदत पड़ गई है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर लिविंग आवर लाइफ विद दैट पेन, एंड वी हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग विद दैट पेन, एंड इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया ये दर्द ये गुस्सा, ये इरिटेशन, ये जेलसी किसी और ने दिया तो वो तो ठीक है, लेकिन हमने कहना शुरू कर दिया ये नॉर्मल है।
1: ओके
2: नॉर्मल है ना, क्यों नॉर्मल है? अगर कहो क्यों नॉर्मल है, कहेंगे सबको है, तो सबको है तो नॉर्मल है। तो जैसे उस दर्द को ही नॉर्मल कह दिया, उस जो आपने कहा जो ओडर, जो स्मेल अच्छी नहीं थी, उसको ही नॉर्मल कह दिया और ऊपर से कह दिया ये तो सबको है, तो फिर उसको मिटाने का तो कोई प्रयास नहीं करेंगे। और जब उसको मिटाने का प्रयास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो दिन ब दिन क्या होता गया, वो बढ़ता गया।
1: वैसे लोग भी इसको एंडोर्स कर देते हैं, दुनिया में आए हैं तो दर्द तो है ही, ये लाइफ तो ऐसी ही है, लाइफ इज
2: नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस। बाहर चैलेंजेस है इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ क्या पकड़ के रखा है, मेरे इस घर में खुशबू है, फ्रेग्रेंस है या कुछ सड़ रहा है।
1: मैंने कभी सुना नहीं लोगों को बोलते लाइफ इज अ पिकनिक, एंजॉय करो, लाइफ इज अ हॉलीडे, मजे करो, घूमो फिरो, देखो दुनिया कितना अच्छा भगवान ने बनाया, ये सब बातें नहीं।
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वेयर इज लाइफ। When we say life is a bed of roses, or you're saying life is a picnic, which life are we talking about?
1: मेरी अपनी जिंदगी।
2: कौन सी जिंदगी? आप अपनी जिंदगी, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को बताना है कि life is a bed of roses या life is not a bed of roses, तो किस aspect से बताएंगे life कहाँ है?
1: Life मतलब अपने व्यवहार, is life my the way I live, the way I look at things, my point of view.
2: तो लाइफ कहाँ है, पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है?
1: मेरे मन में।
2: तो लाइफ यहाँ है।
1: ओके
2: लाइफ यहाँ है। आज जब दुनिया में हम कह रहे हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, विच मीन्स हम एक बच्चे को सिखाते हैं कि जीवन इतनी इजी नहीं है,
1: कंपटीशन है।
2: तो विच लाइफ आर दे टॉकिंग अबाउट? वो लाइफ की बात कर रहे हैं।
1: ओके वर्ल्ड में जो बिजनेस मतलब, की लाइफ में कमाने के लिए जा रहे,
2: मतलब लाइफ क्या है जो आपके साथ जीवन में होगा, है ना? जो हमें क्या सिखाया गया, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज व्हाट विल कम टू मी। जीवन में मेरे साथ जो जो होगा वो लाइफ है। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? लाइफ वो है कि आप जीवन में क्या क्या करते हैं, वो लाइफ है। अब बाहर से जो परिस्थितियां आने वाली हैं, दैट माइट नॉट बी ऑलवेज परफेक्ट, दैट माइट नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट, लेकिन हम कैसे उसमें क्रॉस करते हैं, दैट विल बी आवर चॉइस। सपोज हम इस टेरेन में हैं, ठीक है, यहाँ पत्थर भी है, सीढ़ियां भी हैं, घास भी है, सब कुछ है। दिस टेरेन इज नॉट परफेक्ट, दिस टेरेन इज नॉट परफेक्ट। अब अगर हम किसी को कहें Your walk here will not be perfect.
1: Okay.
2: दो चीजों में बहुत फर्क है।
1: Okay.
2: एक है ये टेरेन, ये जो है टोपोग्राफी इस जगह की, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम क्या सिखाते हैं और खुद सीखते हैं कि यहाँ परफेक्ट चलना पॉसिबल नहीं है। My walk here cannot be a bed of roses. Spirituality says टेरेन परफेक्ट नहीं है, बट योर वॉक हियर कैन बी अ बेड ऑफ रोजेस।
1: या लाइक दैट प्रिंस की जो है, राजा ने प्रिंस के लिए पूरे गांव में कहा कि कारपेट बिछा दो, बहुत कंकर है, तो वजीर ने बोला खाली उसको जूते पहना दो आप,
2: सॉफ्ट वाले अच्छे। बाहर नहीं कुछ कर सकते ना, ये जो है पूरी स्थान बाहर, ये परफेक्ट नहीं है, ये है हमारी दुनिया, लेट्स से ये परफेक्ट नहीं है। अब हमें यहीं चलना है, उबड़ खाबड़ है, कहीं सडनली नीचे गिर रहा है, ध्यान रख के चले हम बड़े प्यार से चल लेंगे, ध्यान नहीं रख के चला तो फर्स्ट स्टेप पे गिर जाएंगे, और जैसे ही गिरेंगे तो हम क्या कहेंगे, जगह ही उबड़ खाबड़ थी पूरी, लेकिन उसी जगह में कोई और बहुत प्यार से चल के पूरा रास्ता कवर करके आ सकता है। जो पूरा रास्ता प्यार से, अटेंशन से, ध्यान रख के एक एक कदम चलेगा, वो कहेगा इट वॉज अ ब्यूटिफुल वॉक। वो कह रहा है इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. सुबह पैदल
1: ऐसे तो है ही, वो तो आते ही है, रॉक्स कांटे तो होते ही उसमें.
2: लेकिन
1: उसको तो दिखेगा, बुरा दिखेगा ही नहीं. वो
2: बुरा दिखेगा क्यों नहीं
1: है ऐसा?
2: बुरा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसने ध्यान से चला, उसको चोट नहीं लगी. चोट नहीं लगी तो दर्द नहीं हुआ. उबड़ खाबड़ था, ध्यान से चला, पैर नहीं मुड़ा, चोट नहीं लगी. चोट नहीं लगी, दर्द नहीं हुआ.
1: अपने आप को इक्विप भी तो किया ना, प्रॉपर शूज पहने, हाथ पे डंडा लिया होगा, साथ में बंदा लिया होगा,
2: सब कुछ किया. अपने आप को इक्विप किया ब्यूटिफुल एंड अटेंशन से चले
1: बस.
2: तो पूरा रास्ता चलते हुए एक खरोच भी नहीं आई होगी. जब एक खरोच भी नहीं आई, एक चोट भी नहीं लगी, दर्द भी नहीं हुआ, तो वॉक कैसी रही? आप पूरा वॉक करके एंड पर पहुंचेंगे तो आपसे कोई पूछेगा वॉक कैसी रही आपकी आज?
1: You'll say wonderful.
2: Wonderful. That would have been your experience of that walk. That is the experience of life.
1: हमने कहते सुबह इतनी ठंडी हवा थी, इतना मजा आ रहा था, इतने लोग वॉक कर रहे थे, बड़ी शांति थी. हाँ, I enjoyed.
2: लेकिन जिसने अपने आप को इक्विप नहीं किया, जिसने ध्यान नहीं रखा, पत्थर है लेकिन पत्थर को ही पैर मार दिया, क्योंकि उसने समझा पत्थर नहीं होना चाहिए था, मेरे को तो सीधा ही चलना है, तो पैर लगा, चोट लगी, घास में से गया, स्क्रैचेस पड़े, तो यहाँ स्क्रैच पड़े, यहाँ पैर मुड़ा, यहाँ चोट लगी, गिर गया. अब सब कुछ पहुंच के एंड पे, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो किसी ने कहा आज की आपकी मॉर्निंग वॉक कैसी रही?
1: बड़ा बुरा रोड था, बड़ी गंदी सड़कें थी, बहुत खराब, लोग साफ नहीं करते, खड्डे थे, गिर गया.
2: ऐसे वाला व्यक्ति दूसरे को राय देगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. तो सबसे पहली चीज आज हम ये फाइनल करते हैं कि लाइफ कहा, लाइफ परिस्थितियां नहीं है जो हमारे सामने आती है, लाइफ जीवन में आने वाली सिचुएशंस नहीं है, लाइफ वो नहीं है कि लोग हमारे साथ क्या करते हैं. लाइफ एनर्जी, दैट लाइफ इज हियर.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर. लाइफ कहाँ है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे.
2: ओम शांति.
1: थैंक यू सो मच. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति.
3: आर एवरी थॉट इन्फ्लुएंसेस हाउ वी फील. Thoughts come into words and actions. It becomes our experience, and this records an impression or sanskar on the soul. The sanskars become our vibrations. What we speak is first created as thoughts. The thoughts could have been created earlier and stored. When we use the phrase slip of the tongue or we didn't mean it, it only means we felt it but had decided not to speak it. When in response to a situation or behavior we create hurt and hold on to that hurt, then the thoughts of hurt and blame will get stored in the memory. These thoughts will replay many times and cause pain and may also come into words. Let us counsel our mind, understand the person, and then store the scene with acceptance. Hurt, resentment, rejection, or any painful emotion created and held on the mind will become a part of our personality. The pain becomes a part of our energy field and starts coming into other healthy relationships.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: उपवास, लेखिका सुधाकुरी, पात्र परिचय दृष्टि, आकाश, वेदांत, पंकज, यश, सैंडी, विनोद, उन्नति।
3: देखो देखो, मेरी मम्मी ने सावन के उपवास रखे हैं, मेरे तो मजे ही आ गए।
4: तुम्हारे मजे कैसे आ गए?
5: अरे भाई, उनके लिए बर्फी आएगी तो मैं भी तो खाऊंगा।
6: तुम्हें तो उपवास में भी खाना सूझ रहा है।
7: उपवास का मतलब ही होता है कि अपने शरीर की पाचन मशीनरी को थोड़ा रेस्ट देना।
3: रेस्ट देना या फिर किसी और तरह के काम को देकर शायद चुस्त बनना।
6: अरे ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है।
3: हाँ, जैसे अनाज आदि को पचाने के काम से छुट्टी देकर केवल तरल पदार्थ या फल ही पचाना,
2: या फिर पाचन मशीनरी के कार्य का समय बदल कर भी तो उसे चुस्त बनाया जा सकता है।
8: कहीं तुम्हारा इशारा रोजों पर तो नहीं?
4: हाँ, वो भी और कई तरह के जैन व्रत भी। तो
5: मेरी माँ तो कई प्रकार के अनुव्रत रखती है।
6: वे क्या होते हैं?
7: अनु मतलब छोटे छोटे, जैसे कई बार कई दिनों तक सिर्फ गेहूं से बनी चीजें छोड़ देती हैं और सब सेम रहता है उनका।
6: हाँ तो इससे तो कितना कुछ छूट जाएगा रोज खाने से।
2: कैसे?
3: ओहो, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। चलो ध्यान देते हैं कि हम रोज सिर्फ गेहूं से बना क्या क्या खाते हैं।
8: ये तो गेम बन गई।
4: पहले मैं बताता हूँ, रोटी।
5: ये तो सबसे आसान था।
6: ब्रेड
7: दूसरा आसान।
6: कभी कभी माँ आटे का हलवा बनाती है।
3: कई तरह के केक, गेहूं के आटे से बनी पूड़ियाँ,
4: कचौरियाँ,
2: कई तरह के बिस्किट्स, दलिया, सूजी, यहाँ तक मैदा भी।
8: ओ, फिर तो और भी तो कई तरह की चीजें हो गई, जैसे इन चीजों से बनी चीजें भी, जैसे बर्गर, पिज्जा, केक, पेस्ट्री और ना जाने कितने ही फूड आइटम्स।
4: तो अधिकतर तो फल, सब्जियाँ और दूध से बनी चीजें भी तो रह गई।
3: इसका मतलब अनुव्रत भी काफी शक्तिशाली हो गए कई चीजें छुड़वाने में।
8: अनुपम की तरह।
4: पर इससे एक बात तो तय है कि और कुछ हो ना हो, हम अपने भोजन को और ध्यान से खा सकते हैं। मतलब हमारा फोकस बढ़ता है।
5: मतलब ध्यान लगाने की क्षमता।
3: हाँ हाँ, ये कोई कम फायदा तो नहीं। ये ध्यान लगाने की बढ़ी हुई क्षमता जीवन के और पहलुओं में भी काम आती है।
6: वो कैसे?
3: देखो ना, ध्यान हर चीज में चाहिए। पढ़ाई लिखाई में तो है ही, किसी भी कला को सीखने में, किसी भी हुनर को अपनाने में।
7: और दीदी, किसी से बात करने समय उसकी बात अधिक से अधिक समझने में। इससे तो याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी।
3: वो तो है ही, बल्कि इच्छा शक्ति, निष्ठा, उद्देश्य तक पहुंचने का पक्का इरादा और फिर जब व्रत सफल हो तो संयम में रहने का आत्मविश्वास।
6: अरे वाह, क्या बात है। आत्मविश्वास बढ़ जाए तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है।
2: ये तो ऐसी चाबी है, इसे हर क्षेत्र के ताले खुल सकते हैं।
3: और सबसे बड़ी बात है, हम में बढ़ता है सब्र, यानी कि पेशेंस।
8: इतना कुछ सिर्फ व्रत रखने से?
3: हाँ, तभी तो बापू कितने उपवास रखा करते थे। कहते हैं एक बार जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए केवल दिन में एक बार खाएंगे और वह भी केवल 5 खजूर।
8: ओह, सिर्फ 5?
3: हाँ, और उनके मित्र ने उन्हें कोई 7 खजूर दे दिए। सोचा बापू ध्यान नहीं देंगे और वे उन्हें कुछ ज्यादा ही खिला पाएंगे।
8: फिर
3: बापू ने खजूर देखा और कहा, मैंने 5 खजूर कहे थे, तुमने मुझे 7 दे दिए।
9: फिर
3: उनके मित्र ने प्यार से कहा, अब 5 और 7 में ज्यादा फर्क कहाँ है। ऐसा 1-2 दिन हुआ, बापू हर रोज 2 खजूर बाहर निकाल देते।
6: हाँ हाँ, उनका मित्र उनसे प्रेम करता था।
3: हाँ, जब बापू के टोकने पर भी उन्होंने खजूर कम लाने शुरू नहीं किए, तो जानते हो बापू ने क्या किया?
6: क्या क्या?
3: उनमें से 2 खजूर तो पहले ही निकाल दिए और 1 दिन केवल 3 ही खजूर खाए और कहने लगे अपने मित्र से, जब 5 और 7 खजूर में कोई अंतर नहीं तो 5 और 3 में भी नहीं होगा। हाँ हाँ, उनके मित्र ने फिर उनसे बहुत क्षमा मांगी और बापू के कहने के अनुसार ही चलने लगे।
8: बापू ने तो कई बार ब्रिटिश सरकार को भी अपने उपवास द्वारा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कितने लाभ हैं उपवास के।
10: क्या सभी धर्मों के लोग उपवास रखते हैं?
3: सभी धर्मों में उपवास की आवश्यकता बताई गई है।
5: हाँ दीदी, इसलिए शायद हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता ही है।
3: ठीक कह रहे हो, पर असल में व्रत उपवास का संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण से है।
5: इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी तो रहता है।
11: क्या पता इसके महत्व को समझते हुए सभी धर्मों ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया है, ताकि लोग उपवास के अनुशासन में बंधे रहें।
7: लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व के कारण भी उपवास यानी पेट को खाली रखना अच्छा है।
3: वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सभी सप्ताह में 1 उपवास जरूर रखना चाहिए।
11: कई बीमारियों से भी तो इससे छुटकारा मिलता है।
3: हालांकि हर बीमारी का इलाज उपवास नहीं है, लेकिन यह कई समस्याओं में कारगर रहता है।
6: इसका मतलब दीदी, उपवास के तो अनगिनत फायदे हैं।
3: कहते हैं उपवास जितना लंबा होगा, शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ती है।
2: वाह, क्या बात है।
3: कहते हैं उपवास आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकता है कि आप अपने शरीर, जीवन और भूख पर अधिक नियंत्रण हासिल कर सकें। हमारा शरीर तो स्वनियंत्रित है।
12: मतलब कैसे?
3: मतलब ये खुद को ठीक करने वाली प्रजाति का हिस्सा है। देखते नहीं, कहीं चोट लगे तो कैसे पहले खून बहता है, फिर जम के पपड़ी सी बन जाती है ताकि जल्दी से आराम मिले।
2: हाँ, ये तो है।
3: उपवास के जरिए हमारा शरीर अपने मेटाबॉलिज्म को सामान्य स्तर पर ले आता है
8: और फिर इससे शरीर स्वस्थ रहता है।
10: निराहार रहने से,
3: उससे, या एक समय भोजन लेने से, या फिर
5: केवल फलाहार रहने से।
3: असल में इससे पाच तंत्र को आराम ही मिलता है।
7: और जब मेहनत जरूरी है तो आराम भी तो उतना ही जरूरी है ना।
3: यही नहीं, इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अरुचि, सिर दर्द, बुखार आदि रोगों से भी आराम मिलता है।
12: वाह, कितना अच्छा है।
10: आध्यात्मिक शक्ति भी तो बढ़ती है।
5: मतलब?
10: मतलब जैसे ज्ञान, विचार, पवित्रता,
6: बुद्धि का विकास भी तो होता है।
11: इसी कारण तो उपवास, व्रत आदि को सभी धर्मों की पूजा पद्धति में शामिल किया गया है।
7: यानी से यस टू उपवास एंड नो बर्फी।
8: यस टू बर्फी भी, पर कभी कभी।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: मोहब्बत मंजिल है।
1: दुल्हन खूबसूरत है, कितना यानी कि बाय गॉड कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।

0: न जाना।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पास चाहे जो हो। अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: हाय,
1: कैसे हो?
0: बस ठीक हूँ।
1: पता है भैया, स्कूल में मुझे एक एसे लिखने के लिए बोला।
0: किस पे?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
0: अच्छा,
1: आपका इंस्पिरेशन कौन है भैया?
0: मेरे पापा।
1: पापा? तो आपके पापा के बारे में कुछ बोलो ना।
0: हाँ, मेरे पापा बहुत ईमानदार है और मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ।
1: तो आपको एसे लिखने क्यों बोला, तो आप लिख सकते हैं?
0: हाँ, एक दो पेज तो लिख ही सकता हूँ।
1: ग्रेट, तो चलो हमारी दीदी की एडवाइस भी लेते हैं।
0: हाँ, ये ठीक है।
2: हेलो बच्चों।
1: हेलो दीदी,
2: क्या कर रहे हो तुम लोग?
1: दीदी, आपको पता है मेरे स्कूल में एक एसे लिखने के बोला।
2: एसे? किस पे लिखना है बुबना?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
2: मतलब आपके इंस्पिरेशन के बारे में? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं और लोग भी होते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं और सिखाते हैं। तो बुबना, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन है। पहली इंस्पिरेशन मेरे पापा नरेंद्र मोदी जी, सुभाष चंद्र बोस।
2: अरे वाह, आपकी तीन तीन इंस्पिरेशन है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके इंस्पिरेशन क्यों है, उनके बारे में हमें कुछ बताओ।
1: सुभाष चंद्र बोस सच में बहुत इंटेलिजेंट थे दीदी, बहुत अच्छी आदमी है, उनके बिना हमको फ्रीडम नहीं है।
2: ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वो आपकी इंस्पिरेशन है। आप उनसे क्या सीखते हो भावना?
1: कि किस टाइम क्या बात करना है। वो इतनी इंटेलिजेंस से बात करती, इतनी इंटेलिजेंस यूज कर भारत के लिए, हमारी इंडिया को यूनाइट करने के लिए इतना किया दीदी, मैं बोल नहीं सकती। बहुत, मैंने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा।
2: आपने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी? अच्छा, और उनमें सबसे ज्यादा स्पेशल आपको क्या लगा?
1: मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ब्रिटिशर्स नहीं बोलते हैं कि वो मर गए प्लेन क्रैश में, लेकिन उन्होंने, बहुत सारे विलेजर्स ये सोचते हैं कि वो तीन प्रकार की सोच सोचते दीदी। एक प्रकार वो प्लेन क्रैश में मर गए, दूसरा वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनके ब्रेन को साइंटिस्ट रिसर्च के लिए ले गए, और तीसरा ब्रिटिशर ने उनको मेंटल टॉर्चर किया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ भी नहीं कहा, और वो सच में होते ना दीदी, कांग्रेस के सारे कुछ भी हो, उनका क्या क्या ट्रूथ, उनके बारे में उनकी सच्चाई बाहर निकल आती।
3: हाँ भुवना, ऐसे मैंने भी एक बार सुना है कि सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर्स ने नजरबंद कर लिया था, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भेष बदल के जहाँ पे थे वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से भाग गए, फिर बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स को नहीं मिले, फिर जब मिले तो उनको काले पानी की सजा दे दी, कई दूर समुद्र में जाके उनको टापू पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा समुद्र खुद तैर के पार करके वापस आ।
1: और दीदी, आपको पता है, मैंने तो न्यूज़पेपर में देखा कि दो लोग सुभाष चंद्र बोस को मिल के आए, वो रशियन जेल में है, बोलते हैं कि अब तक जिंदा है, उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया।
2: सुभाष चंद्र बोस के बारे में वैसे तो कई बातें चर्चित हैं, ये भी कहा जाता है कि वो कई जगह जाके बनारस में एक सेंट बनकर रहे।
1: हाँ,
2: काफी समय तक।
1: हाँ दीदी,
2: लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना है वो सबके सामने है, भले उनके आगे की जिंदगी के बारे में कुछ लोग अलग बात करते हैं, लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना थी और जो उनका इंटेलिजेंस था जो आपने बोला, वो किसी से नहीं छुपा, और ये बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है भुवना।
1: हाँ दीदी, और बताए दीदी, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलेंगे उनके बर्थडे,
2: और इससे आप बहुत खुश है?
1: हाँ दीदी, मैं जब छोटी थी सोच रही थी मैं बड़ी हो कि जर्नलिस्ट बनूंगी, सुभाष चंद्र बोस को फाइल करूंगी।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब सुभाष चंद्र बोस से आप इतने इंस्पायर्ड हैं।
1: हाँ दीदी,
2: ये बहुत अच्छी बात है, और उनकी तरह बनने की कोशिश भी करना।
1: हाँ दीदी।

0: और सैंडी आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरे तो सबसे पहले मेरे पापा।
0: आपके पापा? और आपके पापा आपको कैसे इंस्पायर करते हैं?
1: मेरे पापा ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते।
0: उनकी ईमानदारी?
1: हाँ, और हमेशा सच बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, या बुरी कंडीशन हो या अच्छी कंडीशन हो, अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते। और मुझे मेरे पापा इस बात पे बहुत इंस्पायर करते हैं।
0: वैसे ये तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सबको अपनानी भी चाहिए, ईमानदारी। और अगर ये आप अपने पापा में देखते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो भी करनी चाहिए।
1: हाँ, पर मैं कोशिश करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सैंडी, इसकी जरूरत आपको आगे भी पड़ेगी। और अगर आप अपने पापा के नक्शे कदमों पे चलेंगे, वो सच में आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे।

0: और आप बताओ पंकज, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: दीदी, मेरे इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है?
1: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बातें हैं जो मुझे इंस्पायर करती है, जैसे कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जो वो अपनी लाइफ में जो चाहते थे उन्होंने सब हासिल कर लिया।
0: और जितना उन्होंने अचीव किया वो उतना ही डाउन टू अर्थ और सिंपल भी रहे।
1: हाँ दीदी,
0: है ना, अगर उनका जीवन हम अच्छे से देखें तो जिस तरह के वो व्यक्ति थे, वे आम इंसान से भी मिलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे।
2: हाँ दीदी, उनके घर देखो तो हमसे भी बहुत छोटा, और कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, और जो भी पैसे आते थे गवर्नमेंट से वो सारे लोग के लिए यूज़ करते, लेकिन उनकी सुविधाएं के लिए कभी नहीं यूज़ नहीं करते थे।
3: हाँ दीदी, मैंने भी एक बार एपीजे अब्दुल कलाम का नोबल पढ़ा था। उसके अंदर बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो वो बाहर जाके जो स्ट्रीट लाइट होती है ना उसके नीचे जाके पढ़ते थे रात को।
0: पता है वो यहाँ पे माउंट आबू भी आ चुके हैं पहले।
3: हाँ दीदी,
1: शांतिवन में भी आए।
2: पता नहीं,
0: शांतिवन में भी आए, नहीं पता
1: मुझे।
0: वो शांतिवन भी आए हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल भी आए हैं। वो जितनी लोगों की मदद कर सकते थे उन्होंने हमेशा की है, और चाहे वो किसी ऑफिस के बाहर खड़ा गार्ड हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, कहते वो जाके सबसे पहले उसी से मिलते थे जो सबसे लो ग्रेड के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जाते थे उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, और फिर जाके वो अपना काम करते थे, वो सबका हाल चाल लेते थे। इसीलिए अचीवमेंट के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी हम सब उन्हें हमेशा याद करते हैं, है ना। और उनकी तरह बनने के लिए हमें ये बात याद रखनी होगी कि चाहे हम कितना ऊपर भी क्यों ना पहुंच जाएं, एक इंसान की तरह हमें दूसरे इंसान को देखना चाहिए, है ना।
4: I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else. Everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you is a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have four unique things, four unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is the hard work with the devotion. And fourth is perseverance.
0: Akash, आपकी inspiration कौन है?
3: मेरे इंस्पिरेशंस मेरी मूवीज़ हैं।
0: मूवीज़ आपको कैसे इंस्पायर करती हैं?
3: दीदी, जब मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में था तब मैं मूवीज़ देखता था, उसके अंदर देशभक्ति मूवीज़ ज़्यादा देखता था। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो गुंडों की जिस तरह से धुलाई करते थे, मुझे लगता था मैं भी बड़ा होके इन्हीं की तरह बनूंगा, ऐसे ही पूरे देश में करप्शन को कम करूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक मूवी देखी थी। एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में अपने माँ बाप से खो गया था, तो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के देने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था और प्रिंसिपल ने बोला था जा पहले अपने माँ बाप को ढूंढ के ला, उसके बाद आना स्कूल में पढ़ने। तो उसको कोई पैसे भी नहीं देता था, बेचारा बहुत उदास रहता था। तब उसने चाइल्ड लेबरिंग करनी स्टार्ट कर दी, और ऐसे करते करते 15 साल बाद वो बॉम्बे गया, और बॉम्बे से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के आया। और जो प्रिंसिपल था वो बुढ़ा हो गया था, और उसके बेटे बहू सब ने उसको छोड़ दिया था, और उसकी स्कूल भी हड़प ली थी। तो उस प्रिंसिपल को जाके बोला, सर जैसे को तैसा आपने मुझे स्कूल से निकाला था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। आपके बेटे बहू ने आपको निकाला है और आज आप मेरी स्थिति पे हो और मैं आज आपकी स्थिति पे हूँ। ऐसा ही मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ।
0: मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सबको हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए आपको इंस्पिरेशन मिली। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ें आकाश और भी इंस्पायर करती हैं, हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं लाइफ में और जो चीज़ें करना चाहते हैं और जिसकी मदद करना चाहते हैं, है ना? तो हमें अपने आसपास और लोगों में भी ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें इंस्पायर कर सके।
2: हाँ दीदी,
0: भले वो किताबें हो, भले वो ऐसे लोग हो। वैसे भी भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ की बहुत ही बड़े और नेक लोगों ने जन्म लिया है।
2: हाँ दीदी।
0: तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस हमारे आसपास ही मिलेंगी।
2: दीदी मैं एक बात बताऊं, इंस्पायर हम कैसे हो सकते हैं? देखो दीदी, जब कोई हमसे कुछ अच्छा करे, वो स्कूल में हो या APJ अब्दुल कलाम हो, हमसे बेहतरीन है और अच्छे हैं, जब हम वो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जलसी बन जाएगी।
0: बात तो भुवना आपने बहुत सही कही। जब हम किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे तो वो इंस्पिरेशन बन जाएगा, नहीं करेंगे तो वो जेलसी बन जाएगी। और हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं और ऐसे लोग होते हैं जो हमें जीवन में मिलते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए हमें इंस्पायर करके जाते हैं।
2: हाँ दीदी।
0: तो भुवना, आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा किसी से मिले हो जिसने आपको इंस्पायर किया?
2: हाँ दीदी, मैं अनूप जलोटा से मिली।
0: अच्छा, तो उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया?
2: दीदी, रेडियो पे एक क्वेश्चन पूछा विशाल भैया ने कि जब आपकी स्टेज पे कोई और आके गाए और आपको बुरा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ईगो नहीं है, कुछ भी हो, अच्छा प्रोग्राम हो। वो बोल रहे थे मेरी वर्क कम हो गई, ऐसे अच्छे से बात करते हैं और उनकी ईगो भी नहीं है। उस फीलिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनूप जलोटा ऐसे है और वो मेरी अच्छी इंस्पिरेशन है।
0: वो हमारे देश के बहुत ही जाने माने गायक हैं।
2: हाँ,
0: और उनके कई भजन हम लोग डेली सुनते हैं। और
2: वो एक गजल सिंगर भी है।
0: हाँ बिल्कुल। और इतने अच्छे गायक होने के बावजूद उनमें ईगो नहीं है, इसने आपको इंस्पायर किया। मतलब आप भी जब बड़े होके क्रिमिनल लॉयर बन जाओगे तब ईगो को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे।
2: हाँ दीदी।
0: चाहे क्लास में फर्स्ट आओ, चाहे कुछ भी अजीब कर लो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भुवना। पंकज आप बताओ, आप अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो या ऐसी सिचुएशन आई है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, वैसे कल की ही बात है। कल हम मैच खेल रहे थे और हमारे विपक्षी जो टीम थी वो हमसे काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही थी, और जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मैं उनसे इम्प्रेस हो गया कि इतनी अच्छी बॉलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो मुझे लगा कि काश मैं भी इनकी तरह बॉलर बन सकूं, और मैंने सोचा और मैंने कल से ही प्रैक्टिस करनी चालू कर दी कि उनके जैसा बॉलर बनूं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने तुरंत प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। वेरी गुड पंकज। हाँ सैंडी, आप बताओ।
5: दीदी मैं, हमारे पास में एक भैया रहते हैं अभिषेक भैया, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी जॉब कर रहे दिल्ली में और उनकी बीटेक भी पूरा हो गया। वो इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं फिर भी वो हमेशा सिंपल रहते हैं, बच्चों से हमेशा प्यार से बातें करते हैं, इसीलिए मुझे वो सही लगते हैं।
0: अच्छा, तो वो भैया आपको इसलिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं।
5: हाँ
0: ये तो अच्छी बात है कि हम कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाएं, हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, जो कि सैंडी ने सीखा। तो आकाश, आपने कभी किसी से कोई इंस्पिरेशन ली है?
3: हाँ दीदी, जब सर हमें पढ़ाते थे तब उनका एकदम एक्यूरेट ध्यान पढ़ाई में होता है और कुछ भी उनके दिमाग में उल्टा सीधा नहीं चलता, मतलब सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तब वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सबको अपने साथ ऐसे रखते हैं कि वो सर और हम भाई भाई हैं ऐसे।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई में स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा है और सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, ये बातें आपको इंस्पायर करती हैं।
1: और दीदी एक और इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कॉमेडियन शो जो करते हैं वो कपिल शर्मा से। मैं उनका शो देखता हूँ तो हमेशा उनकी तरह कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ और मैं काफ़ी हद तक करता भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स को अच्छे भी लगते हैं।
0: अच्छा, मतलब आप भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ करना चाहते हो पंकज?
1: हाँ दीदी।
0: इसके लिए तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और उन्हीं की तरह मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है।
1: हाँ दीदी, हाँ मैंने अभी से ही शुरुआत कर दी उनके जैसा बनने की।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक स्पेशल क्वालिटी उनमें पता है और क्या है? उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, कई बार ऐसा भी हुआ जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को छोड़ा भी नहीं और हार भी नहीं मानी। इसीलिए आपकी जो इंस्पिरेशन है, उन्हीं की तरह आपको भी जिंदगी में ऐसा ही करना है। और आप लोग किताबें पढ़ते हो कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
0: तो कभी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा है या कोई ऐसी चीज आपने किसी के बारे में पढ़ा है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, मैंने जैसे नॉवेल्स पढ़ी है, कुछ स्टोरी बुक्स भी पढ़ी है, तो स्टोरी बुक्स ज्यादा इंस्पायर करती है हमें।
0: स्टोरी बुक्स?
1: हाँ दीदी।
0: कोई ऐसी सीख आपको याद है जो आपको किसी स्टोरी से मिली हो?
1: स्टोरी से तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है। किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, तो किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए, हमेशा बुरे के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सीख मिलती है।
0: ये सीख तो बहुत अच्छी है। क्या ये सीख और इंस्पिरेशन आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो बच्चों?
1: हाँ दीदी, मैं तो करता हूँ।
0: करते हो? ठीक है। भुवना आप बताओ।
2: मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती हूँ दीदी। एक नॉवेल पढ़ी मैंने, आराम दी वाली 80 डेज, फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दोनों नॉवेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में हमें उस कैरेक्टर का पेशेंस पता चलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे।
0: अच्छा, उनके पेशेंस से आपने बहुत कुछ सीखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश आप बताओ, आपने कभी किसी बुक से, कहानी से, नॉवल से या किसी भी चीज से ऐसा कुछ सीखा है?
3: हाँ दीदी, मैंने बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है उसकी बुक से सीखा है।
0: अच्छा, क्या सीखा आपने?
3: हाँ दीदी, उसकी बुक में ऐसा बताया था कि जब वो बच्चा था तब उसकी जो टीचर थे वो पहले पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं था, कम पढ़ता था, तो उसकी टीचर ने बोला था, अरे तू तो पत्थर है पत्थर, तेरे दिमाग में तो भूसा है। तो वही बात उनके माइंड पे प्रिंट हो गई और ना मतलब थोड़ा पागल जैसे रहने लग गए, किसी से भी पूछते ये मैं पत्थर हूँ क्या, ऐसा ऐसा करने लगे। लेकिन उसके बाद ये बात जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने सोचा कि मैं सर को करके दिखाऊंगा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, ना मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो ये उनकी स्ट्रगल थी जो आज वो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसे वाले आदमी हैं।
0: अच्छा, मतलब कोई अगर आपको ये कहे भी कि मैं नहीं कर सकता हूँ तब भी हिम्मत रखनी चाहिए, ये आपने इंस्पिरेशन ली।
3: हाँ दीदी।
0: और ये इंस्पिरेशन हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाती है।
3: हाँ दीदी।
0: हाँ सैंडी आप बताओ।
5: दीदी, मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी बातें काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि जब वो छोटे थे, कम 7 साल के थे, तो उन्होंने 7 साल तक कुछ नहीं बोला, तो उन्हें उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद हमारा बच्चा कुछ बोलता वोलता नहीं है। फिर एक बार उनके खाना खा रहे थे सब लोग, तो सूप था वो गर्म था, तो उन्होंने पहली बार बोला कि सूप बहुत गर्म है, तो उनकी मम्मी पापा सब चौंक गए, बोले 7 साल तक कुछ बोला नहीं और आज अचानक। तो उनसे पूछा ना उनकी मम्मी पापा ने कि तुम इतने से बोल सकते, बोलते क्यों नहीं थे? तो उन्होंने बोला हर मुझे ज़रूरत की चीज़ मुझे टाइम पर मिल जाती थी, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता था, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही कहाँ। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें जहाँ जरूरत है वहीं बोलना चाहिए। और उन्हें स्कूल में कभी उनको जो रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब स्कूल के रूल्स होते थे वो हमेशा फॉलो नहीं करते, तो खुद के रूल बनाते थे। उन्हें कभी स्कूल क्लास से मैम बाहर कर देती थी सब ऐसा, तो उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने बोला सर ठीक है, पर उन्होंने आज वो आइंस्टाइन है, अपने वैज्ञानिक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो ज़रूरी नहीं कि रूल्स ज़्यादा फॉलो करके कुछ कर सकते हैं, पर हाँ जो नियम है उनको तो मानना चाहिए, तो सबके लिए है, पर अपनी पढ़ाई के बारे में कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
0: देखो नियम तो हमारे लिए ही बने हैं, उनकी सिचुएशन और उनके सर्कमस्टांसेस थोड़े से अलग थे।
5: हाँ,
0: और उनकी तरह हमें बनना जरूर चाहिए, लेकिन उन्हीं की तरह मेहनत भी करेंगे तभी हम पर ये चीजें लागू होती हैं, है कि नहीं?
5: हाँ दीदी।
3: हाँ।
0: पर ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने लाइफ की कमी को एक्सेप्ट करने के बाद भी कभी होप लूज नहीं की और बड़े बड़े काम करके दिखाए।
3: हाँ दीदी।
0: ठीक है, तो आज के इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय
6: बाय।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एक भन्नाट अलग तुम्ही ऐकताय, ऐकत राहा पुणेरी आवाज, आनंदी राहा, आनंद लुटा. आरजी जगदीश अल्पशी विश्रांती घेऊन पुन्हा येणार आहे. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, आस्वाद घ्या, आनंद घ्या.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
3: रामचंद्र आश्रित पारिजात है.

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: मस्ती की पाठशाला वेदांत, पंकज, आकाश, यश, आदित्य, सैंडी, वरदान, आदित्य प्रकाश, उन्नति। लेखिका सुधापुरी।
2: ओए क्या हो गया है सबको आज? हैं?
3: क्यों, क्या हुआ?
4: कुछ जल्दी से सोचो ना क्या खेलें? टाइम वेस्ट कर रहे हो सब।
5: टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हंस नहीं रहे क्या? चलो इसको पकड़कर इसे गुदगुदी करके हंसाते हैं।
4: ओह नहीं नहीं अच्छा बस बस, अब नहीं कहूँगा ऐसे।
2: घर घर खेले जैसे हम बहुत पहले खेला करते थे, अब थोड़ा बड़ों की तरह खेलेंगे। झूठी मोटी रॉब जमा कर, या दादा दादी की एक्टिंग करके, या कुछ भी पड़ोसी के साथ पंगा, या जैसे पिकनिक।
4: मतलब जैसे कोई कॉमेडी शो करेंगे।
5: बस बस, जब देखो घर घर या स्कूल स्कूल।
3: स्कूल स्कूल कब खेला?
4: उस दिन खेला नहीं था जब हमने टीचर बन के मेक इन इंडिया को समझाया था, क्लास ली थी।
6: ओह वो तो हमारी मस्ती की पाठशाला थी।
7: पर कुछ भी हो मजा बड़ा आया था, दीदी ने खेल खेल में मजे करा दिए थे।
8: खेल खेल में मजे या खेल खेल में ज्ञान,
2: दोनों ही।
5: चलो एक रैप सॉन्ग गाते हैं, ताली बजा बजा कर।
3: पहले लिख तो ले लिरिक्स क्या होंगे।
4: साथ साथ बनाएंगे, मजा आ जाएगा।
9: ठीक है शुरू करो।
6: क्या शुरू करो अंताक्षरी?
7: ये सब रैप सॉन्ग वगैरह हमारे अंताक्षरी का ही तो दूसरा रूप है।
8: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक।
2: ये चांद सा रोशन चेहरा,
5: नदियों का रूप सुनहरा,
3: ये झील सी नीली आँखें,
4: आँखों पर ज्ञान का पहरा।
6: इन आँखों को समझाओ जी,
7: इन्हें हंसना सिखाओ जी,
8: हर पल सीरियस न रहकर
10: खिलखिलाकर हंसना बताओ जी।
9: चलो एक बार और, बड़ा मजा आया। ठीक है।
2: वाह भाई वाह।
5: क्या भाई क्या?
3: एक चीज मिलेगी।
4: क्या भाई क्या?
6: बहुत सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ।
7: क्यों भाई क्यों?
8: त्योहारों के लिए और भाई क्यों?
2: पर पटाखों से होता है
9: प्रदूषण।
5: बस भाई बस।
3: क्या भाई क्या?
4: ज्ञान की बातें और क्या।
10: आज बहुत मस्ती में हो सब, चलो एक गेम खिलाती हूँ सबको। इसमें कोई गहरा ज्ञान तो नहीं, पर एक मजेदार एक्सरसाइज है।
9: हाँ दीदी हाँ, ठीक है।
10: देखो हम सब एक ही अक्षर से शुरू करके अधिक से अधिक सही मीनिंग वाली बातें बोलने की कोशिश करेंगे।
2: वो कैसे?
10: जैसे चंदू की चाची ने,
2: समझ गए, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाने का निश्चय किया।
10: समझ गए ना, एक ही अक्षर से जो जितनी देर तक सही मीनिंग वाली बात बोलेगा वही जीत जाएगा।
2: ठीक है, जैसे बंदर बैलून बदल बदल कर बुलबुले बनाते बनाते बोला, बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ी बना रहे हो बड़हवास, बैठे बैठे बेहुदी बातें बना बना बल खा रहे हो।
5: अच्छा अब मेरी बारी। ट्विंकल ट्विंकल टमाटर टाल, टोमी टाटा कर टेम्पो, और टू व्हीलर पर टकलू टिम्पी के साथ टेटे टमटम करता।
3: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं बनता।
5: क्यों बनता तो है।
9: जी नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता।
4: अच्छा अब मैं करके दिखाता हूँ।
9: ठीक है चलो चलो।
4: सीमा सामने से सतर्क हो, समझ सारसों से स्नेह स्वर से सहलाते हुए, सी सी स्वर समेत सरकती सरकती सारथी को बुला लाई।
10: ठीक है अच्छी कोशिश कर रहे हो तुम सब।
6: अब मैं।
9: ठीक है।
6: मटकती मैना मिली मुझे, मटक मटक के मन से बोली, मीना और मेमने मचल मचल कर मन मारते नहीं, मान मर्यादा मदन मन को समझाते, मम मम
7: रुक रुक रुक रेलगाड़ी रुक, रमैया रमती हुई रहना रेन।
8: ये देखो मैं क्या लाया हूँ।
9: क्या है क्या है? आहा, गोलगप्पे।
8: हाँ, मेरी मम्मी ने इसका पानी बनाया है।
5: पानी घर में बनाया है?
8: बिल्कुल, उन्हें हमेशा से मेरा बाहर से गोलगप्पा खाना पसंद नहीं था। कहती थी पता नहीं पानी साफ भी है या नहीं।
2: मेरी मम्मी भी खाने नहीं देती थी, पर इसके लिए शायद मान जाए, क्योंकि ये तुम्हारी मम्मी ने हम सब के लिए साफ पानी से बनाए होंगे।
8: और क्या, बल्कि मैंने भी सीख लिया है पानी बनाना। आज तुम सबको मैं सिखाऊंगा भी।
9: वाव, ग्रेट, मजा आ जाएगा। हम तो रोज बनाकर पिया करेंगे भाई।
8: बहुत आसान है। पहले कुछ पुदीने के पत्ते लो, जैसे एक छोटी गड्डी के।
9: ठीक है।
8: स्वाद अनुसार हरी मिर्ची लो, जैसे ज्यादा तीखा चाहते हो तो 3 या 4, नहीं तो 1 या 2।
9: अच्छा।
8: इनको अच्छी तरह से धोकर मिक्सी में पीस लो। फिर खटाई के लिए आमचूर पाउडर या कच्ची अम्बी डालकर पीस लो मिक्सी में। फिर इस मिक्सचर को ठंडे पानी में घोल लो। नमक अपने स्वाद अनुसार चख के ठीक कर लो। बस।
3: और क्या मसाले पड़ेंगे इसमें?
8: मम्मी ने इसमें 1/2 चम्मच हींग डाली है और 1 चम्मच काला नमक। ये सब हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। बाद में 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पीस के डाला है।
10: अब इसे देखते ही रहोगे या खाओगे भी? आओ मैं खिलाती हूँ सबको। लाओ ये गोलगप्पों का पैकेट, मुझे दे दो। ये भी मम्मी ने बनाया है क्या?
8: नहीं दीदी, ये बाजार से ऐसे ही मिल जाते हैं पैकेट में।
10: कई लोग तो इन्हें भी घर पर ही बना लेते हैं, सूजी या आटे के।
8: देखो दीदी, मैं पत्ते के दोने भी लाया हूँ। सबको एक एक बांट देता हूँ, सब मिलकर खाते हैं।
4: आह, तुम्हारी मम्मी ने तो आलू और चटनी भी मिक्स करके दिए हैं।
6: लाओ मैं मदद करता हूँ। सब गोलगप्पे मैं थोड़ा थोड़ा भर देता हूँ, फिर दीदी इसमें पानी भर भर के एक एक को देती जाएंगी।
9: ठीक है ठीक है, पर दीदी तुम भी तो खाओ ना।
10: खा लूंगी, पहले तुम सब खा लो।
9: नहीं नहीं, आप भी साथ साथ लो।
10: अच्छा, लेती हूँ लेती हूँ। देखो ध्यान से, ये वाला गोलगप्पा बहुत बड़ा है।
2: हाँ हाँ, कितना बड़ा मुंह खोला पड़ रहा है।
5: हाँ, अरे अरे, फूट गया सारा पानी।
4: आधा हाथ में ही आ गया।

0: आएगो आएगो आएगो।
1: ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। हाय क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो
1: ये क्या हो गया।
2: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
2: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, ना कर तुम, तेरे कर तुम, ना कर तुम, हम तुम, नता साथ, ठिपा साथ, लता साथ, पता साथ, मेरा कस करामत,
1: ताते देता, ताते देता, ताते देता, थैया थैया थै, तकतदुम, तकतदुम, तकतन्या

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब कुछ टूटता है तो उसकी आवाज़ आती है ये कहा जाता है। इन दिनों हमारे बहुत से बिलीफ सिस्टम्स टूट रहे हैं और बेआवाज़ ही टूटते जा रहे हैं क्योंकि रियलाइजेशन हमें खुद को होता जा रहा है। वो बिलीफ सिस्टम्स, वो पूरी धारणाएँ जिन पर हमारा पूरा जीवन आधारित था, लेकिन अब अगर हमने देखा कि किस तरह से वो हमें ही अपने पास में बांधते जा रहे थे और हम कहीं ना कहीं उलझते जा रहे थे। एक एक बिलीफ सिस्टम टूटते ही नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है और एक जो गुत्थी है वो सुलझती जाती है, फिर वो स्ट्रेट लाइन बनती जाती है। लेकिन हाँ, वो उलझन फिर आती है। वो बिलीफ सिस्टम, चाहे वो एंगर से जुड़े थे, चाहे वो रिजेंटमेंट से जुड़े थे, चाहे वो पास्ट को पकड़े रहने से जुड़े थे या फ्यूचर के बारे में सोचने से जुड़े थे, कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रॉन्ग विशेष सर्कल है, इतना मतलब सही तरीके से हमारी ज़िंदगी ने उसके साथ चलना सीख लिया था कि जब एक नए अंदाज में देखा सही तो लगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उलझते जा रहे हैं। तो कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो पावर है जो हमें अब जो समझ में आ रहा है उस पर चलना सिखा सकती है, वो शक्ति हमें मिल सकती है, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अभी तो बहुत कुछ समझा, जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे आधार थे ज़िंदगी का, जो हमने शुरू में मुझे याद है कि बात की थी कि ये तो कितने नेचुरल है, मतलब इनके बिना, और हमें अवेयर भी नहीं थे कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसे सेट ऑफ थिंग्स हैं जिन पर हम जी रहे हैं। लेकिन जब देखा तो ये भी देखा कि जैसे ही थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, अब अगर हम चेक करते हैं तो समझ में आता है ओ हम ये मानते आ रहे हैं, ये मेरी मान्यता है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, समझ में आता है कौन सी नई मान्यता बनेगी, लेकिन फिर वो अगली सिचुएशन आती है तो वो इतनी जोर का टेक ओवर करती है कि वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो रहती ही है। हाँ, पर ये जरूर है कि डिस्टर्बेंस आते ही हम रुक जाते हैं। अब आगे आप बताएं कि कैसे बढ़े।
1: जैसे कि एक है कि अब समझ में आ गया, अवेयरनेस आ गई कि हाउ इट इज वर्किंग। तो एक है कि मैकेनिज्म पता चल गया कि यस थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, मुझे थॉट लेवल पर ही उसको चेंज करना है, फीलिंग तक भी नहीं लेकर आना, क्योंकि फीलिंग लो हो जाती है एंड देन टू चेंज माय थॉट्स। तो अवेयरनेस से जब थॉट्स को देखना शुरू किया तो पता चल जाता है। अब अगर इसको आप जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, विद इन अ फ्यू डेज यू विल रियलाइज कि आपको अपने थॉट्स अब ऐसे पता चलते हैं। इफ़ यू आर जेलस ऑफ समवन, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है किसी से, आपको दिखाई देने लगेगी। जैसे ही ये अपने अंदर दिखाई देने लगता तो फिर काम करना कितना सहज हो जाता है बिफोर इट कम्स आउट इनटू द बिहेवियर। तो एक है अवेयरनेस। अब दूसरा है कि हमें समझ में आ गया, हम करना भी चाहते हैं लेकिन फिर कई बार हम कहते हैं लेकिन जब करने जाते हैं उसको प्रैक्टिकल में
0: हो पा रहा होता,
1: नहीं आ रहा है। फिर कई भाई बहने लिखते कि समझ में आ गया गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है, लेकिन वो बातें इतनी बड़ी आ गई। कहीं हम फील करते कि हमारे एफर्ट से ज़्यादा बड़ी बात आ जाती है हमारे सामने और हमारा एफर्ट अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। लेकिन वी नॉट टू गिव अप, वी आर ऑन अ जर्नी। अगर हमें ये कन्विक्शन है कि ये यात्रा ठीक है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ठीक है, स्पीड कुड वेरी कि थोड़ा स्लो है या थोड़ा फास्ट है, लेकिन अगर रास्ता ठीक है उसको हमें कंटिन्यू करना है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा पावर भी भरने हैं, अपने अंदर एनर्जाइज करना है अपने आप को, क्योंकि कुछ भी करने के लिए शक्ति चाहिए। सपोज मुझे समझ में आ गया कि शरीर को हेल्दी रखना है, लेकिन फिर उसके लिए एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी ना। सिर्फ मेरे सोचने से कि ये बॉडी हेल्दी हो जाए, इट वॉन्ट हैपन। तो नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज, आई हैव टू डू दिस फॉर द बॉडी। सिमिलरली नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज फॉर हियर, आई हैव टू डू। तो इसलिए मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपको तो पता ही आजकल मेडिटेशन हैज़ बिकम अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम सब रियलाइज कर रहे हैं कि यस अब कुछ और चाहिए, अभी तक जो मेजर्स यूज़ किए उससे वो जीवन में नहीं प्राप्त हो रहा जो हमें चाहिए था, तो एवरीवन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स मेडिटेशन। और मेजोरिटी आज जो भी भाई बहने मिलते तो वो किसी न किसी प्रकार से इसका प्रयास कर रहे हैं, एंड बहुत सारे हैं जो घर पे अपने ही तरीके से उसको कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज है, अगर इसको राइट तरीके से नहीं किया आई विल नॉट गेट द रिजल्ट। कोई भी इलाज है, मुझे इलाज करवाना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा कैसे करना है. मैं अपने आप ही अपने तरीके से कर लूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी, फिर आई एम डूइंग इट द राइट वे. एंड फिर वो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता कि कर भी रहे हैं लेकिन रिजल्ट भी नहीं क्रिएट हो रहा. तो मेडिटेशन में भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं.
0: Yes, very true. Another a very important one is thoughtlessness. I don't know why I want to pick this up, because majority of people are doing this. उनका ये प्रयास रहता है कि कोई थॉट नहीं क्रिएट होना चाहिए. आई नो आई हैव टेकन द बिगेस्ट द मोस्ट पॉपुलर वन, लेकिन उसी पे मैं काम बात करना चाहती थी कि थॉटलेसनेस हो जानी चाहिए. वो सिचुएशन पहुंच जानी चाहिए आपकी जब आपका माइंड कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा.
1: इट्स अ वेरी कॉमन वन, और ये सभी को लगता है कि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ सीखना तो है ही नहीं. हम घर बैठे रोज प्रयास करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे तो हमारा मन सोचना बंद तो कर ही देगा फाइनली. तो हर रोज हम अपने लिए टाइम निकालते एंड एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते कि मन सोचना बंद करते. नाउ दिस इज ईच वंस ओन एक्सपीरियंस, लेकिन इफ आई कैन शेयर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर हम सोचना बंद कर दें तो पहली बात वो संभव है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मन का काम है सोचना. इट्स लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर जो नेचुरल है, हम उसको फ्लो को बंद करने की कोशिश करते रहते हैं. अब जिसका नेचुरल स्वरूप है फ्लो होना, अगर आप उसको बंद करने की कोशिश करोगे तो मेनी टाइम्स पीपल एक्सपीरियंस कि यहाँ भारी होने लगता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई थॉट नहीं आनी चाहिए. इवन क्रिएटिंग दिस थॉट कि कोई
0: कोई
1: थॉट
0: थॉट नहीं
1: नहीं आनी
0: आनी
1: चाहिए,
0: चाहिए.
1: दैट्स ऑल्सो अ थॉट. अब इसमें भी आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि थॉटलेसनेस क्यों, वाई एम आई ट्राइंग टू अचीव थॉटलेसनेस. क्योंकि हम फील करते कि जब हम सोचना बंद कर देंगे तो सारी जो हमारी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं वो आना बंद कर देती हैं, विच इज़ ट्रू. कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट नहीं आएगी क्योंकि हमने सोचना ही बंद कर दिया. लेकिन आपने उस पर कोई और काम तो नहीं किया ना, आपने सिर्फ दबा दिया है उसको. अब इसको सपोज यहाँ पर कुछ है और हमने उसको दबा कर रख दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भी हमने दबा कर सपोज उस अचीव कर लिया कि उसको बंद कर दिया डब्बे को. अब इसके बाद काम पर गए, अब तो सोचना है ना, अब
0: वो
1: तो सोच,
0: अगर खुल गया
1: तो वो तो
0: वो
1: खुल
0: और ज्यादा फोर्स से होगा,
1: और ज्यादा ना भी होगा तो सही ना, जो उससे पहले था उतना ही स्टेज पर वापस आएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई वर्क नहीं किया था, उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया. सो दिस इज लाइक एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन, थॉट्स इज माई इंटरनल कॉन्वर्सेशन. हमने इसको कहा चुप कर जाओ, इसने सपोज चुप कर दिया, लेकिन फिर जब ये बोलेगा ये वही बातें बोलेगा जो ये पहले बोल रहा था, तो मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ थोड़ी देर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो इधर चल रहा था वो बंद हो गया. तो डेफिनेटली वो हमें एनर्जाइज करता है, क्योंकि मेरी लीकेज ऑफ एनर्जी जो कॉन्स्टेंट सारा दिन यहाँ चलती वो उतनी देर बंद हो जाती है. सिमिलरली ऑल्सो हैपन्स कि कई मेडिटेशन टेक्निक्स में हम अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करते हैं, वो भी बहुत बेनिफिट करता है कि हम जितनी देर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते जा रहे हैं हमारा सारा ध्यान किस पर आ गया, ब्रीद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, तो उतनी देर कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आते. लेकिन दिस इज अगेन हमने क्या किया, एक जगह से फोकस हटाया दूसरी जगह ले आए तो वो चीज़ की थॉट्स नहीं आई. लेकिन जब मेडिटेशन करना बंद किया फिर उसके बाद तो फोकस फिर कहाँ जाएगा, फिर उन्हीं बातों पर जाएगा जहाँ से हट कर आए थे, फिर थॉट्स की क्वालिटी वही हो जाती है. तो जब इस तरह की मेडिटेशंस हम करते ये हमें बेनिफिट बहुत करती हैं, क्योंकि हमारी डिप्लीशन नहीं होती लेकिन वो उतनी देर बेनिफिट करता है. एंड फिर उसका इफेक्ट, क्योंकि माइंड चार्ज हो गया ना, तो उसका इफेक्ट आगे सारा दिन पर कैरी फॉरवर्ड होता. लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, तो मेरा माइंड तो वही थॉट पैटर्न पर है, उसकी वो थॉट्स तो उसी क्वालिटी के, अगेन इट विल गो बैक टू थिंकिंग द सेम वे, क्रिएटिंग द एंगर, क्रिएटिंग द स्ट्रेस. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन आई सिट फॉर मेडिटेशन, अपने आप को हम डी स्ट्रेस करते वो सारा जो अक्यूमुलेट हो गया है. तो फिर बहुत लोग इसलिए कहते कि हाँ मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ लेकिन जब मैं मेडिटेशन अब करूँगा ना तो मैं उसको सारा ख़त्म कर दूंगा. तो मेडिटेशन एक विधि क्या बन गई है कि ब्लॉकेज क्रिएट होगा, अब आप बैठो और फिर उस ब्लॉकेज को ठीक करो. एक ट्रैफिक जैम क्रिएट होगा, फिर आप एफर्ट करो उस ट्रैफिक जैम को सॉर्ट आउट कर दो. एंड पीपल आर फाइन विद इट, कि ये ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस नेचुरल है ये माना, तो ब्लॉकेज नेचुरल है, तो अब हमने एक टेक्निक ढूंढी जिससे हम ब्लॉकेज को ठीक कर सकें. एंड सेम थिंग इवन हैपेंस कि कई बार मेडिटेशन में जो हम विधि अपनाते हैं उसको हम कहते हैं मंत्र जप, कि एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव शब्द का उच्चारण हम रिपीटेडली करते हैं. अब दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, क्योंकि जितनी देर वो इतने प्योर शब्द का उच्चारण किया उतनी देर कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कईयों के साथ ऐसा होता कि जब वो शब्द का बहुत समय से हम उच्चारण करते जा रहे हैं तो मन को यहाँ कुछ नया नहीं मिलता,
0: वो अपनी जो हम जो जो कहते हैं कि
1: क्रिएटिविटी, या क्रिएटिविटी नहीं है. तो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद इसको आदत पड़ गई है कि इन्होंने यही शब्द का उच्चारण करना है. तो कई बार अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे और मन किसी बात से डिस्टर्ब्ड है, कोई परिस्थिति को उलझा हुआ है, तो आप पाएंगे कि आप मंत्र का उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन मन शायद कहीं और चला
0: और
1: गया
0: वो
1: है.
0: इतनी स्ट्रॉन्ग जब आ जाती है परिस्थिति, तब तो बिल्कुल, मतलब कितना भी आप कर ले तब तो देन वी से कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा.
1: क्योंकि मंत्र का उच्चारण करते हुए भी, क्योंकि इट्स बिकम मैकेनिकल ना, तो हम बोलते जाते हैं वो मुख से लेकिन मन कहीं और चला जाता है. तो ये जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन ये हमें रेगुलरली करनी पड़ती है अपने आप को डीकंजेस्ट करने के लिए, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए. अब राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि मन की क्वालिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर वर्क करते हैं. अब इसमें भी आज भी दुनिया में बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना. अगर हम थॉट लेवल पर उसको चेंज करते हैं, थोड़े दिन के बाद हम पाते हैं कई बार कि वही क्वालिटी ऑफ थॉट्स फिर से आ जाती है. क्योंकि थॉट का फाउंडेशन क्या है, वो है हमारे बिलीफ सिस्टम्स या डीप रूटेड संस्कार्स, जिसको हम कहेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स. जब तक संस्कार पर वर्क नहीं किया है, उस फाउंडेशन की लेयर को चेंज नहीं किया है, तो उसके बाद जो भी ऊपर से ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो टेम्प्ररी हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन में तो अभी भी वही संस्कार है. तो राजयोग मेडिटेशन में हम मंत्र जाप भी नहीं करते, ब्लैंक भी नहीं होते हैं, एंड इट डजेंट इन्वॉल्व एनी फिजिकल ब्रीदिंग टेक्निक. राजयोग में हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, रोकते नहीं हैं लेकिन चैनलाइज करते हैं और नए क्रिएट करते हैं. क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर एक ही थॉट हो सकता है, तो अगर हमने एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किया तो जो एक्चुअल पहले से क्रिएट हो रहा है वो तो अपने आप वैसे ही बंद हो गया. जो हमारा एफर्ट था नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को ख़त्म करने का, वो तो वैसे भी हो गया क्योंकि हमने पावरफुल पॉजिटिव थॉट क्रिएट किए. लेकिन इसका जो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड के प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या होता, आप थोड़ा समय अपने साथ बैठकर माइंड की ये ट्यूनिंग करते हैं एंड पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स इस तरह क्रिएट करते, तो उसका बेनिफिट सिर्फ उतनी देर नहीं रहता, लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन में जाते हैं, परिस्थिति में, ऑफिस में, लोगों के साथ,
0: इट स्टेज विद यू, यू नो दैट्स
1: इट हैज बेसिकली चेंज्ड योर वे ऑफ थिंकिंग. सिर्फ उतनी देर नहीं बेनिफिट होता, लेकिन बेसिकली हमारा जीवन के प्रति, लोगों के प्रति और अपने प्रति भी एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया. तो उसका बेनिफिट हमें फिर प्रैक्टिकल लाइफ में होता. तो फिर मेडिटेशन और प्रैक्टिकल लाइफ
0: अलग अलग
1: सेपरेट नहीं रह जाते. इट इज माई, इट्स लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स माई लाइफ स्टाइल. तो उसमें फिर फोकस थोड़ा सा ये चेंज हो जाता कि ये नहीं कि स्ट्रेस क्रिएट करें, गुस्सा क्रिएट होता ही है, नेचुरल है, और फिर कल सुबह बैठ कर उसको ख़त्म करेंगे, उसको सफाई कर देंगे. यहाँ पर इसमें अटेंशन ये होता कि वो क्रिएट ही ना हो. ये नहीं कि कंजेशन हो फिर सुबह ठीक करें, फिर सारा दिन क्रिएट हो फिर ठीक करें. दैट इज लाइक बीमार हो फिर ठीक हो, फिर तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना, रोज रोज बीमार
0: हो. यू सेड क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, दैट आई अंडरस्टैंड, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड. पॉजिटिव मींस जो सही है, जो खुद को अच्छा फील करवाए. लेकिन अब जब हम अपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट, हाउ डू आई गिव पावर टू दिस पॉजिटिव?
1: सी, बिकॉज कई बार हम दुनिया में भी, क्योंकि हमने अलग अलग फॉर्मूले सुने हैं, अलग अलग टेक्निक सुनी हैं पॉजिटिव थॉट की, तो हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट तो कर देते, पर उसमें ताकत नहीं होती है, क्योंकि शायद हम अंदर ही खुद श्योर नहीं,
0: हाँ यस
1: हम श्योर नहीं हैं। तो वो पॉजिटिव, यू नो, लाइक लेट्स से कि कुछ काम रुका हुआ है, तो आई विल क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट, ये काम
0: हो
1: हो जाएगा।
0: जाएगा,
1: लेकिन उसी के साथ साथ अंदर मुझे डाउट
0: मेवा
1: भी
0: तो
1: है कि मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, फिर फियर भी है अगर नहीं हुआ तो फिर वो पॉजिटिव थॉट का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज वो वन पॉजिटिव थॉट इज फॉलोड बाय लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं कर रहा, कि हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं आ रही। वो पॉजिटिव है लेकिन वीक थॉट है, इसलिए वो पॉजिटिव बहुत जल्दी फॉलोड बाय नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव थॉट विद कन्विक्शन एंड जिसमें बिल्कुल एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होगा, फियर नहीं होगा, इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वो रियलिटी में फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड वो हमें स्टेबल रखेगा। सी, हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं मीन्स वी आर रिमेनिंग स्टेबल, लेकिन पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया उसके बाद फॉलोड बाय इनसिक्योरिटी या फियर, तो फिर वो यहाँ ये क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर से क्रिएट किया हुआ थॉट है लेकिन डीप लेवल का जो संस्कार है वो अभी भी गुस्से वाला है, वो अभी भी वो संस्कार है कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। यू नो, लेट्स से कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ और मेरा वो डीप रूटेड संस्कार अभी भी है कि लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए, ऊपर से मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, हाँ कोई बात नहीं, आप जिस तरह से कर रहे हैं ठीक है, आई विल एक्सेप्ट यू, लेकिन एक बार वो कर पाती, दो बार कर पाती, तीसरी बार ऐसे हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू गो ऑन एडजस्टिंग, क्योंकि मेरा संस्कार जो है वो फिर वो मुझे डिस्टर्ब करना शुरू करता कि नहीं, दिस इज नॉट द वे इट्स गोइंग टू वर्क, तुम्हारा तो काम ही नहीं होगा अगर तुम ऐसे ही लोगों को एक्सेप्ट करते रहोगे। तो फिर वो एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ थॉट मेरे अंदर क्रिएट करता। मेडिटेशन इज लाइक अ चार्जिंग प्रोसेस जिसमें हमें अपने डीप रूटेड संस्कार्स, डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम्स चेंज होते, जिससे फिर थॉट लेवल पर वर्क ही नहीं करना पड़ता। यू सी, आप एक स्टेप और पीछे चले जाएंगे, जब आप अपने संस्कार को चेंज कर देंगे आपको थॉट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्वालिटी का संस्कार उसी क्वालिटी के थॉट क्रिएट होने वाली है। तो मेडिटेशन में जब हम संस्कार लेवल पर वर्क करते तो फिर थॉट वो आएगा ही नहीं उस क्वालिटी का, एंड फिर ये जो अटेंशन रख के एफर्ट किया जाता है फिर वो सफोकेटिंग नहीं लगता। यू नो, कई बार क्या होता है अगर हम रूट लेवल पर नहीं काम करते और प्रैक्टिकल में सिर्फ काम करने लग जाते हैं तो ऊपर ऊपर से तो रोक लेते हैं
0: हाँ, वो
1: अपने आप
0: गुस्सा रोकने की
1: को।
0: कोशिश करते, और वो बहुत बार होता है कि गुस्सा रोकने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं नहीं आई हैव टू बी स्टेबल, एंड वो उस वक्त पांच सिचुएशन, जैसे मैंने कहा पांच टाइम तक तो इरिटेशन नहीं हुई, छठे पे वो फिर मैं कब तक रोकूं।
1: क्योंकि अपने अंदर पावर नहीं भरी और बाहर से सिर्फ करने की कोशिश की, तो इट इज़ ओके टू स्टार्ट विद, नहीं तो बाहर से भी नहीं शुरू करेंगे, लेकिन शुरू भी करते जाएं, एफर्ट भी अपने ऊपर लगाते जाएं, लेकिन साथ साथ अपने अंदर ताकत भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कमजोरी के हालत में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। सी, जो अब हम इस प्रोग्राम के द्वारा जो हम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, दिस इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट्स नॉट वेरी सिंपल कि आपके आसपास लोग कुछ भी कर रहे हैं आप उनको स्वीकार करें, आप गुस्सा ना करें, आप फिर भी प्यार से रहें, आप शांत रहें, दिस इज़ नॉट वेरी इजी इन प्रेजेंट चैलेंजिंग टाइम्स, अगर आप साथ साथ अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत नहीं करते। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत करते गए ऊपर से अंदर ताकत नहीं थी और वो सडनली फिर अंदर से, यू
0: गिरेगा।
1: नो, एक दिन यू विल जस्ट एक्सप्लोड, ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो डीप लेवल से हुआ है, विद अंडरस्टैंडिंग हुआ है एंड साथ साथ उसके लिए आपने अपने अंदर ताकत भी भरी है, ताकि आप कभी भी अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड ही ना हो जाएं ये एफर्ट करके। क्योंकि कई बार लोग थोड़ा सा ट्राई करते, वहाँ से रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलेगा कि सामने वाला चेंज हो जाए या ऑफिस में सब एकदम प्यार से काम करने लगे, फिर
0: धन्य
1: हमें
0: गिव
1: लगता
0: अप।
1: है नहीं, और फिर हमारी जर्नी आकर रुक जाती है एंड पुराने बिलीफ सिस्टम्स तो रेडी पड़े ही हैं, तो उनके पास वापस जाना मुश्किल नहीं होता, तो इसमें लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि एक जर्नी पर चल रहे हैं लेकिन साथ साथ अपने को फ्यूल करना बीच बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए सुबह के समय जब हम अपने साथ बैठते और साइलेंस में बैठते हैं, तो हमें साइलेंस में बैठकर, क्योंकि मेडिटेशन एक्चुअली क्या है, एक बेसिक लेवल पर अगर हम देखें तो अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको हमें पहले रिजोल्व करना है, फिर जो हमारे बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
0: उन पर
1: वो तो अपने आप ही रिजोल्व हो जाएंगे, उन पर मेहनत नहीं करनी है। तो मेडिटेशन ऑफ कोर्स डीपर लेवल पर हम और आगे देखेंगे कि कैसे करते, लेकिन बेसिक लेवल पर जो सभी अब शुरू कर सकते हैं वो है कि सुबह का समय पहले तो अपने आप से अपॉइंटमेंट, वी हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, एंड इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, क्योंकि जितनी यहाँ स्पीड ऑफ थॉट्स है 5-10 मिनट तो सिर्फ उसको थोड़ा सा साइलेंट करने में ही लग जाता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़्यादा दें एंड उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करें, बंद नहीं करें, लेकिन अपने आप को फोकस करें कि आई एम क्रिएटिंग अनदर थॉट। तो यहाँ से थॉट्स आएंगे, आप ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर उलझ जाएंगे। सपोज कोई थॉट आया, कल तो उन्होंने ऐसा कहा था, अब अगर उसी में उलझ
0: के आ गया कि साथ साथ का पूरा सिनेरियो चलेगा,
1: या आज मुझे ऑफिस में ये करना है, अगर आप उसको एनर्जी नहीं देंगे, उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे, बहुत जल्दी दे आर स्टॉप्ड, दे आर ओवर एंड गॉन, हम उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते। हमें ध्यान रखना है मुझे क्या क्रिएट करना है। तो जो लोग कहते हैं ना कि एक पॉइंट को लो और उसको फोकस करो, इट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल पॉइंट कि एक स्थान बाहर, लेकिन एक थॉट को लो पहले, वो यहाँ पॉइंट क्रिएट करो, एक थॉट को लो और उस पर फोकस करो। तो सपोज हम एक थॉट लेते, आई एम अ पीसफुल बींग, शांति मेरी अपनी नेचर है, इसको क्रिएट करना है। और इसके साथ साथ हमें विजुअलाइज करना है कि शांति जब मेरे जीवन में इतनी नेचुरल आ जाएगी, मेरी जीवन कैसे हो जाएगी। विजुअलाइज योर सेल्फ विद दैट वैल्यू एंड दैट पावर ऑफ पीस।
0: थॉट्स ना, मोर थॉट्स,
1: यस, दिस इज बिकॉज
0: एकदम से स्टोरी, यस,
1: यू नो, इट्स लाइक अ प्लानिंग फॉर द डे। क्योंकि सिर्फ थॉट लेवल पर करते हैं तो उतना अभी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर साथ साथ विजुअलाइज करते तो जो चीज को हम विजुअलाइज करेंगे वो हमारी फीलिंग भी बनती जाती,
0: वो इम्प्लीमेंट होना भी आसान हो जाता,
1: वो इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता। जैसे हमने पहले बात की, इरिटेट नहीं होना है, मतलब शांत रहना है। अब वो सीन ले आओ यहाँ कि कौन सी ऐसे सिचुएशंस थी जिसमें हम इरिटेट होते थे, एंड नाउ क्रिएट द सीन कि वही सीन है, वही कंप्यूटर है, वही लोग हैं, बट हम कैसे हैं, हम पीसफुल हैं। लुक एट योर सेल्फ एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, लुक एट योर सेल्फ कि जब वो शांति आपके स्वरूप में आ गई, आपकी जीवन कैसी हो जाएगी। यू नो, वो गोल सेटिंग है, दिस इज गोल सेटिंग, कि हम उस गोल को सेट करें और फिर उसको प्रोग्रामिंग करके यहाँ फिट कर दिया,
0: फिर उस पर चलना
1: सारा दिन वो हम पर चलना शुरू हो
0: जाएगा। एक और बात है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम्स जिन पर हम काम करना चाहते हैं कि वो हम डिलीट कर पाए, तो उसके लिए क्या ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें उन्हें भी इमर्ज करके उन्हें खत्म करना है?
1: जैसे जैसे माइंड साइलेंट होता जाएगा और ऑर्डिनरी थॉट सारा दिन की धीरे होती जाएंगी, तो हमारा ये जो थॉट की स्टेज है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ऊपर की लेयर का माइंड है, जो रोज की मर्रा की थॉट्स क्रिएट करता। जब ये धीरे धीरे बंद हो जाती, वी कम टू द लिटिल लोअर लेयर विच इज़ द सब कॉन्शियस माइंड। तो हम फाउंडेशन लेयर में चले गए जहाँ वो हमारी डीप थॉट्स बैठी हुई हैं, जिसके बेसिस पर ये सारी थॉट्स क्रिएट होती। एंड तब उस साइलेंट की स्टेज में हम जो बीज बोएंगे, जो थॉट क्रिएट करेंगे, वो फाउंडेशन में जाकर बैठ जाएगा। एवरी डे इफ आई सिट एंड आई टेल माई सेल्फ दिस कि हर एक जो कर रहा है अपने अनुसार सही कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी, अपनी स्पीड और अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन से काम कर रहा है। The world is not going to work according to me. I can expect, but people not necessarily will meet my expectations. ये अपने आप को बहुत deep silent mind में ये डालना है। This is very deep mind programming. जो mind में फिर ये belief systems बैठते जाते foundation layer में, तो सारा दिन वो हम पर work करते हैं, क्योंकि ये foundation layer में बैठा, इसके basis पर ही सारे थॉट्स क्रिएट होने वाले हैं। तो अगर हमने इसको पहले माइंड को साइलेंट नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही बैठे और हमने कहा आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन, ये ऊपर ऊपर की थॉट है, नीचे वाली लेयर की थॉट तो यही है सब लोग मेरे अनुसार होने चाहिए, तो फिर जब प्रैक्टिकल में जाएंगे वही होगा। तो इसलिए स्लो डाउन द माइंड फर्स्ट बाय क्रिएटिंग दीज वेरी पॉजिटिव थॉट्स, एंड जब आप एक्सपीरियंस करें कि आपकी सारी ऑर्डिनरी थॉट्स खत्म हो गई, गो एंड प्लांट द सीड, टेक ओनली वन बिलीफ सिस्टम, कोई एक बिलीफ सिस्टम, अ डे भी नहीं, टेक वन फॉर क्वाइट सम टाइम इफ यू वांट, क्योंकि ये एक एक बिलीफ सिस्टम
0: काफी बिकॉज देन यू शुड वी शुड फील दैट वो बिली सिस्टम कैसे मेरा बन गया जो नया क्रिएट किया कि जब भी सिचुएशन आएगी वो पॉपअप करे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वो पॉपअप करना चाहिए ना कि पुराना बिलीफ सिस्टम।
1: एंड जब आप एक दिन उसको लेंगे फिर आपको सारा दिन में उसका रिजल्ट दिखाई देगा, वो आपको इंस्पायर करेगा अगले दिन फिर बैठकर वो सीड को प्लांट करने के लिए। एंड थोड़े दिन के अंदर आप रियलाइज करेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता जा रहा है। जहाँ वो चेंज होता गया, थॉट लेवल पर कुछ वर्क नहीं करना पड़ता, अटेंशन भी नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि
0: बिलीफ सिस्टम
1: फाउंडेशन ही चेंज हो गया।

बैठकर उन सभी बिलीफ्स को अपना बनाना है। कोई सवाल कोई बात मन में है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अब एक निमित्त ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आने वाली कड़ियों में और मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस यानी कि तनाव, जिसे हम अभी तक जिंदगी का एक हिस्सा मान रहे थे। हमने मान लिया कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी में है ही, और ये भी समझ में आया कि स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो बॉडी पर बहुत आती है। इस कारण स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात की। लेकिन जब पिछली दो कड़ियों में हमने बात की है स्ट्रेस की, तो एक बात सामने आई कि जिस तरह से जब हम कार चला रहे होते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि कार के अंदर क्या है या कार में क्या है, और जब कभी प्रॉब्लम आती है तब मुश्किल आ जाती है। इसीलिए अगर स्ट्रेस को दूर करना है, तनाव को दूर करना है, उसके लिए ज़रूरी है खुद को पहचाने। खुद को पहचानने की एक कोशिश ये कि मैं कौन हूँ, ये समझा। अब आगे कुछ और बातें करते हैं स्ट्रेस से जुड़ी हुई, तनाव से जुड़ी हुई, और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। स्ट्रेस को हमने समझा कि स्ट्रेस है, हम हर बार ये कहते आए हैं। पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि उससे मुक्त होने के लिए बहुत से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं बाहर तक रुक जाते हैं। एंड एज ऑलवेज इट हैज़ टू गो विद इन, यू नो, इंटरनल है। मैं कौन हूँ ये जान लिया, अब आगे कहाँ बढ़ेंगे।
1: क्योंकि जैसे पिछली बार भी हमने देखा कि अपने आप के अंदर जो ये दर्द आ रहा है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ अ फॉर्म ऑफ पेन, तो दर्द को आने के लिए मुझे अपनी कॉन्शियसनेस की मैकेनिज्म में चेक करना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव टू बी एबल टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट। लेकिन कॉन्शियसनेस के अंदर प्रॉब्लम है, अभी तक प्रॉब्लम बाहर थी, तो इट वॉज ईजी कि आप बाहर ढूंढो किसको ब्लेम करें हम अपने मन की स्थिति के लिए। तो हमें बहुत जल्दी कोई ना कोई मिल ही जाता था, और जब कोई नहीं मिलता तो हमारी उंगली हमेशा ऊपर हो जाती कि ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार भी भगवान है। तो इट वॉज ऑलवेज ब्लेमिंग समबडी एल्स, तो वो बहुत ईजी था। अब जब समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फिर इसको फिनिश भी मुझे खुद ही करना होगा। तो अपने बारे में कुछ एक बातें जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता, जिसमें सबसे पहली बात जो हमने देखी कि मैं कौन हूँ जिसके बारे में मुझे जानना है। क्योंकि आज दिन तक मैं वॉज लेबल्स के शरीर, नाम, पोजिशन, पीपल, रिलेशनशिप्स, डेजिग्नेशन, बट नाउ वी अंडरस्टूड कि मैं ये सब को चलाने वाली, इन सब को यूज़ करने वाली, ये सारे रोल्स को प्ले करने वाली, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम एनर्जी, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जी। अब इतना तो जान लिया कि मैं एनर्जी हूँ। अब इस एनर्जी के बारे में हमें कुछ एक बातें जाननी होंगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अपने बारे में जाननी होगी, मेरी नेचर क्या है, मेरी वास्तविक नेचर क्या है। क्योंकि आज बहुत सारी बातों के लिए हम कह देते हैं ये तो मेरी नेचर है, यू नो, एंड गुस्सा करना मेरी नेचर है। व्हाई वी से ये मेरी नेचर है, क्योंकि जो चीज़ मेरी नेचर है उसको मैं चेंज नहीं करती फिर, बिकॉज नेचर कम्स फ्रॉम द वर्ड नेचुरल, तो नेचुरल है ये मेरे लिए, तो उसको फिर चेंज क्या करना।
0: वो मुझे मिल जाता है ना, वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आई डोंट हैव टू चेंज दैट बिकॉज इट्स नेचुरल।
1: इवन चिंता करना, इवन टेंशन करना, ये भी करते करते करते हैबिचुअल हो गए, तो हैबिट को नेचर बना दिया। क्योंकि दो अलग वर्ड्स है, एक है आदत और एक है आपके व्यक्तित्व स्वरूप क्या, हैबिट एंड नेचर। कोई चीज हमने बहुत बार की, करते करते करते हैबिट बन गई, हैबिट को हमने कह दिया ये मेरी नेचर है। लेकिन हैबिट बनी तो हैबिट चेंज भी तो हो सकती है। तो हमें अपनी सही ट्रू नेचर के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि रियल ब्यूटी, वी आर ऑल सो ब्यूटिफुल, लेकिन क्योंकि मैंने समझा मैं शरीर हूँ तो आई कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन मेकिंग द बॉडी ब्यूटिफुल।
0: एक्चुअली यू नो ओवर द ईयर्स या देखा जाए तो अगर ये पढ़ते चढ़ते चढ़ते हमने वो सभी चीज़ों को अपनी नेचर मान के अपने आप को ये वो दे दिया है, ये लिवरेज दे दी है कि इट कांट बी चेंज्ड,
1: इट कांट बी चेंज्ड, नेचर वर्ड ऐड करने से है। तो परमात्मा शिव बाबा हमेशा ये याद दिलाते कि जब ये स्मृति आ गई कि आप आत्मा हो, तो अब आत्मा को अपनी ओरिजिनल नेचर की स्मृति आनी चाहिए, और फिर वो नेचर आपकी नेचर है, ये नेचर आपकी बनी, लेकिन ये नए संस्कार बने, लेकिन आपके ओरिजिनल संस्कार क्या है वो आपकी ओरिजिनल नेचर है। तो रियल ब्यूटी को आज दिन तक हम बाहर ढूंढते आए, सुंदरता को बाहर ढूंढते आए, लेकिन ब्यूटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी टच्ड और कैन बी सीन, इट हैज टू बी फेल्ट। तो दैट रियल ब्यूटी आई कैन फील इनसाइड मी व्हेन आई एम एट पीस, व्हेन आई एम गिविंग समथिंग टू एनीबॉडी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये चीज़ें हैं जो हमने शायद बहुत समय से की नहीं है कि किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी फिजिकल, लेकिन इवन किसी को प्यार अगर हम दे रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. क्योंकि जैसे ही हम देते हैं तो देने से पहले हमारी एक लिस्ट होती है कि अब मुझे आपसे क्या क्या चाहिए. मैंने आपको रिस्पेक्ट दी तो आपको भी तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो जहां मैंने दिया और देने से पहले मुझे ये पता था कि मुझे आपसे क्या चाहिए, आई कांट फील माई पीस. क्योंकि जहां आपसे नहीं मिला तो दैट पीस गेट्स डिस्टर्ब्ड. तो अभी तक क्या हुआ, हमने एंगर स्ट्रेस इनको अपनी नेचर बना लिया और परमात्मा ने हमें आकर याद दिलाया कि हर आत्मा, एवरी सोल दैट एग्जिस्ट, उसकी ओरिजिनल नेचर है शांति, उसकी ओरिजिनल नेचर है प्रेम, हैप्पीनेस एंड प्योरिटी. You know, every soul is so beautiful because it's full of purity, happiness, love, truth. But we kind of lost it. क्यों? क्योंकि जब हमें किसी ने देखा हमें और हम पर कमेंट किया कि you're looking very beautiful, तो हमने सोचा beautiful अर्थात how I am looking and not how I'm feeling. तो किसी ने कहा आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो I connected my looks now with the dress. फिर फिजिकल लुक्स के अलावा भी हमारे बिहेवियर्स पे भी बहुत लोगों ने कमेंट्स पास किए. जैसे अगर मुझे फील होने लगा कि अगर मैं एक गैदरिंग में हूँ तो अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और यू नो जोक्स क्रैक करती हूँ तो मुझे लोगों की अटेंशन मिलती है. तो जब मुझे वो अटेंशन मिलती जाती है बहुत समय, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने पर्सनालिटी को वैसा बनाना शुरू कर देती हूँ जिससे मुझे वो अटेंशन मिलेगी.
0: क्योंकि वो मुझे लगता है दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज.
1: दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज. इफ आई एम वेरी शाई, मैं बहुत क्वाइट हूँ, तो मुझे सबसे सिंपथी मिलती है, बेचारी तो चुपचाप बैठी रहती है. देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि ये इमेज को इस तरह से परसेप्शन मिलती है. इफ मैं गुस्सा करती हूँ, बहुत ज़्यादा बार बार जोर से बोलती हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि मैं औरों के अंदर डर क्रिएट कर सकती हूँ. तो ये सारी पर्सनालिटीज़ देखते देखते हम अपनी सेल्फ इमेज बनाना शुरू कर देते हैं. आप देखो कितने सारे भाई बहने हमें ईमेल्स लिखते हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहता हूँ. अभी मैं बहुत क्वाइट हूँ लेकिन मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट बनना चाहता हूँ. व्हाई? बिकॉज द माइंडसेट सेज कि जो एक्सट्रोवर्ट है उसको ज्यादा सभी से अप्रिसिएशन मिलेगी. तो ओरिजिनल नेचर को पूरी तरह से भूल गए और ये जो इमेजेस बनाते गए और जिन इमेजेस के लिए जो रिस्पॉन्सेज औरों से मिलते गए उस अनुसार अपनी पर्सनैलिटी को बनाना शुरू कर दिया. और इतना बाहर जाते गए कि जो रियल था, जो सत्य था थी, उससे कहीं दूर चले गए. और ये इमेजेस बनाने के प्रोसेस में अपनी सत्यता को हमेशा भूलते गए. क्योंकि हमने सोचा एंगर, दिस क्रिएट्स फियर, सो आई स्टॉप्ड एक्सपीरियंसिंग पीस, आई ऑलवेज मूव्ड आउट फ्रॉम द रियलिटी. तो अब जब हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते, द टाइम हैज कम जब हम अपनी रियल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें. बिकॉज इट्स नॉट इनफ टू से कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. अब उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? एक है जब हम मेडिटेशन में बैठते और जब हम ये थॉट्स क्रिएट करते और हम बाकी नॉइज को फिनिश कर जाते और जब हम परमात्मा जो शांति का सागर है उनके सम्मुख बैठते, तो हम कुछ एक क्षणों के लिए वो शांति को अनुभव करते हैं. लेकिन फिर भी उस अनुभव के बाद मैं उस ओरिजिनल नेचर को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बना लूं? यू नो, बिकॉज इट्स सेइंग वो 5 मिनट तो बहुत अच्छा था, 10 मिनट तो बहुत अच्छा था, लेकिन सारा दिन में नाउ टू एक्सपीरियंस कि आई एम अ पीसफुल सोल. बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नाउ हुव जॉइंड, दे हैव पिक्ड अप ऑल दिस, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, एंड दे विल राइट दैट एंड दे आर लाइकिंग दैट. यू नो द ब्यूटी इज कि जब आपको अपने बारे में ये पता चलता है, यू रियली लाइक इट कि मैं आज दिन तक अपने बारे में क्या सोच रहा था, एंड एक्चुअली आई एम अ प्योर सोल. एंड जितनी बार आप अपने आप को याद दिलाते हैं आई एम अ प्योर सोल, यू फील वेरी गुड, बिकॉज यू कनेक्टिंग बैक टू द ट्रूथ, यू कनेक्टिंग बैक टू रियलिटी. लेकिन अब इसको सिर्फ एक्सपीरियंस तक न रख के अब इसको एक्सप्रेशन में लाना होगा, तब वो एक्सपीरियंस और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. मैं एक पीसफुल सोल हूँ, तो ये सिर्फ बोलने में नहीं, सवेरे कहा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दिन में तो वही ऑर्डिनरी वे ऑफ शाउटिंग, गेटिंग इरिटेटेड, एंग्री, आई विल नॉट एक्सपीरियंस पीस. तो माई रियल ब्यूटी, हाउ कैन आई शेयर इट विद द वर्ल्ड, is when I will bring it out into expression. उसको अपने व्यवहार में लाना होगा. बहुत गुस्सा है मेरे आसपास, कोई ना आवाज है, अग्रेशन है, सब कुछ टर्मोइल में है, लेकिन उस क्षण आई एम एब्सोल्युटली पीसफुल. एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग बट आई एम एब्सोल्युटली पीसफुल. इट इज एट दैट टाइम दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई पीस, बिकॉज जब एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम पीसफुल इज नो बिग डील. बट वेन एवरीथिंग अराउंड मी सीम्स टू बी गोइंग रॉन्ग, विच द वर्ल्ड थिंग्स इज गोइंग रॉन्ग, एंड एट दैट टाइम आई कैन एक्सपीरियंस कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, देन आई हैव एक्सपीरियंस्ड पीस एंड आई हैव एक्सप्रेस्ड पीस.
0: स्प्रेड इट, यू नो. यस.
1: एंड जैसे ही मैंने उसको अपने एक्सप्रेशन में लाया, वो मैंने सिर्फ अपने तक ना रख कर आप तक भी पहुंचाया, क्योंकि अगर एक ग्रुप में सब कुछ टर्मोइल में हो, अगर एक आत्मा भी अपनी वो स्थिति को मेंटेन कर सकती है, तो वो पावरफुल स्थिति फिर औरों की स्थिति को मदद करती है स्टेबिलिटी में लाने के लिए. अगर किसी ने कोई गलती की है और वो हमसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुस्सा, जजमेंट, एंड अगर उस समय हम उनको दे पाते हैं एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, देन आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर माई सेल्फ and for the soul. So let's not just keep our nature just to that morning meditation, lekin usko sara din mein practical mein use kare, aur jitna use karte jayenge utna wo sanskar bhi strong hota jayega. Some people feel ke hum itna sun rahe hain, hum roz dekh rahe hain, lekin hamare se nahi ho raha, to hoga kaise? There is no other formula. करके देखो. करना होगा कि जब सब कुछ टर्मोइल में है तब उस टाइम डिटैच हो जाओ. लेकिन नॉर्मल ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या करता है, सब कुछ टर्मोइल में है, अब शोर मचाओ, गुस्सा करो, तो आई फॉरगेट. फिर बाद में सोचते हैं लेकिन मैं साक्षी तो हो नहीं पाया उस टाइम. पहले भरना है अपने अंदर, मेडिटेशन से पावर भरनी है, लेकिन परिस्थिति आने पर उसको यूज करना है. डोंट थिंक दैट थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली. It will not. अगर आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, आपकी पॉकेट में है, जरूरत आने पर आपको उसको निकाल कर यूज करना पड़ेगा ना. डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे पास है तो वो अपने आप यूज हो जाएगा. आई विल हैव टू टेक इट आउट एंड यूज. सो आई हैव दिस पावर, आई हैव टू टेक इट आउट एंड यूज बाय ब्रिंगिंग इट आउट इन माई बिहेवियर. तो जब लुक फॉर द सिचुएशन, बिकॉज सारा दिन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे आने वाली हैं, एंड देन टर्न, एंड फिर अपनी जब ये रियल नेचर को उस सिचुएशन में लेकर आएंगे तो हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा. देन आई विल रियलाइज कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है. जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो मेडिटेशन के अनुभव तक नहीं रह सकती है. उस समय तो अच्छा लगेगा ही लगेगा आपको, लेकिन परिवर्तन मतलब जब
0: दिन भर,
1: सारा दिन में
0: मुझे में अच्छा लग रहा है वो आपके साथ.
1: एंड फिर सारा दिन अगर मैं अपने आप को इस तरह हल्का रख पाऊँ तो अगले दिन की मेरी मेडिटेशन भी बहुत अच्छी होगी. अगर मैंने आज सारा दिन बहुत परेशानी में गुजारा, मैं चिंता करती गई जबकि मुझे पता है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं गुस्सा करती रही जबकि मुझे पता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई सिट, देन इट्स जस्ट वर्ड्स कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, नो एक्सपीरियंस. एंड फिर थोड़े टाइम अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर हम कहते हैं दिस डजंट वर्क फॉर मी.
0: मेडिटेशन आल्सो डजंट वर्क. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि अगर सारा दिन नहीं एक्सपीरियंस किया होता या हम नहीं वो कर रहे होते, तो अगले दिन जब हम बैठते हैं तो वो खुद को ही झूठा लगने लगता
1: है. एब्सोल्युटली, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी से कॉन्फ्लिक्ट करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं, मैं शांत स्वरूप कहाँ हूँ, मैं सारा दिन में तो इतना गुस्सा करती हूँ. तो वो ऐसा लगता है कि ये बोलना भी कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन. एंड देन पीपल से ये जो थॉट्स है ये जस्ट इमेजिनेशन है, आप हिप्नोटाइज कर रहे हो अपने आप को. इट्स नॉट, हिप्नोटिज्म इज डिफरेंट, दिस इज रिमाइंडिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को सिर्फ याद दिला रहे हो कि मैं कौन हूँ, और उस स्मृति को सारा दिन में फिर यूज करना है. तो अपनी ट्रू नेचर को पहचानना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. ये तीन चार बातें भी अगर मेरे को अपने बारे में याद रहे, तो फिर मेरे फिजिकल से और क्या पहना है और क्या इमेजेस औरों को अच्छे लगते हैं उससे मेरा सारा ध्यान हटता जाएगा, क्योंकि नाउ आई नो हु आई एम. इवन इफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डजंट नो अबाउट इट, नाउ आई नो व्हाई माय ट्रू ब्यूटी लाइज. और जैसे ही हमें अपनी रियल नेचर के बारे में पता चलता, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने आ जाती, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जीवन की यात्रा में, यू नो. क्योंकि हम सब के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. हम लोग हमेशा कहते हैं आपको नहीं पता मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, लेकिन ज़्यादातर वो जिम्मेवारी हमेशा दूसरों की होती है. ऑफिस की, परिवार की, बच्चों की, मेरे अपने प्रति, अपने इस जीवन के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी
0: है? वो तो मैं सोचती ही नहीं ना, और उसको मैं उसको ना सोच के अपने आप को बहुत महान मानती हूँ
1: कि
0: सैक्रिफाइस आई डोंट थिंक अबाउट माय सेल्फ, मेरे को अपने बारे में सोचने का तो वक्त ही नहीं है, अपने लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ और मैं दूसरों के लिए ही करती रहती हूँ, यू नो।
1: और यही हमें समझना होगा कि जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो हम कोई बहुत सही रीति से, जिस तरह से जिम्मेवारी उठानी चाहिए औरों की, वो नहीं उठा पाएंगे। सारा दिन में चलते चलते जितनी बार भी हम कहते इनकी वजह से मेरे माइंड की स्थिति इस तरह से, द मिनट द फिंगर गोज आउट फिजिकली नहीं तो भी मेंटली कि इनकी तरफ से, मतलब मैंने सारी पावर यहाँ से, जिसकी तरफ आपने फिंगर पॉइंट किया आपने अपनी पावर दे दी कि आप मुझे कंट्रोल करते हैं, तो मेरी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। परमात्मा ने जो हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया उसमें जो बहुत फंडामेंटल बात है, जिसको हम शायद बहुत बार रिपीट करते हैं लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार समझने के बाद भी सारा दिन में वो यूज़ नहीं हो पाती, एंड दैट इज़ कि दूसरे जो कहते और दूसरे जो करते वो मेरी मन की स्थिति को क्रिएट नहीं करते हैं। उसको सुनकर या उस सिचुएशन को देखकर मैं अपने अंदर क्या क्रिएट करता हूँ उससे मेरी मन की स्थिति बनती है। दिस इज़ something that has to be said to ourselves every time, because बार बार बोलने के बाद भी सारा दिन में हम किसी ना किसी एक को तो बोल ही देंगे, आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, आपकी वजह से मेरा गुस्सा आ गया।
0: अच्छा, हम बोले ना भी अब तो कहीं ना कहीं मन में,
1: मन में, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि इतना समझने के बाद अब बहुत बिहेवियर पर तो ध्यान आ जाता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं औरों को ठहरा देती हूँ बहुत ईजिली, तो उस समय मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर आपको दे दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के प्रति? रिस्पॉन्सिबिलिटी के जीवन में आने वाली जो भी सिचुएशंस या लोग हैं उसके प्रति मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड रिस्पॉन्स प्लस अबिलिटी, तो अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वो क्या है, तो मेरा हरेक के प्रति रिस्पॉन्स क्या होगा, और जो रिस्पॉन्स होगा वही रिटर्न में मेरे पास आने वाला है, एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माई परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण जो होगा, क्योंकि जो मेरा दृष्टिकोण होगा आपके तरफ वही मैं आपको भेजूंगी बाहर। तो परसेप्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हाउ आई इंटरप्रेट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, क्योंकि सीन चल रहा है, ड्रामा हमारे सामने चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं कि हम उनको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक ही सीन को चार लोग चार डिफरेंट वेज से इंटरप्रेट करेंगे, तो हमारी इंटरप्रिटेशन हमारे हाथ में है, लेकिन हम क्योंकि अवेयरनेस में नहीं चल रहे तो वो बड़ी ऑटोमेटेड सी हो रही है, तो वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेक द कॉन्शियस चॉइस ऑफ चूजिंग द राइट इंटरप्रिटेशन। तो अगर मेरी परसेप्शन नेगेटिव है तो मेरी नेगेटिव एनर्जी आपसे मिलेगी, एंड 100% है कि वापस रिटर्न में मेरे पास ही आएगी और आपको जाते टाइम भी मेरे से क्रिएट होके जाएगी। तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेरी अपनी थी। वर्तमान समय मेजोरिटी ऑफ अस आर कंडीशन्ड टू थिंकिंग नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं हर बात में हम नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, अगर सब कुछ भी ठीक चल रहा होगा तो हमें उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी बन गई है कि वी विल ओनली कैच द नेगेटिव, क्रिएट द नेगेटिव, गिव द नेगेटिव,
0: take negative,
1: get negative in return, and then say my negativity is because of other people. We forget the first three stages, ki humne catch kiya, create kiya, give kiya, fir wo return mein mila, wo skip karke sirf kehte aapne mujhe ye wali energy kyu di, you should give me love and respect. To ye responsibility hai. Highest अल्टीमेट जो परसेप्शन हमारा हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, कि ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए आई है। शिव बाबा ने कहा ये ड्रामा कल्याणकारी है। जब परमात्मा के महावाक्य के हर आत्मा के लिए ये ड्रामा कल्याणकारी है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। अब अगर मैं उसको उस परसेप्शन से देखना शुरू कर दूं तो इवन इन द सो कॉल्ड वर्स्ट सिचुएशन आई विल सी कि इसमें मेरे लिए कल्याणकारी क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए फिर भी कल्याणकारी है।
0: तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कि असीम विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे लिए, चाहे मुझे इस वक्त जैसा भी लग रहा हो,
1: इट्स परफेक्ट फॉर मी, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट व्हेन आई से कि दिस इज प्रॉब्लम फॉर मी, तो आई स्टार्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम, जहां मुझे लगता कि इस सीन में भी मेरे लिए एक लेसन आ रहा है, हाँ। कुछ सीखने के लिए, आई विल स्टार्ट लुकिंग एट द लेसन, तो मेरा दृष्टिकोण लेसन की तरफ चला जाएगा, तो मेरा प्रॉब्लम से ध्यान हट जाएगा, एंड आई विल स्टार्ट लुकिंग कि इसमें मुझे क्या सीखना है। तो ये परसेप्शन अगर हमारा रहेगा तो फिर कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि सारा दिन में अगर हम देखें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं, क्योंकि हम उसमें से कुछ सीखते नहीं हैं। अपनी जीवन को देखें, वर्तमान समय कि आपके साथ आपकी लाइफ में जो अभी हो रहा है, क्योंकि मेजोरिटी लोग कंप्लेन करते हैं आजकल, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है या ये बुरा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, करियर अच्छा नहीं जा रहा, वी आर नॉट हैप्पी विद द आउटकम इन माई लाइफ, वॉट इज हैपनिंग। तो एक आउटकम है आउटसाइड और एक आउटकम है इनसाइड, कि मेरी थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, एम आई हैप्पी विद देम। इफ आई एम नॉट हैप्पी विद एनी ऑफ दीज, अभी जो हमारा पुराना तरीका है, वी ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, सो मेनी पीपल राइट, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, हाउ टू चेंज माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ अच्छी नहीं है, हाउ टू चेंज हर। तो अगर मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा, अभी तक मेरा था हाउ टू चेंज देम, नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड कि इट्स माई परसेप्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, सबकी तरफ से दृष्टिकोण हटाकर दृष्टिकोण यहाँ पर ले आए कि वॉट डू आई हैव टू चेंज इन माई सेल्फ, देन इट विल बिकम वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि इस जीवन में अगर एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, वो है अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने के, बिकॉज एवरी थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड इज क्रिएटिंग माई डेस्टिनी, एंड वो थॉट क्रिएट हो रही है हमारी परसेप्शन से। तो मेरी अपने प्रति एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, और वो है अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर हम
0: इनफैक्ट
1: दूसरों को दे देते
0: दूसरों
1: हैं कि हमारी डेस्टिनी क्रिएट कीजिए,
0: गॉड पे या इस तरह से सितारों पे,
1: दैट इज इन द बिग वे कि हम कहते हैं भाग्य कोई और लिख रहा है, लेकिन सारा दिन में जब आई से कि आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ यू, तो मैंने आपको अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने का हक दे दिया कि मैं आज उदास हूँ आपकी वजह से। आज के मेरे जीवन में, आज के दिन में उदासी किसने लिखी? आपने लिखे। तो मेरा हमेशा आउटलुक बाहर था कि अदर्स आर क्रिएटिंग माय डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग माय डेस्टिनी, एंड दैट्स माय ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डेस्टिनी आई क्रिएट फॉर माय सेल्फ।
0: अब पहली बार हमारा ये टेस्ट है, ओह वाओ दैट्स वंडरफुल, यू नो। अब अभी तक हम जब ये कह रहे थे कि दूसरे की जिम्मेदारी है, तब तक तो फिर हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, लेकिन आज जब हमारे हाथ में है, जब हम खुद तय कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, तब फिर देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। दैट्स ब्यूटिफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी। लेकिन जहाँ हम स्ट्रेस की बात पे आते हैं, जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं और उस वक्त अभी भी याद नहीं रहता, सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है, वो हावी हो ही जाती है,
1: क्योंकि हमने प्रिपरेशन नहीं किया पहले, एंड दैट्स व्हाई द मॉर्निंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन का फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों बार बार सभी से यही कहते हैं कि अगर आप परमात्मा के महावाक्य सुनने रोज जाएंगे, क्योंकि परसेप्शन किससे बन रहा है? बिलीफ सिस्टम से, इंफॉर्मेशन से जो बाहर से आ रही है। अभी तक सारा दिन इंफॉर्मेशन क्या है? मीडिया नेगेटिव, या यहाँ एक दूसरे से भी जो सुना तो कैसी बातें, नेगेटिव। तो परसेप्शन को चेंज करने के लिए बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन इनपुट जो आ रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। विदाउट फीलिंग एनीथिंग पॉजिटिव, डोंट थिंक दैट पॉजिटिविटी विल गेट क्रिएटेड ऑन इट्स ओन,
0: एंड देन स्ट्रेंथनिंग।
1: यस, तो वो जो परमात्मा के महावाक्य हमें सेंटर पर मिलते हैं रोज, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे धीरे चेंज करते हैं, क्योंकि दे कैरी वेरी ब्यूटिफुल एलिवेटेड प्योर इन्फॉर्मेशन। ज्ञान जो है, इट्स द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जब धीरे धीरे धीरे रोज पढ़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन से मेरा बिलीफ सिस्टम और मेरा परसेप्शन, और फिर उसको मैं रोज एक्सपेरिमेंट करूँ, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस उससे बनता जाएगा। तो एक ज्ञान का ज़रूर कुछ ना कुछ ग्रहण करना है हमें, सवेरे 10 मिनट 15 मिनट निकालना है वो ब्यूटिफुल प्योर इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर भरने के लिए, एंड मेडिटेशन। तो देन आई गेट द फूड एंड आई गेट द पावर, एक्सरसाइज भी कर ली और डाइट भी ले ली, तो आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। और फिर सारा दिन में सिर्फ एक ध्यान रखना है, अटेंशन, कि जो किया था वो सिर्फ सुबह तक न रख कर अब उसको मुझे यूज रख करना है, और थोड़ा सा अटेंशन रखने से वो याद रहता है।
0: आर्ली जो हम चेक करते हैं,
1: वन मिनट तो है हर घंटे के बाद,
0: दैट एक्चुअली रियली हेल्प्स। सिस्टर शिवानी, वक्त जो है वो कई बार पता नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है, बिकॉज हम जब बात कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी बात निकल आती है और ज़िंदगी के एक नए आस्पेक्ट जो है हर बार की तरह सामने आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। स्ट्रेस की जहाँ तक हमने बात की, तो खुद को पहचानने के बाद अब बात ये थी कि अपनी सही नेचर को जाना। प्यार से भरी हूँ मैं, शक्तिशाली हूँ, पीसफुल हूँ, ट्रू हूँ, प्योर हूँ, ये कई बातें हैं। अगर हम इस सही नेचर को अपनी पहचान लें, फिर आती है बात जिम्मेदारी की, कि जिम्मेवार किसके लिए कौन है, क्या मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसके लिए जिम्मेवार मैं हर बार अपने आसपास या अपनी सिचुएशन को मानूंगा, या फिर मैं खुद को मानूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी मेरे ही प्रति है। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए, जैसा कि शिवानी ने भी कहा कि अल्टीमेटली जहाँ हम हर रोज़ सुबह मेडिटेशन की बात करते हैं, वहाँ से पार लेकर जिस स्ट्रेस को हमने जीवन की एक नियति मान लिया है, एक सच्चाई मान लिया है, उससे परे जा सकते हैं। अभी और भी बहुत सी बातें हैं, हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में भी हो, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
2: हमारे फोन नंबर है 09999934666, 0 9873 666 555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। स्ट्रेस से जुड़ी हुई कुछ और बातें, कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसे रॉन्ग बिलीफ्स को भी साथ मिलकर खंगालेंगे आने वाली कड़ी में। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, इस एपिसोड में हम संत कबीर जी के दोहों की चर्चा करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। संत कबीर जी कहते हैं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। संत कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। संत कबीर जी कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अर्थात जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। संत कबीर जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। अर्थात लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। संत कबीर जी कहते हैं, पाँचे दिन पाँचे गए, हरी से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात सब कबीर जी कहते हैं, बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार का मैपन था तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो मैंपन का अहंकार नहीं है। जब से मैंने सद्गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर, पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी अपने दोहों में कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली से बदबू आती है। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। अर्थात जिसको ईश्वर प्रेम पाना है उसे अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोई पी रहे जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सोका पीर में पीर। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं, जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। संत कबीर जी कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अर्थात शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीतलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। संत कबीर जी कहते हैं, कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत न चार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। संत कबीर जी कहते हैं, रात गवाई सोय के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, रात को सोते हुए गवा दिया और दिन खाते खाते गवा दिया। आपका जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। जो जीवन प्रभु प्रेम के बिना हो वो जीवन निरर्थक है, कौड़ियों के बराबर है। संत कबीर जी कहते हैं, कागा काको धन हरे कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। अर्थात कौवा किसी का धन नहीं चुराता लेकिन फिर भी कौवो की आवाज लोगों को पसंद नहीं आती। वही कोयल किसी को धन नहीं देती लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। संत कबीर जी कहते हैं, तिनका कबहू ना निंदये जो पांव तले होए, कबहू उड़ आँखों पड़े पीर घनेरी होए। अर्थात तिनके को पांव के नीचे देखकर उसकी निंदा

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। संत कबीर जी कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। अर्थात मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से मरना भला, यही सद्गुरु की शिक्षा है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चलो, हम हंसे जग रोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जब हम पैदा हुए तो उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। अर्थात हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हो जाए और ऐसा कर्म करे जो दुनिया हमें हमेशा याद रखे।

संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में ज़रूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। संत कबीर जी कहते हैं, दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थात इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नज़र नहीं जाती, जिसका ना कोई आदि है न अंत। संत कबीर जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा है। जैसे ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। संत कबीर जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। अर्थात जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है, वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोल कर ही मुख से बाहर आने दे। संत कबीर जी कहते हैं, संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजंत। अर्थात सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों न घिरे हो। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ते। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न, उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, संत कबीर जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभावे, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जिसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए, वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानी, हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात कबीर जी कहते हैं, समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। संत कबीर जी कहते हैं, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली, ले जा तो न देखिया कोई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठड़ी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। संत कबीर जी कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फुटिगा, कछु न आया हाथ। अर्थात यह शरीर कच्चा घड़ा है, जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता रहता है। जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया माटे की घड़े की तरह, और कुछ भी हाथ नहीं आया। संत कबीर जी कहते हैं, करता था क्यों रहया, जब करी क्यों पचिताए, बोए पेड़ बबूल का, अंब कहाँ ते खाए। अर्थात यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिलेगा। अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। संत कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया, तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कौन हो?
1: पाप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वतन का राग के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: आजादी की जंग के दौरान जब भी सिपाहियों को अपने धर्म या जाति पर अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर या अनजाने आक्रमण करने का आभास हुआ, उन्होंने उसका प्रतिकार किया था। सन 1806 में बेल्लोर में सिपाहियों ने विद्रोह किया। सिपाहियों को आदेश दिया गया था कि वे चंदन टीका न लगाएं और लंबी दाढ़ी न रखें। उनके सिर पर पुराने जमाने की पगड़ी भी बदलकर उसके स्थान पर नई पगड़ी दी गई थी, जिसमें चमड़े का फीता लगा होता था। इस परिवर्तन के विरोध में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। स्टेशन कमांडर कर्नल गिलेस्पी ने विद्रोह दबाने की कोशिश की। बाद में सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा। इसी तरह सन 1824 में सिपाहियों ने बैरकपुर में चटगांव जाने से मना कर दिया था। उन्हें संदेह हो गया था कि चटगांव में उन्हें समुद्र पार भेजा जाएगा और समुद्र पार जाने से प्रचलित परंपरा के अनुसार हिंदू जाति से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसी विकट स्थिति में कमांडर इन चीफ पेजेंट स्वयं बैरकपुर आया और उसने आदेश का पालन न करने वाले सिपाहियों पर गोलियों की बौछार करवा दी। उसने

सन 1857 में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित हुईं, जिसमें सिपाहियों को विद्रोह करने के लिए विवश होना पड़ा। सिपाही विद्रोह का शंखनाद करने वाले मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता धर्म कर्म में आस्था रखने वाले भद्र पुरुष थे, वहीं उनकी माता अत्यंत धार्मिक थीं। वे बचपन में मंगल पांडे को रामायण और महाभारत की कथाएं बड़े चाव से सुनाती। इससे बालक मंगल के मन मस्तिष्क में धर्म के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो गई। देश में उन दिनों राजनीतिक उथल पुथल जोरों पर थी। पेंशन भोगी अंतिम मुगल बादशाह के हाथ से धीरे धीरे सत्ता खिसकती जा रही थी। वे लाल किले तक सीमित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी जाने वाली पेंशन पर निर्भर हो गए। अंग्रेजी राज्य के अत्याचार अनाचार से ऊबकर उसे जड़ मूल से उखाड़ने के लिए लोग तत्पर थे। इसके लिए वे एकजुट होने लगे। ऐसी विषम स्थिति में एक ब्राह्मण सन्यासी देश भर में घूम घूम कर प्रचार करता था कि अंग्रेजों द्वारा जो कारतूस मंगाई गई है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया है और उसे इस्तेमाल करने से पहले दांतों से खोलना पड़ता है। इससे अंग्रेज हम भारतीयों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह फौजी छावनियों में फैलने लगी। फौजी जवानों को विश्वास हो गया कि उनका धर्म बच नहीं पाएगा। उस ब्राह्मण सन्यासी के इस उद्गार से हिंदू मुस्लिम जवानों में धर्म की रक्षा के लिए चेतना जागृत हुई। मंगल पांडे भी अन्य जवानों की तरह इससे अछूते न रहे। उनकी धार्मिक आस्थाओं ने उन्हें विद्रोही बना दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे प्राण दे देंगे पर देश और धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। मंगल पांडे को जब अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले दमन की तैयारियों का पता चला तो उन्होंने अपने साथियों से विद्रोह की आग जला देने की अपील की। जब उन्होंने देखा कि कोई भी मित्र साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने स्वयं अकेले

क्रांति का पूर्वाभास अनुभव करके सेनापति हेयरसे ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन के परामर्श से सिपाहियों को 17 मार्च की सुबह कवायद के मैदान में हाजिर होने का हुक्म दिया। इस उत्तेजनापूर्ण स्थिति में 34 नंबर टुकड़ी के मंगल पांडे खामोश नहीं बैठ सके। उन्होंने सैनिकों को देश और धर्म का वास्ता दिया। इसी समय मेजर ह्यूसन वहां उपस्थित हुआ। मंगल पांडे की बातें उसके कानों में पड़ी। उसने सैनिकों को देखते हुए कहा कि पांडे को गिरफ्तार कर लो। ह्यूसन के शब्दों के उत्तर में मंगल पांडे की बंदूक गरज उठी। बंदूक की गोली ह्यूसन की छाती में जा लगी और वो धरती पर गिरकर प्राण शून्य हो गया। ह्यूसन धरती पर गिरा ही था कि एक दूसरा गोरा अफसर लेफ्टिनेंट बाग आ गया। मंगल ने देखते ही उस पर भी गोली चला दी। वो घोड़े पर सवार था। गोली लगने से घोड़ा और सवार दोनों ही धराशायी हो गए। मंगल पांडे पुनः बंदूक भरने लगे। वे गोली भर ही रहे थे कि बाघ उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पिस्तौल से मंगल पांडे पर गोली चलाई, पर उसकी गोली का निशाना चूक गया। मंगल पांडे ने शीघ्र म्यान से तलवार निकाल ली। बाघ ने भी अपनी तलवार से मंगल पर वार किया, किंतु उसका वार खाली गया। वो पुनः तलवार चला पाता उसके पूर्व ही मंगल ने अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। बाघ गिरा ही था कि तीसरा गोरा अफसर मंगल के पास पहुंचा। उसके पूर्व ही दूसरे सिपाही ने अपनी बंदूक के कुंदे से उसके सिर पर वार किया और वो भी धराशायी हो गया।

मंगल हाथ में बंदूक और तलवार लिए सिंह की तरह खड़े थे। एक उत्तेजना का वातावरण पैदा हो गया। उसी समय कर्नल व्हीलर घटनास्थल पर आ पहुंचा। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि मंगल को बंदी बना लिया जाए, किंतु किसी भी सिपाही ने व्हीलर के आदेश का पालन नहीं किया। सिपाहियों के रुख को देखकर व्हीलर अपने बंगले में लौट गया। अब तक ये खबर बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। शीघ्र ही कर्नल हियर से गोरे सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर वहां जा पहुंचा। मंगल अब समझ गए कि वे अब अवश्य बंदी बना लिए जाएंगे। वे जीते जी बंदी नहीं बनना चाहते थे, अतः उन्होंने अपनी ही बंदूक से अपनी छाती पर गोली मार ली। शीघ्र अस्पताल ले जाकर उनकी चिकित्सा की जाने लगी। मंगल पांडे इलाज से अच्छे हो गए। सैनिक न्यायालय में मंगल पांडे पर राजद्रोह के अपराध में प्राण दंड दिए जाने का निर्णय सुना दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे फांसी का समय निश्चित हुआ। मंगल पांडे को फांसी देने के लिए बैरकपुर में कोई तैयार नहीं था। आखिर कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। उन जल्लादों को पता नहीं था कि मंगल पांडे कौन है और उन्होंने गोरे अफसरों पर गोली क्यों चलाई। मंगल पांडे जल्लादों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिए गए। इस तरह आजादी के संग्राम का प्रथम अध्याय मंगल पांडे के बलिदान से आरंभ हुआ। देश पर मर मिटने वाले उनके उत्तम सैनिक गुणों से अभिभूत होकर W.T. फिशेट ने कहा था कि मंगल पांडे में अच्छे सैनिक के सभी गुण मौजूद थे। वे इतने साहसी थे कि अपनी मृत्यु का आलिंगन भी शांतिपूर्वक करने की क्षमता रखते थे। भारतीय आजादी संग्राम के प्रकाश स्तंभ बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों की तबाही का खास कारण उनकी ही कारतूस को माना था, जिसे महान योद्धा मंगल पांडे ने उन पर ही निशाना साधकर जता दिया था कि अंग्रेज स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बने थे। न किया शाह ईरान ने, न किया रूस ने, अंग्रेजों को तबाह किया उनकी कारतूस ने। जय हिंद।

0: प्रसाद मिश्रा ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुत किया सुधा अनुपम ने।
1: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बीइंग डिवाइन। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू सो मच।
1: बीइंग डिवाइन, सच अ डिवाइन वर्ड।
2: यस, राइट।
1: एंड यू फील सो डिवाइन व्हेन यू थिंक, इवन स्पीक द वर्ड।
2: यस,
1: डिवाइन डिवाइन डिवाइन बोलते जाओ तो मंत्र जैसा लगता है ना।
2: कोई भी थॉट भी अगर क्रिएट करते हैं, उसको फिर शब्दों में लेकर आते हैं, तो वो वाली वाइब्रेशन तो क्रिएट हो जाती है ना, तो वी ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट फीलिंग इट। बट बिकॉज वी क्रिएटेड द थॉट बीइंग डिवाइन, उसको शब्दों में भी लेकर आए, तो आप देखो अभी कुछ और नहीं किया,
1: शब्द ही बोला।
2: हाँ, थॉट क्रिएट के शब्द बोला, फीलिंग ऑटोमेटिकली आने लग गई है। मतलब अनुभव में, एक्सपीरियंस में वो ऑलरेडी आ चुका है, चाहे वो एक क्षण के लिए आया हो। सो हाउ मच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन थॉट। इसीलिए हम बार बार यही सीखते हैं कि अपने संकल्पों पर अगर हम अटेंशन रखें, तो संकल्प से बोल, बोल से व्यवहार, व्यवहार से अनुभव, अनुभव से संस्कार, सब कुछ हो जाएगा।
1: लेकिन ये कैसे होगा, जब मैंने जब कहा कि बीइंग डिवाइन, डिवाइन कहते इतना अच्छा लगता है फीलिंग, तो मैंने पहले सोचा थोड़ा ही था, पहले बोला था।
2: आपने ये थॉट क्रिएट की ना, अभी हमारी नई सीरीज का नाम है बीइंग डिवाइन।
1: हाँ,
2: सो इट्स कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर। हम बिना अंदर क्रिएट करे बाहर कुछ नहीं कर सकते।
1: तो इतना फास्ट क्रिएट होता है, अगर मैं स्पीड पे बोलूं धर धर धर धर धर,
2: आप बिना
1: मतलब क्रिएट करता जा रहा हूँ, बोलता
2: मतलब मुख कैसे बोल रहा है?
1: क्या बिना सोचे आदमी बोलता नहीं है?
2: मुख कैसे बोलेगा, कहाँ से आएगा? ये सिर्फ बोलने वाला है, क्या बोलना है?
1: स्टोर्ड होती है थॉट्स।
2: हाँ, तो थॉट्स।
1: अच्छा,
2: स्टोर्ड होती है थॉट्स, तो थॉट्स। मुख तो सिर्फ बोलता है, बोलना क्या है?
1: सुनने में लॉजिकल लग रहा है, लेकिन सोचो तो कैसे।
2: मुख क्या है, ये बोल रहा है, लेकिन क्या बोलना है, वो कहां से आएगा? तो बिकॉज चाहे वो अभी क्रिएट की हुई थॉट है, चाहे वो पहले की क्रिएट की हुई थॉट है, स्टोर्ड है, लेकिन है तो अंदर से एनर्जी, बाहर शब्दों में आ गई।
1: तो स्लिप ऑफ द टंग जो शब्द है वो रॉन्ग है।
2: स्लिप ऑफ द टंग शब्द मतलब क्या, कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल दिया, लेकिन सोच के रखा था, इसलिए मुख से निकल गया, जबकि सोचा था कि बोलना नहीं है।
1: हो सकता है अंदर अंदर बोला होगा, बिना मुख से अंदर ही बोल दिया होगा कई बार।
2: अंदर ही सब कुछ बोला जाता है, जब तक अंदर नहीं बोला जाएगा तब तक बाहर नहीं बोल सकते। सिर्फ ये था कि जब अंदर सोचा था तब ये अंदर सोचा था, बाहर नहीं बोलना था, लेकिन परिस्थिति कोई आई, किसी ने कोई बटन दबाया, मतलब कोई ऐसा स्टिम्युलस आया कि जो सोचा हुआ था वो बोलना नहीं था, लेकिन मुख से निकल गया, तो हम कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग।
1: तो मैं कहूंगा स्लिप ऑफ द थॉट।
2: इट वॉज अ रॉन्ग थॉट क्रिएटेड, नॉट टू बी स्पोकन, बट क्रिएटेड एंड स्टोर्ड।
1: तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो मेरी पुरानी थॉट्स भरी पड़ी है स्टोर, उसमें से जैसे उसको इरेज करता जाऊं, निकालता जाऊं। अच्छा, जैसे जैसे घर में भी दाल चावल रोटी पकाते हैं तो कंकर वंकर निकाल के धो लेते हैं।
2: yes.
1: तो ऐसा उस चीज को साफ ही क्यों नहीं कर सकता हूँ?
2: अब आप देखो ये कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि दाल चावल बनाते हैं
1: उसमें कंकर है,
2: तो कंकर कौन से स्टेज पे निकालना है?
1: इनिशियल स्टेज।
2: जब वो इनिशियल स्टेज पे है, जब वो रॉ मटेरियल स्टेज पे है। अगर रॉ मटेरियल स्टेज पे हमने नहीं निकाला उस कचरे को, उस कंकर को, तो वो फाइनल प्रोडक्ट में तो आ ही जाएगा। तो जैसी क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, वैसा क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो अटेंशन कब रखनी चाहिए थी? चावल बनने के बाद नहीं।
1: तो आज फ्यूचर के लिए पूछ रहा हूँ मैं, आज हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है?
2: हाँ?
1: ताकि हमारा जो स्टोर्ड आइटम है उसमें से हम मैल साफ कर सकें और इस तरह के शब्द निकलें ना बाद में।
2: इस तरह के शब्द निकलेंगे ही नहीं अगर इस तरह की थॉट्स नहीं रखी हुई है, और अगर रखी हुई है तो शब्दों में से निकलने से उसको रोक नहीं सकेंगे।
1: अगर रखी हुई है तो उनको निकालें कैसे?
2: उनको हर बार समझकर, आंसर देकर, क्या वो उस दिन स्टोर किया था, क्यों स्टोर किया था, उसके पीछे रीजन क्या था, दूसरे का नजरिया क्या था, मेरा संस्कार कौन सा था, उनका संस्कार क्या था, मेरा हिसाब किताब उनके साथ क्या था, सारे आंसर देकर, फिर यहाँ से माइंड को आंसर दे दिया तो मतलब हमने पहले वाली थॉट को इरेज करके दूसरी वाली थॉट डाल दी।
1: हजारों लाखों थॉट्स अगर हो तो हजारों लाखों को एक एक को लॉजिक थोड़े दे पाऊंगा।
2: एक होता है कोई पास्ट हमने हर्ट पकड़ी हुई है, किसी के प्रति कोई रिजेंटमेंट पकड़ा हुआ है, तो वो डीप हर्ट स्टोर्ड है। क्यों हर्ट स्टोर हुई? उस दिन कुछ हुआ, उस क्षण जब हुआ मन ने हर्ट क्रिएट की, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये थॉट्स क्रिएट हो रहे थे। उस टाइम शायद हम उसको बोल पाए थे, शायद नहीं बोल पाए थे, लेकिन मन बहुत कुछ बोल दिया था उस दिन। अंदर रुक गया वो, मन ने सब कुछ बोल दिया कि ये उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस मन को हमने आंसर नहीं दिया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमने सिर्फ मन ने क्या क्रिएट किया, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उस दिन हम मन को आंसर दे देते तो क्या आंसर दे सकते थे?
1: कई बार लोगों को मैंने देखा है अंदर ही अंदर, मतलब बोलते नहीं है, मुख से भी अपने आप में बोलते रहते हैं, जब देखो ऐसे करते रहते हैं, मुझे तंग कर देते हैं, मतलब दूसरे को बिना सुनाए खुद को ही सुनाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन।
2: इट्स बिकॉज माइंड बहुत फास्ट सोच रहा है। अगर बहुत चल रहा है अंदर, बहुत फास्ट चल रहा है, और जब बहुत फास्ट चल रहा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी वाली नहीं होती है। जब माइंड स्लो चलता है, वी आर एट पीस, एट ईज, विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ द थॉट्स आर ब्यूटिफुल, स्पीड इज स्लो। ये कनेक्शन हमेशा याद रखना है हमें। अगर क्वालिटी अच्छी है स्पीड स्लो होगी, अगर स्पीड ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स अच्छी नहीं होंगी। तो जब बहुत फास्ट चल रहा होता है तो मुख भी ऐसे बोलता रहता है, मतलब जोर से नहीं बोलता, इट्स जस्ट गोइंग चटरिंग लाइक दैट। कई बार गाड़ी चलाते हुए भी लोग ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं,
1: चलते चलते भी बोलते
2: हैं। हाँ, बिकॉज इट इज टू फास्ट, इट इज टू फास्ट, सो इट इज कमिंग आउट लाइक दिस। तो इसलिए ध्यान किस लेवल पे रखना है कि यहां से वो जो आपने कहा ना, कंकड़ निकाल के फेंक देना है। बातें स्टोर अगर हो गई, सी हमने देखा है कि अगर बातें स्टोर हो गई तो सिर्फ इस जीवन में निकलेंगी मुख से, वो तो रिस्क है ही है, लेकिन आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगी। तो क्यों स्टोर हो दें, क्यों ना उसको क्लीन करते जाएं। ज्ञान हमें आंसर दे रहा है, सब बातों का आंसर है, सिर्फ मन को उस टाइम अगर आंसर दिया तो फिर मन उस आंसर को स्टोर करेगा। सपोज मैं कहूं आपने मुझे ऐसा क्यों कहा,
1: अच्छा क्वेश्चन अगर
2: माइंड ने ये थॉट क्रिएट किया ना, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा भी तो कर सकते थे, इसी चीज को ये ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ऐसा कर दिया, ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब माइंड ने क्या कर दिया, ये सब अपने नजरिए से सारी थॉट्स क्रिएट कर दिए, क्रिएट की दर्द हुआ, तो वो थॉट और वो दर्द दोनों क्रिएट होके स्टोर हो गया।
1: यू सो राइट। मैं हमारे फैमिली में शादी थी, तो वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, मतलब बारात शुरू करने के लिए, वो आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा लेट। तो मैंने आते ही बोला भाई इतना लेट, तो वो तो चिढ़ गए, बोले आप ये नहीं सोचे कि इतना लेट क्यों आया, मेरे जैसा आदमी जो कभी लेट नहीं आने वाला, क्या तकलीफ है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बीमार तो नहीं, ये छोड़ा। उसके बाद से सालों बात नहीं की मुझसे, एक इतनी बात से।
2: एंड विच मीन्स उस टाइम नीड ऑफ द आवर क्या था,
1: कि आप लेट आ गए, मैंने इतना ही बोला, वो भी तो भरा हुआ था कि
2: ये जो हम भरे हुए रहते हैं ना, दिस इज अ साइन दैट आत्मा क्या होती जा रही है, बहुत बोझ कैरी करके चल रही है।
1: फिर बाद में और सालों तक जो बात नहीं करना,
2: सालों तक ही चलेगा। आज हम शरीर का बोझ तो हम अवेयर हैं कि मेरा कितना वेट है, एम आई ओवर वेट, इफ आई एम ओवरवेट दैट आई एम कैरिंग एक्स्ट्रा बर्डन, इस बर्डन का मेरे पूरे शरीर पर असर पड़ने वाला है। तो हमें शरीर की अवेयरनेस है कि कितना वेट होना चाहिए, कितना वेट है जिससे हम स्मूथली अच्छे से चल सकते हैं, जीवन जी सकते हैं।
1: बेचारे नीज पे घुटनों में भी तकलीफ होती है, हार्ट को भी पंपिंग करनी पड़ती है इतना ज्यादा चारों तरफ खून पहुंचाने के लिए, कितनी प्रॉब्लम।
2: और अब ये कोई भी प्रॉब्लम लेकर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फर्स्ट चीज क्या कहेंगे?
1: वजन उतारो। और अभी हम सर पे जो वजन है उसको उतारना है।
2: जितनी जीवन में आज कॉन्फ्लिक्ट, दर्द, हर्ट, डिप्रेशन, ये सारे जो मन की हमें दर्द होती है उसके लिए वो डॉक्टर भी एक ही आंसर देगा, पहले वजन उतारो। मतलब जो वेस्ट और नेगेटिव पकड़ के रखा है उसको हटाओ, और जैसे जैसे हम वो हटाएंगे तो वो कंकर क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली डिवाइन तो बनना ही है। फल
1: वाले भी मैं देखता हूँ कि एक भी आम सड़ जाता है तो पेड़ से निकाल के हटा दे ताकि बाकी फिर।
2: नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक आम सड़ा हुआ है उसको निकाल दो, अगर नहीं निकाला तो उसका बाकी पर असर पड़ेगा। विच मीन्स एक बात भी अगर पकड़ी हुई है, एक रिश्ते में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, एक में भी रिजेंटमेंट है, एक में भी रिजेक्शन है, उस थॉट को हटाओ।
1: क्या ये थॉट संस्कार भी बन सकती है, रिजेंटमेंट वाली
2: थॉट तो संस्कार ही बनेगी ना।
1: नहीं, अगर एक ही से है, 10 से नहीं है, समझो 9 से नहीं है,
2: हाँ।
1: बट वो वाली एक इतनी बार बार करके वो संस्कार बने तो दूसरे को भी तो टच करती होगी,
2: क्योंकि वो यहाँ बैठी है ना, वो यहाँ बैठी है। जैसे आपने कहा वो आम टोकरी में बैठा है ना,
1: हाँ।
2: अगर उस आम को टोकरी से निकाल दिया तो बाकी टोकरी सेफ,
1: बिल्कुल,
2: बाकी फ्रूट सेफ। लेकिन अगर वो सड़ा हुआ आम उस टोकरी में बैठा है तो वो हर्ट यहाँ बैठी है, वो वहां नहीं बैठी है। हमें लगता है उनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम है ना, मुझे उनके साथ प्रॉब्लम, उनके साथ है लेकिन प्रॉब्लम बैठी कहाँ हुई है, प्रॉब्लम यहाँ बैठे हुई है। ये वो स्थान है जहां मेरी और रिश्ते भी बैठते हैं, ये वो स्थान है जहां मेरे काम की थॉट्स भी चलती हैं। लेकिन उसी स्थान में कौन बैठ गया है, उस स्थान में एक डीप हर्ट बैठ गई है, एक चोट लग गई है, एक वूंड है जिसको मैंने हील नहीं किया।
1: ओवर पावर करती रहती है ना, बाकी चीजें जो अच्छी वाली है वो याद नहीं आती है, जो हमारे साथ अच्छा हुआ है।
2: आपके पूरे घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक कोने में एक कचरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। कचरा पूरे घर में नहीं है,
1: हाँ।
2: एक कोने में एक कचरा, कहीं पुरानी कोई चीज पड़ी,
1: हाँ।
2: फ्रिज खोले एक बासी चीज कोई पड़ी हुई है अंदर,
1: उसकी स्मेल आती है,
2: स्मेल आएगी। अब यही उस पूरे मकान में एक अगरबत्ती जलानी है ना सिर्फ,
1: ये भी सही बात है,
2: एक ही अगरबत्ती
1: किसी भी कोने में,
2: किसी भी कोने में। अब जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की बीइंग डिवाइन, ये हमने एक अगरबत्ती जलाई है, एक जलाई ना, वो जलाते ही क्या हुआ,
1: चाहे भी जलाओ तो रोशनी पूरे कमरे में होती है,
2: तो एक ही तो जलानी है ना। तो एक प्योर थॉट सब कुछ चेंज कर सकती है, तो एक इम्प्योर थॉट
1: वो सब कुछ खराब भी कर सकती है।
2: अब हमने कितनी सारी इम्प्योर पकड़ के रखी हुई है,
1: हजारों लाखों, अनगिनत
2: हजारों, तो इज अ वेरी स्मॉल फिगर,
1: अनगिनत का
2: हजारों तो एक दिन में ही क्रिएट हो जाती है ना। हजारों थॉट्स मतलब क्या, एक दिन में हम कितनी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ अ लाइफ टाइम, मेनी लाइफ टाइम्स। अब ये कचरा इम्प्योर थॉट्स हमने इतनी सारी जो क्रिएट किए, अनअवेयर, अवेयर, यू नो सम थॉट्स वे अनअवेयर के सारा दिन में इसके लिए, उसके लिए, इसके बारे में, उसके बारे में, अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स क्रिएट हो रहे।
1: न्यूज़पेपर भी पढ़ के किसी ने क्या किया तो, और अनजान बंदे के बारे में,
2: yes.
1: उसने अपनी बीवी को ऐसा कर दिया,
2: yes.
1: उसे छोटी सी बात पे उसको आग लगा दी, मतलब रिमोट कंट्रोल पे के झगड़े में ऐसे हो गया, सुन तो वो मेरे अंदर बैठ गई,
2: yes. बैठ गई मतलब वो क्रिएट कर ली ना, क्रिएट कर ली तो वो यहाँ बैठ गई। अब जब से हमारे पास ज्यादा सोशल मीडिया आ गया, हमने और ऐसी चीजें बहुत सारी पढ़नी, सुननी, औरों को भेजनी, फिर उन्होंने सर्कुलेट करनी, हमने यहाँ और कुछ पकड़ने शुरू कर दिया। जितना मीडिया से
1: पहले तो न्यूज़पेपर था, फिर टीवी आई, अब सेलफोन्स,
2: फिर टीवी पे भी तो पहले एक न्यूज चैनल रात को, अब 24 आवर्स, फिर सेलफोन, फिर इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन है, उसका बेनिफिट भी है हमारे पास, वो सारी टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का, लेकिन उसमें से कंकर कहाँ निकाला, हमने सारा कुछ ऐसे ही ले लिया। अखबार में कुछ यूजफुल भी है, कुछ इम्पोर्टेंट भी है एंड कुछ अननेसेसरी टॉक्सिक है।
1: जब मैं सब्जी की दुकान में जाता हूँ तो वहाँ उसके पास कचरा भी रहता है, गंदे वाले भी, मैंने बोला यार ये स्टॉक में से दो, मुझे ये वाले अच्छे हैं,
2: और उस स्टॉक में से भी हम क्या
1: उस
2: करते
1: उसमें से फर्दर चेक करता हूँ, ये हटाओ,
2: और हम ये नहीं करते कि दुकानदार को कहते हैं कि दे दे 1 किलो एप्पल, ना ना, हम एक एक, फिर एक एक एप्पल को क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा भी
1: बदल,
2: थोड़ा भी चेंज, हाउ मच कॉन्शियस एफर्ट एंड अवेयरनेस, क्यों, क्योंकि हम 250-250 रुपए खर्च कर रहे हैं ना 1 किलो एप्पल खरीदने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ी उठा लिया, घर आके दिखेगा कि उसमें से 2 खराब थे। अच्छा कभी आप उठाकर ले भी आए ऐसे जिसमें से एक आधा खराब है तो घर के लोगों ने सुनाना, देखा नहीं था, बिना देखे उठा लिया, सो मच एफर्ट, एंड हम सारा दिन हर चीज पे एफर्ट कर रहे हैं, हर चीज, हम हर चीज पे अटेंशन रखते हैं कि क्या खरीदना है, कैसा खरीदना है, गाड़ी में फ्यूल कौन सा डालना है, पानी कौन सा पीना है, खाना कौन सा खाना है, हर चीज
1: आजकल ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं, ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक थॉट्स क्यों नहीं ले रहे हैं,
2: सी दिस इज व्हाट, अब उसमें क्योंकि अटेंशन नहीं, संस्कार है अटेंशन का, चेकिंग का संस्कार है, क्वालिटी सिलेक्ट करने का संस्कार है, तो इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं, थॉट्स में क्यों नहीं, यहाँ तो सब कुछ भरता गया भरता गया भरता गया, अब जितनी इम्प्योर इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी तो इम्प्योर थॉट्स बढ़ते जाएंगे, तो एक हुई अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स, अनअवेयर मतलब सारा दिन ऐसे जो भर, जैसे आपने कहा ये पढ़ लिया, नथिंग टू डू विद आवर लाइफ, किसी ने किसी के साथ कहीं कुछ किया, नथिंग टू डू विद अस, पर हमने पढ़ा तो यहाँ स्टोर हो गया, फिर व्हाट्सएप पे सारा दिन ने किसी ने कुछ भेजा, किसी का मजाक उड़ाया, किसी को क्रिटिसाइज किया, किसी की ग्लानी की, किसी ने उसको सर्कुलेट किया, हमारे पास आया, हमने औरों को सर्कुलेट किया, भरा, अब ये सारा कुछ जब भरा तो मतलब चावल अच्छे खासे थे, खुद ही उठा के उसके अंदर
1: मिट्टी डाल दी,
2: खुद ही कंकर डाल दिया, और फिर जब खुद ही कंकर डाल दिया, फिर जब फाइनल प्रोडक्ट मतलब हमारी व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी, हमारे बोल जब आते हैं तो हम कहते हैं इसमें इतने कंकर क्यों, तो इतने कंकर क्यों डले, प्रोसेस हुए, बाहर आ गए। अब इस पे एक हुई ये अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स जो हम वैसे ही रैंडम भर रहे हैं, एक है अवेयर इम्प्योर थॉट्स कि मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने हर्ट क्रिएट किया, किसी ने मुझे चीट किया, बिट्रेड फील हुआ, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, हर्ट फील हुआ, यह है अवेयर, मतलब मैं अवेयर हूं और इम्प्योर थॉट्स क्रिएट कर रही हूं। परसेंटेज देखें, अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स, अवेयर इम्प्योर थॉट्स, अब ये परसेंटेज इतनी होती जा रही है कि जो हम कहेंगे ना कि वो मकान के अंदर कचरा इतना बढ़ता जा रहा है, अब जब इतना बढ़ता जा रहा है तो मकान की जो ओरिजिनल ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है, वो डिसअपियर हो गई। अब हमें उस कचरे में ही रहने की आदत भी पड़ गई है, यू नो वी हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग टू लिव विद दैट पेन एंड हर्ट।
1: पहले हम लोगों ने एक घर लिया था समंदर के किनारे, तो उधर मच्छी वाले लोग थे, तो 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आई, उनकी इतनी बास आती थी मच्छी की और उसकी, और उधर से समुद्र की हवा के साथ, तो खिड़कियां बंद करके रहते थे। धीरे धीरे आदत पड़ गई,
2: दिस इज इट, धीरे धीरे आदत पड़ गई, मतलब जो अच्छी नहीं थी स्मेल, जो हेल्दी नहीं थी, उसकी भी आदत पड़ गई। तो आदत कैसे क्रिएट हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदत पड़ गई। अब यहां भी इतना अक्यूमुलेट करके रख लिया है, लेकिन उसके साथ जीने की आदत पड़ गई है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर लिविंग आवर लाइफ विद दैट पेन एंड वी हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग विद दैट पेन एंड इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया ये दर्द, ये गुस्सा, ये इरिटेशन, ये जेलसी किसी और ने दिया तो वो तो ठीक है, लेकिन हमने कहना शुरू कर दिया ये नॉर्मल है.
1: ओके
2: नॉर्मल है ना, क्यों नॉर्मल है? अगर कहो क्यों नॉर्मल है, कहेंगे सबको है. तो सबको है तो नॉर्मल है. तो जैसे उस दर्द को ही नॉर्मल कह दिया, उस जो आपने कहा जो ओडर जो स्मेल अच्छी नहीं थी उसको ही नॉर्मल कह दिया और ऊपर से कह दिया ये तो सबको है, तो फिर उसको मिटाने का तो कोई प्रयास नहीं करेंगे. और जब उसको मिटाने का प्रयास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो दिन ब दिन क्या होता गया, वो बढ़ता गया.
1: वैसे लोग भी इसको एंडोर्स कर देते हैं, दुनिया में आए हैं तो दर्द तो है ही. हाँ. ये लाइफ तो ऐसी ही है. हाँ. लाइफ इज
2: मतलब नॉट अ बेड ऑफ
1: रोज़ेस.
2: बाहर चैलेंजेस है इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ क्या पकड़ के रखा है, मेरे इस घर में खुशबू है, फ्रेग्रेंस है या कुछ सड़ रहा है.
1: मैंने कभी सुना नहीं लोगों को बोलते लाइफ इज अ पिकनिक, एंजॉय करो, लाइफ इज अ हॉलीडे, मजे करो, घूमो फिरो, देखो दुनिया इतना अच्छा भगवान ने बनाया, ये सब बातें नहीं.
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वेयर इज लाइफ. When we say life is a bed of roses, or you're saying life is a picnic, which life are we talking about?
1: मेरी अपनी जिंदगी.
2: कौन सी जिंदगी? आप अपनी जिंदगी. अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को बताना है कि life is a bed of roses या life is not a bed of roses, तो किस aspect से बताएंगे? Life कहाँ है?
1: Life मतलब अपने व्यवहार. Is life my the way I live, the way I look at things, my point of view.
2: तो लाइफ कहाँ है? पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है?
1: मेरे मन में.
2: तो लाइफ यहाँ है.
1: ओके
2: लाइफ यहाँ है. आज जब दुनिया में हम कह रहे हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, विच मीन्स हम एक बच्चे को सिखाते हैं कि जीवन इतनी इजी नहीं है,
1: कंपटीशन है.
2: हाँ, तो विच लाइफ आर दे टॉकिंग अबाउट? वो लाइफ की बात कर रहे हैं.
1: ओके वर्ल्ड में जो बिजनेस मतलब, की लाइफ में कमाने के लिए जो आ रहे
2: मतलब
1: हैं,
2: लाइफ क्या है जो आपके साथ जीवन में होगा. है ना, जो हमें क्या सिखाया गया, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज व्हाट विल कम टू मी. जीवन में मेरे साथ जो जो होगा वो लाइफ है. स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? लाइफ वो है कि आप जीवन में क्या क्या करते हैं, वो लाइफ है. अब बाहर से जो परिस्थितियां आने वाली हैं, दैट माइट नॉट बी ऑलवेज परफेक्ट, दैट माइट नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट, लेकिन हम कैसे उसमें क्रॉस करते हैं, दैट विल बी आवर चॉइस. सपोज हम इस टेरेन में हैं, ठीक है, यहाँ पत्थर भी है, सीढ़ियां भी हैं, घास भी है, सब कुछ है. दिस टेरेन इज नॉट परफेक्ट, दिस टेरेन इज नॉट परफेक्ट. अब अगर हम किसी को कहें Your walk here will not be perfect.
1: Okay.
2: दो चीजों में बहुत फर्क है.
1: Okay.
2: एक है ये टेरेन, ये जो है टोपोग्राफी इस जगह की, ये परफेक्ट नहीं है. लेकिन हम क्या सिखाते हैं और खुद सीखते हैं कि यहाँ परफेक्ट चलना पॉसिबल नहीं है. My walk here cannot be a bed of roses. Spirituality says. टेरेन परफेक्ट नहीं है, बट योर वॉक हियर कैन बी अ बेड ऑफ रोजेस.
1: या लाइक दैट प्रिंस की जो है, राजा ने प्रिंस के लिए पूरे गांव में कहा कि कारपेट बिछा दो.
2: हाँ.
1: बहुत कंकर है.
2: हाँ.
1: तो वजीर ने बोला खाली उसको जूते पहना दो आप,
2: सॉफ्ट वाले अच्छे. बाहर नहीं कुछ कर सकते ना. ये जो है पूरी स्थान बाहर, ये परफेक्ट नहीं है. ये है हमारी दुनिया, लेट्स से ये परफेक्ट नहीं है. अब हमें यही चलना है. उबड़ खाबड़ है, कहीं सडनली नीचे गिर रहा है. ध्यान रख के चले हम बड़े प्यार से चल लेंगे, ध्यान नहीं रख के चला तो फर्स्ट स्टेप पे गिर जाएंगे. और जैसे ही गिरेंगे तो हम क्या कहेंगे, जगह ही उबड़ खाबड़ थी पूरे. लेकिन उसी जगह में कोई और बहुत प्यार से चल के पूरा रास्ता कवर करके आ सकता है. जो पूरा रास्ता प्यार से, अटेंशन से, ध्यान रख के एक एक कदम चलेगा, वो कहेगा इट वॉज अ ब्यूटिफुल वॉक. वो कहेगा इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. सुबह सुबह पैदल
1: ऐसे तो है ही, वो तो आते ही है, रॉक्स कांटे तो होते ही उसमें.
2: लेकिन
1: उसको तो दिखेगा बुरा, दिखेगा ही नहीं. वो
2: बुरा दिखेगा क्यों नहीं,
1: है ही ऐसा.
2: बुरा क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने ध्यान से चला, उसको चोट नहीं लगी. चोट नहीं लगी तो दर्द नहीं हुआ. उबड़ खाबड़ था, ध्यान से चला, पैर नहीं मुड़ा, चोट नहीं लगी. चोट नहीं लगी, दर्द नहीं हुआ.
1: अपने आप को इक्विप भी तो किया ना, प्रॉपर शूज पहने, हाथ पे डंडा लिया होगा, साथ में बंदा लिया होगा,
2: सब कुछ किया. अपने आप को इक्विप किया, ब्यूटीफुल एंड अटेंशन से चले
1: बस.
2: तो पूरा रास्ता चलते हुए एक खरोच भी नहीं आई होगी. जब एक खरोच भी नहीं आई, एक चोट भी नहीं लगी, दर्द भी नहीं हुआ, तो वॉक कैसी रही? आप पूरा वॉक करके एंड पर पहुंचेंगे तो आपसे कोई पूछेगा वॉक कैसी रही आपकी आज?
1: You'll say wonderful.
2: Wonderful.
1: बहुत मजा
2: आया. That would have been your experience of that walk. That is the experience of life.
1: हमने कहते सुबह इतनी ठंडी हवा थी, इतना मजा आ रहा था, इतने लोग वॉक कर रहे थे, बड़ी शांति थी. हाँ, I enjoyed.
2: लेकिन जिसने अपने आप को इक्विप नहीं किया, जिसने ध्यान नहीं रखा, पत्थर है लेकिन पत्थर को ही पैर मार दिया, क्योंकि उसने समझा पत्थर नहीं होना चाहिए था, मेरे को तो सीधा ही चलना है, तो पैर लगा, चोट लगी, घास में से गया, स्क्रैचेस पड़े, तो यहाँ स्क्रैच पड़े, यहाँ पैर मुड़ा, यहाँ चोट लगी, गिर गया. अब सब कुछ पहुंच के एंड पे, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो किसी ने कहा आज की आपकी मॉर्निंग वॉक कैसी रही?
1: बड़ा बुरा रोड था, बड़ी गंदी सड़कें थी, बहुत खराब, लोग साफ नहीं करते, खड्डे थे, गिर गया.
2: ऐसे वाला व्यक्ति दूसरे को राय देगा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. तो सबसे पहली चीज आज हम ये फाइनल करते हैं कि लाइफ कहाँ, लाइफ परिस्थितियां नहीं है जो हमारे सामने आती है, लाइफ जीवन में आने वाली सिचुएशंस नहीं है, लाइफ वो नहीं है कि लोग हमारे साथ क्या करते हैं. लाइफ एनर्जी, दैट लाइफ इज हियर.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर. लाइफ कहाँ है इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे.
2: ओम शांति.
1: थैंक यू सो मच. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति.
3: Our every thought influences how we feel. Thoughts come into words and actions. It becomes our experience, and this records an impression or sanskar on the soul. The sanskars become our vibrations. What we speak is first created as thoughts. The thoughts could have been created earlier and stored. When we use the phrase slip of the tongue, or we didn't mean it, it only means we felt it but had decided not to speak it. When in response to a situation or behavior, we create hurt and hold on to that hurt, then the thoughts of hurt and blame will get stored in the memory. These thoughts will replay many times and cause pain, and may also come into words. Let us counsel our mind, understand the person, and then store the scene with acceptance. Hurt, resentment, rejection, or any painful emotion created and held on the mind will become a part of our personality. The pain becomes a part of our energy field and starts coming into other healthy relationships.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

एक्सप्रेस 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। स्वागत है हमारी श्रृंखला श्री कृष्णा की 16 कलाएं के दूसरे अध्याय में। आज हम जानेंगे लीला माधुरी, वह कला जो भगवान के अद्भुत क्रीड़ाओं की मधुरता को प्रकट करती है। दोस्तों सोचिए जरा, जब नंदलाल बांसुरी बजाते हैं तो केवल स्वर ही नहीं बल्कि प्रेम और आनंद की धारा बहने लगती है। गोपियों के साथ उनकी रासलीला बाल्य कला की चंचल शरारते और भक्तों के साथ उनका स्नेह, यही है लीला माधुरी का सार। यह कला हमें बताती है कि ईश्वर केवल उपदेशों से नहीं बल्कि अपनी मधुर लीलाओं से भी भक्तों के हृदय को जीतते हैं। हर लीला में छिपा है आनंद, हर क्रीड़ा में छिपा है प्रेम, हर मधुरता में छिपा है भक्ति का अमृत। तो आइए आज के इस अध्याय में डूब जाए उस माधुरी में जो श्री कृष्ण के लीलाओं को अमर बना देती है। तो दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहुत प्यारा इंसान है तलत महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

हर काल में बात बात बिन पकड़े कभी न छोड़ू संग संग डोलूं रे तुम डाल डाल में बात बात बिन

0: लेकिन पैसे वाली हो,
1: लेकिन मोटी नहीं चलेगी।
0: दुबली पतली काली हो, लेकिन पैसे वाली हो। घर दामाद बना कर रखे मुझको जिसका पास।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे, कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हित हित हित की आए, तबीयत बिस्की बिस्की जाए, दिलाता दी।

पंछी बन के हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2।

तबीयत मिटकी मिटकी जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत मिटकी मिटकी जाए। दिला कदी

हम घर घर जाते हैं, ये दिल दिखलाते हैं, पर ये दुनिया वाले हमको ठुकराते हैं। हम घर घर जाते हैं,

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझ झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझ झुकना नहीं

0: मुझे।
1: क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
0: नहीं करती।
1: क्यों नहीं करती?
0: है प्याना, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती।
1: क्या तुमको प्यार करना नहीं आता?
0: नहीं आता।
1: नहीं?
0: हाँ हाँ नहीं।
1: मेरी कसम, प्यार सिखा दूँ?
2: सीख।

जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। इंद्र की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल ठहर गया था जिसे वो आरती के नाम से पहचान सकता था। रात गुजर रही थी लेकिन वो एक पल सारी रात पर भारी था। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।